सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज वीरवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून सन 2026। इस समय सुबह के ठीक 5:58 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए वंदना कार्यक्रम। ज्ञान ज्योति ईश्वर की खोज में अनेक साधक असंख्य कष्टों को सहन करते हैं, वर्षों ही जप तप व्रत आदि करते हैं, कठोर साधनाओं द्वारा अपने शरीर को तपाते हैं और कई प्रकार से अपने शरीर को कष्ट देते हैं, लेकिन ईश्वर की खोज नहीं कर पाते। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, तथागत कठोर तपस्या आदि से कभी मोक्ष नहीं पा सकते। इसके लिए उसे ना तो सांसारिक विषयों में आसक्त होना चाहिए और ना अधिक ऐश्वर्य संपन्न जीवन यापन करना चाहिए। ये सही है कि जीवन को चलाने के लिए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए, परंतु शरीर को पूर्ण स्वस्थ रखना आवश्यक है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो ज्ञान का दीपक प्रज्वलित नहीं हो सकेगा और मन सुदृढ़ एवं पवित्र नहीं बन सकेगा। इसीलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखिए और अंतर्मन को भी स्वस्थ रखिए, सभी द्वेषों को निकाल कर। ज्ञान ज्योति। तो अब आइए हम भी अपने मन को स्वस्थ बनाते हैं, ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाते हैं, वंदना कार्यक्रम में भजनों की शुरुआत करते हैं।

जी हाँ, प्रभु का नाम जपने से प्रभु मिल जाएं तो क्या ही अच्छा हो। लेकिन अगर मन विषय वासनाओं से भरा हुआ है तो ठंडे पानी में खड़े रहने या फिर पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। इसीलिए भगवान को पाना है तो सबसे पहले मन को पवित्र बनाओ।

आकाशवाणी हमीरपुर से इस समय आप सुन रहे हैं वंदना कार्यक्रम। समय आपको बताएं, सुबह के 6:27 हुए हैं 10 सेकंड। आइए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सुनते हैं।

जी श्रोताओं, तकनीकी खराबी के कारण ये भजन हम आपको पूरा नहीं सुना पाए, इसका हमें खेद है। वंदना कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से।

वंदना कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं और भक्ति क्रम में यूं ही आगे बढ़ते हुए आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ भाग 14।

श्री रामचरित मानस की रचना के क्रम में तुलसीदास ने अपने सभी गुण दोषों का वर्णन करके जो भी पूज्य तथा वंदनीय हैं उनके सामने बार बार सिर नवाया है। ऐसा करने के बाद ही श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन आरंभ किया है। भक्त कवि को विश्वास है कि जिन उदार प्रभु ने पत्थरों को जहाज की भांति तिरने वाला तथा बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, वो तुलसी जैसे अज्ञानी सेवक का मान अवश्य रखेंगे। आराध्य के प्रति उनकी आस्था की पराकाष्ठा के दर्शन उन चौपाइयों में होते हैं जहां वे कहते हैं कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की भूल चूक याद नहीं रहती, जबकि उनकी थोड़ी सी अच्छाई को प्रभु सौ सौ बार याद रखते हैं। बाली, सुग्रीव, विभीषण इन सब के साथ ऐसा ही तो हुआ। कहां राम के रूप में परम ब्रह्म और कहां पेड़ों की शाखाओं पर उछल कूद करने वाले बंदर, परंतु उन बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, उत्तरा केलकर और साथी संगीतकार थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:50 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित वरेली होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद 6:55 पर संस्कृत समाचार, 7:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर सुनिएगा सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम। 7:35 पर लोक संसार कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 8:00 समाचार प्रभात का अंक, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज का अंक आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 8:30 पर हिमाचल डायरी का आज का अंक आप सुन सकते हैं। 8:35 से लेकर 9:20 तक हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। 9:20 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 9:30 से लेकर 10:00 तक आनंद उठाइएगा विविध भारती के कार्यक्रमों का। सुबह 10:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे और 10:05 पर लघु वार्ता सुनिएगा। आज की लघु वार्ता का विषय रहेगा भारत सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल में महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं। पंजाबी फ्लेवर कार्यक्रम 10:15 पर प्रसारित किया जाएगा और 10:45 का समय रहता है लोक रंग कार्यक्रम का। प्रादेशिक समाचार सुबह 11:00 आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 11:05 से लेकर 12:00 तक हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं और 12:00 हम लेकर आएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुनते हैं 12:30 पर। दोपहर 1:00 से लेकर शाम 4:00 तक विविध भारती के कार्यक्रम सुनिएगा। इसी दौरान 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से और 3:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। शाम 4:00 संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन सकते हैं। शाम 5:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 5:05 पर भजन संध्या कार्यक्रम होगा। युव मंच कार्यक्रम 5:30 पर आप सुन सकते हैं। 6:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 6:05 पर सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम सुनिएगा। किसान वाणी कार्यक्रम शाम 6:30 पर प्रसारित किया जाएगा। शाम 7:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर देश गान आप सुन सकते हैं। 7:10 पर भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम सुनेगा। विषय साइंस एंड टेक रहेगा। इसे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 8:00 से लेकर 8:45 तक सुनेगा विविध भारती के कार्यक्रम। 8:45 पर समाचार संध्या का अंक, 9:00 News@9 का अंक आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। रात्रि 10:00 खेल जगत कार्यक्रम जरूर सुनिएगा। 10:30 पर चांदनी रातें कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा और रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। तो ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित वरेली होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, पहले संस्कृत में और उसके बाद 7 हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्याः राष्ट्रपति भवनस्य सांस्कृतिक केन्द्रे नीति आयोगस्य एकादशे शासी परिषदो उपवेशने अध्यक्षतां विधास्यति। विकसित भारताय प्रधानमंत्रिणः टीम इंडिया इति संकल्पानुगुणम् अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारतम् @2047 इत्यस्य कृते समावेशी मानव विकासः इन्क्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047 इति अस्ति। विषयोयम् आयु क्षेत्र लिंग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिकायाः भेदं विनैव प्रत्येकं भारतीयस्य कल्याणाय विकासाय च केन्द्रीकृतो वर्तते। उपवेशने अस्मिन् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढमापनयोग्यपरिणामेषु परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः केन्द्रशासित प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य 44 शत कोटि नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं NDA सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: अस्मिन् अवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं संपूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः, यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फ्रेडरिक मोर्स, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मंत्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः 88 प्रसिद्धाः कलाकाराः 24-2000 अथ च 25-2000 अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
4: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
3: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

0: सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
5: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
4: नीलम अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
5: भाभी छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
6: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:07 हुए हैं और आपकी रेडियो दोस्त भावना कतना हाजिर है आज का सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम लेकर। तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आप सभी के लिए आज एक बार फिर कार्यक्रम की शुरुआत सुविचार के साथ कर रहे हैं और सुविचार देखिए हमें सिखाते हैं ये विचार कि हम हमेशा खुश रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। और प्यार से रहने का मतलब है कि हमारे मन में स्वार्थ रहित प्यार हो, निस्वार्थ प्यार हो एक दूसरे के लिए। कभी कभी हम बच्चों को देखिए, हर माता पिता प्यार करते हैं और हर माता पिता यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बने, हमेशा आगे बढ़े। लेकिन कभी कभी स्वार्थवश या प्यारवश वो अपने बारे में सोचते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा हमारे ही हिसाब से चले, हमारे ही पास रहे। वो भी ठीक है लेकिन उसमें बच्चे की विकास को बाधा आती है। तो प्यार ऐसा होना चाहिए बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। अब पड़ोसियों का प्यार देखिए, पड़ोसी प्यार करते हैं अपने स्वार्थ के लिए और जब स्वार्थ निकल जाता है तो भूल जाते हैं एक दूसरे का भला, है ना? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब प्रकृति से देखिए हम प्यार करते हैं, वो भी हम अपने कभी कभी स्वार्थी हो जाते हैं। जब हद तक हमें मिल रहा है तब तक तो हम उन पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, जब पेड़ सूख रहे हैं तो बस उनको काट देते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो ये प्यार जो है जिस किसी से भी हम करते हैं, चाहे वो पशु पक्षियों के लिए हो, इंसान के लिए हो, प्रकृति के लिए हो, निस्वार्थ भाव होना चाहिए उस प्यार में। कुछ पंक्तियाँ मैंने पढ़ी थी कहीं पे।

सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूं। देते होंगे प्रेमी गुलाब अपनी प्रेमिकाओं को, तुमने दिए मुझे पलाश कि गुलाल बनाकर रंग भर सकूं दुनिया में। लाते होंगे प्रेमी झुमके अपनी प्रियतमा को सजाने, तुम लाए डायरी और पेन कि शब्द रचकर रंग भर सकूं कविता में। चाहते होंगे प्रेमी समय अपनी प्रेमिकाओं से, तुमने दिया मुझे एकांत कि भाव सजाकर रंग भर सकूं अपनी चेतना में। लाते होंगे प्रेमी चॉकलेट मिठास बढ़ाने को, तुमने दी मुझे मीठी यादें कि ख्वाब बनकर रंग भर सकूं रातों में। देते होंगे प्रेमी उपहार अपनी प्रेमिकाओं को, तुमने दिया मुझे आसमान कि परवाज बढ़ाकर रंग भर सकूं पंखों में। देते होंगे प्रेमी तस्वीरें अपनी प्रेमिकाओं को, तुम बन गए मेरे दर्पण कि खुद को पहचान रंग भर सकूं अपने व्यक्तित्व में। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए प्यार, जो एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे हमेशा।

0: बिल्कुल, प्यार के ये जो धागे होते हैं ना, वो कभी टूट नहीं सकते। लेकिन अगर प्यार निस्वार्थ भाव से किया गया हो। घुंघरू फिल्म का ये गीत आपने सुना मनहर उदास और साधना सरगम के युगल स्वरों में। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। अब आगे बढ़ते हैं, इतिहास की बातें करते हैं इस अंतराल के बाद।
1: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
2: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य स्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
5: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
7: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
5: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
7: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
5: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: जी, तो इस अंतराल के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं और अब आइए आगे बढ़ते हैं, इतिहास की बातें करते हैं। आज जो है वो 11 जून का दिन है और 11 जून के साथ कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं, आइए आपको बताते हैं। जी, सबसे पहले बात करें 11 जून 1866 की, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। इसे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। एडविन आर्मस्ट्रांग ने 1935 में पहली बार FM का प्रसारण भी आज ही के दिन 11 जून को किया था। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पूर्व ऑफ स्पिनर सकलेन मुश्ताक ने 1999 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी। और 11 जून के ही दिन पहले मैग्नीशियम जेट हवाई जहाज ने 1955 में उड़ान भरी थी। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा अनुसार 1964 में उनकी अस्थियों की भस्म पूरे देश में बिखेरी गई थी। कोर्निकोव महिला 2003 में टेनिस की सबसे सुंदर खिलाड़ी घोषित की गई थी। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद 2008 में रिहा हुई थी। और आज ही के दिन 11 जून को महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था 1897 को। और आज के दिन को यानी कि 11 जून को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। जी हाँ, 26 को ये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। खेल को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और प्राथमिकता देने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, ताकि सभी लोग, विशेष रूप से बच्चे, इसका लाभ प्राप्त कर सकें और अपनी पूरी क्षमता तक विकसित हो सकें। खेल महज मनोरंजन से कहीं बढ़कर एक सार्वभौमिक भाषा है, जिसे सभी उम्र के लोग बोलते हैं और जो राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक सीमाओं से परे है। ये साझा जुनून समुदाय की भावना और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देता है। ये व्यक्तियों में लचीलापन, रचनात्मकता और नवाचार को भी बढ़ावा देता है। विशेष रूप से बच्चों के लिए खेल रिश्तों को मजबूत बनाने और आत्मनियंत्रण आघात से उबरने और समस्या समाधान कौशल को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये बच्चों को संज्ञानात्मक, शारीरिक, रचनात्मक, सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकसित करने में मदद करता है, जो उन्हें तेजी से बदलती दुनिया में सफल होने के लिए बहुत आवश्यक है। इस साल यानी कि 2026 का इसका जो दिवस का अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का थीम है वो है कि जून माह के दौरान यूनिसेफ खेल के विज्ञान से लेकर पूरे परिवार के लिए मनोरंजक गतिविधियों तक हर विषय पर अभिभावकों के लिए विशेषज्ञ सुझाव और मार्गदर्शन जो है वो प्रदान करेगा। और ये विषय है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। जी, और ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और दोस्तों आपको बताएं, 11 जून को ही राष्ट्रीय जीवन सौंदर्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष 11 जून को राष्ट्रीय जीवन सौंदर्य दिवस मनाया जाता है। और ये दिन उन लोगों और कार्यों को समर्पित है जो हमारे जीवन और आसपास की दुनिया को सकारात्मक और सुंदर बनाते हैं। ये विशेष दिन हमें दूसरों के जीवन में खुशियां बिखेरने, दयालुता दिखाने और जीवन को अधिक सार्थक बनाने के लिए प्रेरित करता है। जी, ये 11 जून के साथ जुड़ी कुछ ऐतिहासिक बातें हमने आपको बताई। अब आइए आगे बढ़ते हैं, एक गीत आइए सुन लेते हैं।

0: इतना खूबसूरत गीत, एक दोस्त का एक दोस्त के प्रति प्यार इसमें झलकता है। किशोर कुमार की आवाज, एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का नाम। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
5: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
6: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: जी, अब सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और समाचार पत्रों को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। ताजा तरीन खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर की हम बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवारत निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनके कार्यकाल के बुधवार को 4,399 दिन पूरे हुए। उन्होंने 4,398 दिनों तक इस पद पर रहे पूर्व PM जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस उपलब्धि और NDA सरकार के 12 साल पूरे होने पर बुधवार को भारत मंडपम में NDA की बैठक हुई। देश भर में मंदिरों में पूजा आरती और विशेष कार्यक्रम किए गए।

अगली खबर की बात हम करें तो चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए सेना 23,000 करोड़ रुपए की लागत से 300 के 9 वज्र स्वचालित तोपों की खरीद करने जा रही है। सूत्रों ने बताया कि इस प्रस्ताव को जल्द ही रक्षा खरीद बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए रक्षा खरीद परिषद को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने पर यह सौदा सबसे बड़े तोपखाना खरीद सौदों में शामिल होगा। अगली खबर की बात हम करें तो इस साल आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह रिकॉर्ड स्तर पर है। यात्रा शुरू होने के 40 दिन में ही 37,818 इनर लाइन परमिट यानी कि ILP जारी हो चुके हैं, जो पिछले साल के कुल 36,526 परमिट से अधिक हैं। 1 मई से शुरू ये यात्रा नवंबर तक चलती है। हालांकि जुलाई अगस्त में मानसून के दौरान यात्रा रोक दी जाती है। इस साल यात्रियों की संख्या 1,00,000 पार कर सकती है। एक और गर्व की बात आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, समाचार पत्रों में ये खबर छपी है। भारतीय सेना के मेजर प्रभात मिश्रा ने अमेरिकी सेना कमांड और जनरल स्टाफ कॉलेज यानी कि CGSC में 2 शीर्ष शैक्षणिक पुरस्कार जीते हैं। मेजर मिश्रा को उत्कृष्ट मास्टर ऑफ मिलिट्री आर्ट्स एंड साइंस थीसिस के लिए बिरर ब्रुक्स पुरस्कार और जनरल डगलस मैक आर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। 10 महीने के इस नेतृत्व कार्यक्रम में 92 देशों के सैन्य अधिकारी शामिल हुए थे। इस वर्ष 951 अधिकारियों को स्नातक उपाधि मिली और पहली बार भारतीय को ऐसी उपलब्धि मिली है। तो हमें गर्व है भारतीय सेना के मेजर प्रभात मिश्रा पर। बात करें हिमाचल की तो देखिए, प्रदेश में बीती रात को कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। इससे पहाड़ी इलाकों में तापमान गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं पर्यटन स्थलों पर मौसम सुहावना होने से पर्यटकों की रौनक जो है वो बढ़ गई है। मैदानी क्षेत्रों में हीटवेव जारी है। ऊना, बिलासपुर और सोलन के निचले क्षेत्रों में हीटवेव जारी है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर वीरवार से देखने को मिलेगा। वीरवार को 10 जिलों में तेज बारिश, आंधी और भारी ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देश की बात करें तो मॉनसून आने के बाद बुधवार को पहली बार ऐसा हुआ जब इसकी रफ्तार दोनों छोरों पूर्वी और पश्चिमी तट पर रुक गई। हालांकि अगले 2 से 3 दिनों में इसके तेजी से आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। जल्द ही मॉनसून महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों को पार कर लेगा। इसके अलावा ये तमिलनाडु को पूरा कवर करते हुए ओडिशा और छत्तीसगढ़ तक पहुंचेगा। मॉनसून का पूर्वी छोर पश्चिम बंगाल को पार करके बिहार और झारखंड में भी दस्तक दे देगा। फिलहाल मॉनसून चेन्नई, महाराष्ट्र के हरनाई और बंगाल के सिलीगुड़ी में रुका है। और देखिए, जलवायु परिवर्तन और अरब सागर के बढ़ते तापमान ने भारत के मॉनसून का मिजाज जो है वो बदल दिया है। अब महीनों तक होने वाली सामान्य बारिश की जगह कुछ ही घंटों में तबाही मचाने वाली बारिश और फिर लंबा सूखा देखने को मिल रहा है। 2025 में मॉनसून के दौरान ज़्यादा पश्चिम विक्षोभ सक्रिय रहे और कई प्रणालियाँ 5 से 7 दिन तक प्रभावी बनी रही। इससे हिमाचल, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएँ बढ़ी। और इससे क्या बदला? तापमान में हर एक डिग्री वृद्धि पर वातावरण लगभग 7% अधिक नमी धारण कर सकता है। इसीलिए अब मौसम प्रणालियां कम समय में अधिक बारिश करा रही हैं। और इससे डरने की बात यह है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आई मानसूनी नमी हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिम विक्षोभ से मिलती है, तो बादल तेजी से बनते हैं और कम समय में भारी वर्षा होती है। और अब आगे जो है वो सवाल ये नहीं है कि बारिश कितनी होगी, बल्कि ये है कि कब कितनी तीव्र होगी। अब तैयारी औसत मौसम के लिए नहीं, चरम मौसम झेलने के लिए करनी होगी। बात करें खेलों की तो दुनिया की सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप गुरुवार से यानी कि आज से शुरू हो रहा है। फुटबॉल के इस महाकुंभ का फाइनल जो है वो 19 जुलाई को न्यू जर्सी में होगा। 39 दिन तक चलने वाले टूर्नामेंट में 104 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला मेक्सिको सिटी में मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच देर रात 12:30 बजे से भारतीय समयानुसार खेला जाएगा। उससे पहले ओपनिंग सेरेमनी 11 बजे से शुरू होगी।
और धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो इसमें आगामी 13 जून को होने वाले भारत बनाम अफगानिस्तान पहले एक दिवसीय मैच को लेकर सरगर्मियां चरम पर हैं। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल के नेतृत्व में मई महीने में आईपीएल क्वालिफायर एक समेत 3 अन्य मुकाबलों के बेहद सफल आयोजन के बाद अब इस बड़े इंटरनेशनल मैच की मेजबानी के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन प्रबंधन ने अपनी तैयारियां जो हैं वो और तेज कर दी हैं। जी, ये कुछ समाचार पत्रों से हमने ताज़ा तरीन खबरें आपके साथ साझा की और अब इसी के साथ आज का सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम होता है यहीं समाप्त।

सुप्रभात हमीरपुर। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:35 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है लोक संसार कार्यक्रम।

जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लोक संसार कार्यक्रम में। मैं हूँ भावना कतना आपके साथ, और आज भी आपके लिए हिमाचल से जुड़ी कुछ बातें, हमीरपुर से जुड़ी कुछ खबरें लेकर आए हैं, और साथ में प्यारे प्यारे लोकगीत। और दोस्तों, हम आपको बताएं, आज 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हम मना रहे हैं, तो आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों के बारे में ही बताएंगे। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत के दम पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है। क्रिकेट के अलावा मुक्केबाजी, हॉकी और एथलेटिक्स जैसे खेलों में भी यहाँ के लाल और बेटियों ने कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं। और देखिए ना, हिमाचल प्रदेश यूं तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल की छाप छोड़ने वाले हिमाचल के खिलाड़ियों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जो हाल ही के वर्षों में इस छोटे से पहाड़ी राज्य की प्रतिभाओं से इन्होंने खेलों की दुनिया में काफ़ी नाम कमाया है। जी हाँ, इन खिलाड़ियों के बारे में हम आपको बताएंगे, पर पहले मनोरंजन की बात कर लेते हैं। एक प्यारा सा लोकगीत आइए सुन लेते हैं।

जी, ये प्यारा सा लोकगीत आपने सुना, पूनम अवस्थी, सुषमा, कृष्णा, शांति बिष्ट और साथियों की आवाज़ों में। जी, लोक संसार कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से, और हम हिमाचल के खिलाड़ियों के बारे में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। ऋषि धवन की बात करें, क्रिकेट से संबंधित हैं ये खिलाड़ी, क्रिकेट के हैं। छोटी काशी यानी मंडी के इस हरफनमौला खिलाड़ी ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। उस वक्त टीम इंडिया की कमान महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में थी। हालांकि उस वक्त मिले अवसर को ऋषि धवन भुना नहीं पाए, लेकिन घरेलू क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन से लगातार सुर्खियों में बने रहे, और हाल ही में मजबूत तमिलनाडु को फाइनल मुकाबले में मात देकर हिमाचल की टीम को पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब दिलाया। टूर्नामेंट में कप्तान धवन ने अपने ऑलराउंड खेल का प्रदर्शन करते हुए हर किसी को हैरत में डाल दिया, और उन्हें उम्मीद है कि इस प्रदर्शन के बल पर उन्हें फिर से टीम इंडिया में एंट्री का अवसर मिलेगा। बात करें रेणुका सिंह ठाकुर की, ये भी क्रिकेट की ही खिलाड़ी हैं। रोहड़ू शिमला की पारसा गांव की मध्यम गति की गेंदबाज रेणुका का चयन वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड के लिए हुआ है, और ये आयोजन 4 मार्च से हुआ था न्यूजीलैंड में। और यही नहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली 5 मैच की एक दिवसीय मैचों की सीरीज में भी वो टीम का हिस्सा होंगी। और हाल ही में रेणुका ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचों की T20 सीरीज जो है वो खेल चुकी हैं। उनका कहना है कि उन्हें खुद पर भरोसा है कि वो टीम के लिए उपयोगी साबित होंगी। हम आपको बताएं कि रेणुका हिमाचल की एकमात्र महिला गेंदबाज हैं जिन्होंने नेशनल टूर्नामेंट में हैट्रिक ली है। अंडर 19 में कर्नाटक के खिलाफ रेणुका ने हैट्रिक बनाते हुए कुल 5 विकेट लिए थे, और उनसे पहले सुषमा वर्मा और हरलीन देओल भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेल चुकी हैं। अंजुम मोदगिल की बात करें, जो शूटिंग की खिलाड़ी हैं, मूलतः ऊना के धुसाड़ा की अर्जुन अवार्डी अंजुम, जी हाँ, अर्जुन अवार्डी हैं ये अंजुम मोदगिल। इन्होंने शूटिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी नाम कमाया है, कई पदकों पर अचूक निशाने लगा चुकी हैं। टोक्यो ओलंपिक के दौरान शूटिंग टीम के लिए पहला कोटा हासिल करने वाली अंजुम मोदगिल शानदार प्रदर्शन के बावजूद इस बड़े टूर्नामेंट में मेडल से चूक गई थी। मोदगिल 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन इवेंट में 15वें स्थान पर रही थी। उनका कहना है कि उस दिन वो अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाई थी, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि वो दुगने जोश से अगले ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतने की कोशिश करेंगी और सफल भी होंगी। कबड्डी के खिलाड़ी अजय ठाकुर की बात करें तो नालागढ़ के अजय ठाकुर को देश के स्टार कबड्डी खिलाड़ियों में गिना जाता है। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान ने कई मौकों पर देश को गर्व करने के मौके दिए हैं। 2014 में एशियन गेम्स और 2016 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को गोल्ड दिलाने में अजय की अहम

भूमिका रही थी। उन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रो कबड्डी हो या फिर कोई बड़ा टूर्नामेंट, अजय ठाकुर हर बार चैंपियन की तरह प्रदर्शन करते हैं। हॉकी के खिलाड़ी वरुण कुमार की बात करें तो हिमाचल के चंबा निवासी वरुण कुमार टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। इससे पहले 1964 में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय टीम का नेतृत्व ऊना निवासी पद्मश्री चरणजीत सिंह ने किया था। चंबा के डलहौजी से ताल्लुक रखने वाले वरुण के पिता पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं, जो पंजाब के जालंधर में परिवार सहित गुजर बसर करते हैं। और उनका कहना है, वरुण का कहना है कि टोक्यो में पदक जीतने पर हिमाचल के लोगों ने बेहद प्यार दिया। वरुण ने कहा कि हॉकी की नेशनल टीम में जगह बनाने तक का सफर आसान नहीं रहा, इसके लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बॉक्सिंग के खिलाड़ी आशीष चौधरी की बात हम करें तो जिला मंडी के सुंदरनगर निवासी आशीष चौधरी ओलंपिक में खेलने वाले हिमाचल के पहले बॉक्सर हैं। आशीष टोक्यो ओलंपिक में 75 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और हालांकि वो टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन आशीष को ओलंपिक में मेडल ना जीत पाने का अफसोस तो है, लेकिन कहते हैं कि अनुभव आगे के लिए काम आएगा और पूरा विश्वास है कि अपनी खामियों को दूर कर भारत के लिए अगले ओलंपिक में पदक अवश्य लाएंगे। और भी बहुत से खिलाड़ी हैं हिमाचल के जो देश का गौरव बढ़ा चुके हैं, हिमाचल का मान बढ़ा चुके हैं। चलिए, ये तो की हमने बात हिमाचल के खिलाड़ियों के बारे में, अब आगे बढ़ते हैं, एक लोकगीत आइए सुन लेते हैं।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जी, तो ये प्यारा सा लोकगीत आपने सुना और ये छोटा सा अंतराल और लोक संसार कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। और अब कार्यक्रम में हमीरपुर से जुड़ी कुछ खास खबरें समाचार पत्रों से आपके साथ साझा करते हैं। जी, सबसे पहली खबर की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में TGT आर्ट्स के 425 पदों को भरने के लिए पोस्ट कोड 25001 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इन पदों के लिए कुल 44155 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 38220 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी थी और इस परीक्षा में 664 उम्मीदवारों का चयन दस्तावेजों की जांच के लिए किया गया था। 16 से 22 अप्रैल तक और 1 जून को दस्तावेजों की जांच के बाद 414 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। पात्र उम्मीदवार ना मिलने के कारण OBC स्वतंत्रता सेनानी परिजन के 2 और SC स्वतंत्रता सेनानी परिजन के 7 पद खाली रह गए हैं। कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण सामान्य श्रेणी के भी 2 पद भी फिलहाल खाली रखे गए हैं। अगली खबर की बात हम करें तो कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, नागरिक सेवा, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को इसके लिए पद्म पुरस्कार 2027 हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार पद्म पुरस्कार के लिए आवेदन संबंधित विभागों की संस्तुतियों सहित 30 जून तक सामान्य प्रशासन विभाग में पहुंच जाने चाहिए। पद्म पुरस्कार देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में शामिल हैं और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट एवं सराहनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किया जाता है। विभाग ने पात्र व्यक्तियों के नाम समय सीमा के भीतर भेजने के निर्देश दिए हैं।

0: जी, अगली खबर की हम बात करें। सुजानपुर में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 13 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है। इसके साथ ही क्षेत्र में तार शिफ्ट करने का कार्य भी शीघ्र शुरू किया जाएगा, जिससे पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। ये जानकारी विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर के विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने बुधवार को दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ा रही है। एक अन्य खबर के अनुसार, प्री प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के नौनिहालों की सीखने की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत अब बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया गया, इसकी जानकारी सीधे अभिभावकों तक पहुंचाई जाएगी। नई व्यवस्था के अनुसार शिक्षकों को प्रतिदिन पढ़ाए गए विषयों और गतिविधियों की जानकारी PDF के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करनी होगी। के बाद अभिभावक, विशेषकर माताएं, बच्चों की सीखने की गतिविधियों की मॉनिटरिंग कर सकेंगी। इस पहल का उद्देश्य 3 से 5 वर्ष तक के नौनिहालों के पंचकोशीय विकास को मजबूत करना है और साथ ही घर और स्कूल दोनों जगह खेल खेल में शिक्षा को बढ़ावा देना है। इससे बच्चों पर से किताबों का बोझ कम करने और पहली कक्षा में प्रवेश से पहले उन्हें बोलने और लिखने में सक्षम बनाने पर जोर दिया जा रहा है। विभाग का लक्ष्य है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी निजी स्कूलों जैसी गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं और सीखने का बेहतर माहौल मिले। वर्तमान में हमीरपुर जिले भर के 402 प्राथमिक स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, जहां बच्चों को बाल वाटिका के 3 चरणों के तहत शिक्षा प्रदान की जा रही है। जिला समन्वयक प्री प्राइमरी भवानी सिंह के अनुसार, प्राथमिक स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं में दाखिल नौनिहालों की माताओं के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुपों के माध्यम से माताएं बच्चों के लिए स्कूलों में कार्यवाही कई गतिविधियों पर नजर रख सकेंगी। स्कूल प्रमुखों को इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जी, एक और खबर की हम बात करें जो हमीरपुर से ही जुड़ी हुई है, वो ये है कि सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र CMTC हमीरपुर में अब स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं स्वदेशी उत्पाद और स्थानीय व्यंजन परोसेंगी। जी हां, प्रशिक्षण और बैठकों में आने वाले प्रतिभागियों को अब स्थानीय स्वाद से भरपूर भोजन उपलब्ध हो सकेगा। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत केंद्र में होने वाले कार्यक्रमों की खानपान व्यवस्था की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूहों को सौंपी है। इस कार्य में चिराग क्लस्टर लेवल फेडरेशन सहयोग करेगा। इस पहल से जहां महिलाओं को नियमित आय का नया स्रोत मिलेगा, वहीं प्रशिक्षण और बैठकों में भाग लेने वाले लोगों को गुणवत्तापूर्ण और पारंपरिक हिमाचल भोजन भी मिल सकेगा। विभाग की ओर से महिलाओं को भोजन तैयार करने, परोसने और स्वच्छता संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पहले विभिन्न बैठकों और प्रशिक्षण शिविरों में खानपान व्यवस्था को लेकर विभाग को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसे देखते हुए ये कदम उठाया गया है। अब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं नाश्ता, दोपहर और रात्रि भोजन, चाय, स्नैक्स, पारंपरिक व्यंजन और साथ ही प्रशिक्षण हॉल व्यवस्था, पंजीकरण, सामग्री सहायता, स्टेशनरी किट, जलपान प्रबंधन और हाउसकीपिंग जैसे कार्यों में भी सहयोग करेंगी। जी, तो ये तो हमने आपको बताई हमीरपुर जिले से जुड़ी कुछ खास खबरें, और अब इसी के साथ आज का लोक संसार कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त भावना कतना को दीजिए अनुमति। नमस्कार। लोक संसार, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 8 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
4: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
3: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने

0: सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में

0: उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
3: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब ₹1,000 तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में NTA अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने NTA ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में POK की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने POK में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का POK में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना NDA सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. A report from our correspondent.
6: Measures for promoting entrepreneurship, enhancing skilling and creating sustainable employment opportunities across the country will also be deliberated upon in the meeting. The discussions will further focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers including governance, digital public infrastructure, convergence, partnerships and data-driven systems alongside a structured mechanism to track short, medium and long-term outcomes ensuring accountability and measurable impact. A key thrust will be on aligning state visions with the national vision on inclusive human development, reinforcing a unified and collaborative approach towards equitable and sustainable growth. The Governing Council of Niti Aayog will also focus on the recommendations of 5th National Conference of Chief Secretaries held during 26th to 28th December last year. With Anupam Misra, Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
5: Prime Minister Narendra Modi has said aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said that National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday evening. He said the rising sun of hope in 2014 has today transformed into a ray of renewed confidence. He said for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace. Mr. Modi said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
7: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
5: In his address, the Prime Minister said that at a time when the economies of major countries around the world are struggling, India has still achieved a growth rate of 7.7% in 2025-26. He said the country has moved out of the fragile 5 category and has now become one of the fastest growing economies in the world. Earlier yesterday, the National Democratic Alliance adopted a resolution lauding Mr. Modi on achieving the feat of becoming the country's longest-serving elected Prime Minister. BJP President Nitin Naveen has said that a total of 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave held at Bharat Mandapam in New Delhi. Speaking to the media, Mr. Naveen said the NDA leaders expressed their gratitude for Prime Minister Narendra Modi's leadership and congratulated him on a historic milestone, calling it a moment of pride for 140 crore people of the country. Mr. Naveen said, under Prime Minister Modi's leadership, India is moving forward towards the vision of Viksit Bharat. He added that the Prime Minister's guiding mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas has connected people across the country. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the measures taken by the government towards the welfare of the poor. Over the past 12 years, the Narendra Modi government has implemented several flagship schemes for the welfare of the poor and to strengthen social security. Housing for the poor is the major focus area of the Modi government. Under the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen, more than 4 crore houses have been allocated to states for economically weaker families in rural areas. In the area of food security, the government is providing free food grains to over 81 crore beneficiaries across the country under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Talking to Akashwani News, Indramani Nayak of Kalahandi in Odisha said that the poor people are benefiting through this scheme.
8: My name is Indramani Nayak. I belong to Kamthana Panchayat in Bhavanipatna, Kalahandi. Under the Garib Kalyan Anna Yojana that Narendra Modi has started, our family consists of 5 members and we are receiving 5 kg of grains per person. Earlier we used to face a lot of hardships, but now we are all living in peace and happiness.
5: The world's largest public healthcare scheme, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, is providing health coverage of 5 lakh rupees to vulnerable families, while Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendras are offering generic medicines at affordable rates. Around 10 crore 82 lakh beneficiaries have availed cashless treatment under the Ayushman Bharat scheme. Talking to Akashwani News, Fayaz Ahmed of Paramula, Jammu and Kashmir said that the Ayushman Bharat scheme is facilitating the poor to avail treatment during emergencies.
9: I am very grateful to the NDA government and Modi ji for launching so many schemes. For the first time in the country's history, a poor person has received direct benefits through digitalization. I would like to talk about Ayushman Bharat. What used to happen in the country earlier before Modi ji's government was that when someone fell ill, people either had to sell their land or some expensive household item to arrange money for operations and other treatment. But ever since Modi ji launched the Ayushman Bharat scheme, there is no longer the case across the country.
5: Over 10 crore 55 lakh women have been provided free LPG gas connections under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, freeing them from the health hazards of traditionally cooking fuels. Meanwhile, under the PM Swanidhi scheme, more than 1 crore 12 lakh loans have already been disbursed to street vendors so far. India's social protection coverage has risen sharply from 19% in 2015 to more than 64% in 2025, covering nearly 94 crore citizens under the government welfare schemes. Around 25 crore people have been lifted out of poverty, reflecting a significant shift towards inclusive growth and welfare-driven governance. With Dipendra Kumar, Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
10: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The Indian Chamber of Commerce plans to facilitate investments worth 1 lakh crore rupees in West Bengal through its member companies, reflecting growing industry confidence in the state's economic potential and growth prospects. The proposal was discussed during a meeting in New Delhi between the Indian Chamber of Commerce delegation, led by its president Brij Bhushan Agarwal and Union Minister Jitendra Singh. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Bulgaria's Prime Minister Ruman Radev in Sofia yesterday. Dr. Jaishankar highlighted India's robust bilateral ties, recent opportunities created by the strengthening India-Bulgaria strategic partnership and the imperative for closer bilateral cooperation to de-risk and diversify in an increasingly volatile world. He will visit Finland today to attend the 14th edition of the Kultaranta Talks. The U.S. military launched another round of strikes on multiple targets in Iran yesterday, saying the attacks were in response to Iran's continued aggression as tensions escalated in West Asia despite efforts to revive negotiations to end the war. The second day of American strikes came hours after Iran launched

हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हिमाचल प्रदेश में सभी श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों का परमिट नवीनीकरण और काउंटर

सिग्नेचर से संबंधित शुल्क बढ़ेगा। परिवहन विभाग ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम में संशोधन का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन RD नजीम ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। आम जनता से 30 दिन के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संशोधन पर प्राप्त सुझावों आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। नियम लागू होने के बाद व्यावसायिक वाहनों का परमिट शुल्क नई दरों के अनुसार वसूल किया जाएगा। विभाग के अनुसार वर्ष 1999 के बाद शुल्क बढ़ाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने जूनियर बेसिक टीचर JBT पोस्ट कोड 26015 की परीक्षा से जुड़ी जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है और उसका लिंक भी उपलब्ध करवा दिया है। अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत निर्देश भी साइट पर दिए गए हैं। आयोग सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने JBT की परीक्षा 13, 14, 16 और 17 जून को आयोजित की जा रही है। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ये भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा केंद्रों के एंट्री गेट परीक्षा शुरू होने से ठीक 30 मिनट पहले बंद कर दिए जाएंगे। एंट्री गेट बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी किसी भी सवाल के मामले में सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच टेक्निकल हेल्प डेस्क नंबर 9986638751 पर संपर्क कर सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन राष्ट्र निर्माण, सुशासन और जनसेवा को समर्पित रहे। मोदी के कुशल नेतृत्व ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। ऊना में बुधवार को प्रशिक्षण कार्यशाला में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन का कार्यकाल संकल्प से सिद्धि का प्रमाण बन गया है। मोदी ने राष्ट्र निर्माण में समर्पित एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने 12 वर्षों के निर्णायक और प्रभावी शासन को साहसिक सुधारों, जमीनी स्तर और सशक्तिकरण, वैश्विक मंच पर भारत के उदय और राष्ट्रीय उद्देश्य का नवीनीकृत भावना के साथ चिन्हित किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जैसे जैसे भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है, उनका नेतृत्व एक मजबूत, अधिक समृद्ध और वैश्विक रूप से सम्मानित भारत के लिए और प्रभावी बनता जा रहा है। अनुराग ने कहा कि 2014 से लेकर 2024 के तीनों चुनावों में देश की जनता ने जिस प्रकार से मोदी को जनादेश देकर उनके नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है, ये प्रमाण है कि देश को एक ऐसे सबल और दूरदर्शी नेतृत्व की तलाश थी जो सबका साथ, सबका विकास और अंत्योदय कल्याण की भावना के साथ भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बना सके। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत डिपो में मिल रहे सस्ता राशन वितरण में बदलाव किया जा रहा है। जिस क्षेत्र में राशन कार्ड उपभोक्ता निवास करते हैं, इसके लिए विभाग ने सभी डिपो संचालकों को राशन आवंटन के दौरान उपभोक्ताओं का स्थायी पता POS पॉइंट ऑफ सेल मशीन में सही ढंग से दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान में बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं जो निवासी किसी अन्य क्षेत्र में कर रहे हैं और जबकि उनका राशन कार्ड किसी दूसरे डिपो से जुड़ा हुआ है। इसी समस्या को दूर करने के लिए स्थायी पते के आधार पर उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है। तो हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में बस इतना ही। जी, अभी आप हिमाचल डायरी का आज का अंक सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 8:35 हुए हैं। अब से लेकर 9:20 तक विविध भारती के कार्यक्रम आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं।

ओके जानू फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना ए आर रहमान श्रीनिधि वेंकटेश की आवाज़ों में, गुलजार के बोल और म्यूजिक ए आर रहमान का। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम में आ रही, आइए सुनते हैं अगला गाना डंकी फिल्म से, अरिजीत सिंह की आवाज में, स्वानंद किरकिरे के बोल और म्यूजिक है प्रीतम का।

बच्चों के हैं तीन काम, खेल कूद, पढ़ाई और आराम। इनमें से सबसे जरूरी हमेशा रहेगा खेल कूद का काम। पसीने में लथपथ, पार्क के एक कोने से दूसरे कोने तक की जोर की दौड़, थकान के बावजूद सबसे ऊंची आवाज लगाएगा कौन? बच्चों के यही खेल कूद की तो बातें हैं जो उन्हें बनाती हैं मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग।

बच्चों की इस खलबली को आप सुन रहे थे भूतनाथ फिल्म से। कौस्तव घोष, अपर्णा भागवत, भारवन सुरेश और स्नेहा सुरेश की आवाज़ों में, जावेद अख्तर के बोल, म्यूज़िक विशाल शेखर का। इस खलबली को जारी रखते हैं इस अगले गाने के साथ। इंटरनेशनल प्ले डे पे जारी है बच्चों की खलबली।

0: चिल्लर पार्टी इस फिल्म से सुन रहे थे आप। ये गाना अमित त्रिवेदी, जयश्री त्रिवेदी की आवाजों में, नितेश तिवारी और अमित त्रिवेदी के बोल और म्यूजिक अमित त्रिवेदी का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रेया घोषाल, सुजैन डिमेलो और रूप कुमार राठौर की आवाज़ में सुन रहे थे वीर फिल्म से आप ये गाना, गुलजार के बोल, साजिद वाजिद का संगीत।

हजारा फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर की आवाज में ये गाना, जावेद अख्तर के बोल, संजीव कोहली का संगीत।

पैपॉन की आवाज़ में मेट्रो इन दिनों फिल्म से ये गाना, संदीप श्रीवास्तव के बोल, म्यूजिक है प्रीतम का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं अनवर फिल्म से, रूप कुमार राठौर और साथियों की आवाजों में सईद कादरी के बोल, म्यूजिक है मिथुन का।

0: अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:18 हुए हैं। कुछ ही देर में यानी 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी शिमला से।
1: तक वृद्धों का सहारा,
2: आज ही आवेदन करें हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
3: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। नीति आयोग की बैठक नई दिल्ली में आज। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल लेंगे भाग। प्रदेश सरकार ने 73 सरकारी स्कूलों को किया मर्ज। 20 किए बंद और 3 कॉलेजों के विलय का फैसला लिया वापस। कांगड़ा जिला के ढगवार में एक अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का किया जा रहा निर्माण। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और एनडीए ने हमेशा राष्ट्र के विश्वास को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। सम्मेलन में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के प्रमुख नेता, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में विकसित भारत 2047 के रोडमैप पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे जो 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इनमें आधारभूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए आवश्यक कौशल विकास, उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास, स्वास्थ्य, पोषण और जन कल्याण तथा सभी के लिए समानता और गरिमा सुनिश्चित करना शामिल हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से जुड़े 4 प्रमुख मुद्दों को प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के समक्ष उठा सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व घाटा अनुदान राशि के बंद होने से राज्यों को हुए आर्थिक नुकसान, प्राकृतिक आपदाओं की भरपाई और लंबे समय से लंबित ग्रीन बोनस की मांग से जुड़े मुद्दे उठाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी हाईकमान से, सरकार और संगठन से जुड़े विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्वास के विकास के 12 वर्ष, गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल 12 व 13 जून को शिमला के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने कहा कि 12 जून को नड्डा शिमला में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। इसके अलावा वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में समाज के विभिन्न वर्गों को करेंगे। 13 जून को वे मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे और केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं का अवलोकन करेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश में 5 छात्रों वाले 73 स्कूल मर्ज एवं 0 नामांकन वाले 20 स्कूल और बंद कर दिए हैं। राज्य सरकार का तर्क है कि स्कूलों के युक्तिकरण से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं व संसाधन उपलब्ध करवाए जा सकेंगे। इस बीच सरकार ने 3 सरकारी कॉलेजों को विलय करने के आदेश वापस ले लिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में कल अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें डिग्री कॉलेज कुकुमसेरी, डिग्री कॉलेज रोहनाट और डिग्री कॉलेज जयनगर के विलय के आदेश वापस लिए गए हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in/DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला के ढगवार में 225 करोड़ रुपए की राशि से एक अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत डेयरी सेक्टर को नई मजबूती सहित हजारों ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
2: कांगड़ा जिले के ढगवार में 225 करोड़ से अधिक की राशि से एक अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जो न केवल

0: जो आने वाले समय में कांगड़ा की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
1: प्रदेश सरकार ने नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों में विधायकों के वोट डालने पर रोक लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश अतुल एस चांदुरकर के खंडपीठ के समक्ष ये मामला 15 जून के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 जून को प्रदेश सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसके तहत स्थानीय विधायकों नगर निकायों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में बराबर पार्षद होने पर वोट डालने का अधिकार दिया था। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव की चौथी सांस्कृतिक संध्या में आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस संध्या में सुप्रसिद्ध पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर मुख्य कलाकार के रूप में अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अतिरिक्त हिमाचल के विभिन्न मशहूर कलाकार सांस्कृतिक संध्या का समा बांधेंगे। इसके अलावा उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से विभिन्न राज्यों के कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ लोगों और पर्यटकों का मनोरंजन करेंगे। 12 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम व अन्य प्रतियोगिताएं लोगों व पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। हालांकि सिरमौर जिला के नाहन में बारिश होने का समाचार है। मौसम विभाग के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 16 जून तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है। विभाग ने आज 5 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर के लिए बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, व्यावसायिक वाहनों का बढ़ेगा परमिट शुल्क, हर 2 साल में होगी 10% बढ़ोतरी। हिमाचल परिवहन विभाग ने मोटर वाहन नियम संशोधन का ड्राफ्ट किया अधिसूचित। मुख्यमंत्री के हवाले से पंजाब केसरी लिखता है, ई टैक्सी और ई रिक्शा के लिए मिलेंगे 50 करोड़, हिमाचल में अब 24 घंटे खुल सकेगी दुकानें। दैनिक जागरण का शीर्षक है, प्रमाण पत्र लाइसेंस सहित सभी सेवाएं करें ऑनलाइन। दैनिक भास्कर की खबर है, नीति आयोग की बैठक में भाग लेने दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे प्रदेश हित से जुड़े मुद्दे। मौसम पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, प्रदेश में आज से बिगड़ेगा मौसम, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। नीति आयोग की बैठक नई दिल्ली में आज, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल लेंगे भाग। प्रदेश सरकार ने 73 सरकारी स्कूलों को किया मर्ज, 20 किए बंद और 3 कॉलेजों के विलय का फैसला लिया वापस। कांगड़ा जिला के ढगवार में एक अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का किया जा रहा निर्माण। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब से लेकर 10 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आइए उठाते हैं।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खा

0: मेरा जन्म भी बंबई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौड़ जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज़्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज़ सुनी तो वो किसी साहस की सुनी, या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने, मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई हैं अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद ही इज़ ऑल्सो प्रीबिक सिंगर, और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूज़िक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तो जब भी कोई स्कूल का फंक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो मुझे उसमें तबला बजाने के लिए कहते थे या गाने के लिए कहते थे।

0: पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, क्योंकि संगीत बहुत कम उम्र से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौड़ एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौड़ ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौड़ को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी, जिसमें रूप कुमार राठौड़ की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिली जैसे गुमराह, मोहब्बत की आरजू, तेजस्विनी और नाजायज, लेकिन रूप कुमार राठौड़ को असली कामयाबी मिली फिल्म बॉर्डर से।

पहला प्रोग्राम मुझे याद है, जैसे मैं 6 साल का था तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस एक गौला टैंक पे, एक हॉल है तेजपाल हॉल, वहाँ पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज़्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफ़ी म्यूजिशनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा, प्यार, और गाने बजाने की बातें ज़्यादा होती थी rather than gossip। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो आवाज़, जो तबले की जो पहली आवाज़ या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पर डाला कि अगर मैं रो रहा हूँ और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब घर पे आए और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज़ मुझे सुनाई दी और मेरी आँख खुल गई और मैं रोने लगा, ज़िद करने लगा। और फिर खां साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे और 1 घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया। हाँ, तो वाकई वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज़्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रही हो सकती है कि मैंने तबला एज अ प्रोफेशनल बजाना शुरू किया।

0: रूप कुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कि कौन कौन आते थे?
1: अब्बा जी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह खान
1: साहब और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोज़र हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमीम अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।

0: तबला जो था उसमें उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और किन से आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने से आई, कुछ चीज़ें सीखने से आई, और कुछ चीज़ें जो हैं अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, ख़ास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित श्यामता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तरखवा खां साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब को देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में बिठाई, और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गज़लें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला। उसमें से ये एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहाँ मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में
0: और वहाँ पर हारमोनियम पड़ा हुआ था। ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई। उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौड़ को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

0: ज़माना।
1: लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने, विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 10 बजने को हैं, अब हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। समावेशी मानव विकास ढांचे पर इस बैठक में चर्चा होगी जो 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए कल उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
3: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है। प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया। एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत तेजी से खेलों का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री को देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक शक्तिशाली और महान नेता हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर केंद्र शासित प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की सराहना करते हुए दक्षिण कश्मीर के लोगों की सुविधा के लिए अनंतनाग में इसका ठहराव देने का अनुरोध किया। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कारों की घोषणा की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में और हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आंधी और गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज की लघु वार्ता। आज की लघु वार्ता का विषय है भारत सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं।

जी, आज की लघु वार्ता के साथ हाजिर हूँ मैं भावना कतना। भारत सरकार के 12 वर्षों के कल कार्यकाल में महिलाओं के लिए जो है वो बहुत सी योजनाएं चलाई गई हैं। पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार ने महिला कल्याण से आगे बढ़कर महिला नेतृत्व वाले विकास को प्राथमिकता दी है। इन वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और उद्यमिता के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और लाभकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्षों में भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में व्यापक और संरचनात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। वर्ष 2014 से 2026 के बीच महिलाओं को केवल कल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थी मानने के बजाय उन्हें विकास की साझेदार, निर्णयकर्ता और नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, तकनीक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इस परिवर्तन की साफ तस्वीर पेश करती है। आइए आपको बताते हैं 12 वर्षों में उठाए गए कुछ बड़े कदम जिन्होंने न केवल देश की करोड़ों महिलाओं को सशक्त बनाया बल्कि नए भारत की विकास की तस्वीर भी बदल दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी हाँ, सोच बदलने का राष्ट्रीय अभियान। 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने समाज में बेटियों को लेकर सकारात्मक सोच विकसित करने का काम किया। इसका उद्देश्य घटते बाल लिंग अनुपात को सुधारना और लड़कियों को समान अवसर उपलब्ध कराना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप संस्थागत प्रसव बढ़े और स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 से बढ़कर 1020 तक पहुंच गई है, जो ऐतिहासिक सामाजिक बदलाव का संकेत है। बात करें प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की, मातृत्व को आर्थिक संबल जिससे मिला। मां और शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई। इसके तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे गर्भावस्था के दौरान पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। 30 अप्रैल 2026 तक लगभग 4.92 करोड़ महिलाओं ने इस योजना का लाभ प्राप्त किया और लाभार्थियों तक 20,150 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि सीधे बैंक खातों में पहुंचाई गई, जिससे मातृ स्वास्थ्य को नई मजबूती मिली। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में बात करें, सुरक्षित मातृत्व की गारंटी। हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को की निशुल्क जांच की व्यवस्था ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दी। इसके तहत देश भर के 22,000 से अधिक सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर दूसरी और तीसरी तिमाही की गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जाँच प्रदान की जाती है और इस पहल के अंतर्गत अब तक 7.4 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच की जा चुकी है और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की समय रहते पहचान और निगरानी से मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। जी, बात करें जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में, तो गरीब और वंचित वर्ग की महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करने वाली इन योजनाओं ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में बड़ा योगदान दिया है। आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा गया और इससे घर पर होने वाले असुरक्षित प्रसव के जोखिमों में उल्लेखनीय कमी आई है। इसके परिणाम स्वरूप देश में संस्थागत प्रसव का आंकड़ा 89% से बढ़कर 90.6% तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें, शिक्षा में लैंगिक समानता। जी हां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा व्यवस्था में लैंगिक समावेशन को केंद्र में रखा। NEP के तहत स्थापित लैंगिक समावेशन कोष विशेष रूप से वंचित और पिछड़े क्षेत्रों की लड़कियों को लक्षित सहायता प्रदान करता है, जिससे स्कूलों में लड़कियों की ड्रॉप आउट यानी कि स्कूल छोड़ने की दर में भारी कमी आई है।
समग्र शिक्षा अभियान से बदली स्कूलों की तस्वीरें, जी हाँ, बुनियादी ढांचे को, स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया और इसके तहत सुरक्षित परिसर, अलग शौचालय, बिजली, पुस्तकालय और डिजिटल शिक्षा सुविधाओं का विस्तार हुआ और देश में छात्राओं का नामांकन 2014-15 के 32% से बढ़कर 2024-25 तक 48% तक पहुंच चुका है और साथ ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9477 से बढ़ाकर 25,000 की जा चुकी है। जी, सरकार की विज्ञान ज्योति योजना ने कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को मार्गदर्शन और प्रयोगशाला अनुभव देकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों को चुनने के लिए प्रेरित किया है। दिसंबर 2019 में अपनी शुरुआत के बाद से ये योजना 300 जिलों में 1.12 लाख से अधिक छात्राओं तक पहुँच चुकी है। IIT और NIT में अतिरिक्त सीटें सृजित करने से महिलाओं की भागीदारी 10% से बढ़कर 20% से अधिक हो गई है और वर्तमान में UGC नेट JRF के स्टेम स्कॉलर्स में 53% से अधिक महिलाएं हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो बेटियों के भविष्य की वित्तीय नींव यह रखता है। साल 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक प्रमुख वित्तीय स्तंभ के रूप में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। डाकघरों और अधिकृत बैंकों में 10 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए खोले जाने वाले इन खातों में न्यूनतम 250 रुपये से जमा राशि शुरू की जा सकती है और जिस पर वर्तमान में 8.2% का आकर्षक वार्षिक ब्याज और आयकर की धारा 80C के तहत पूर्ण कर मुक्त रिटर्न का लाभ मिल रहा है, जिसने बेटियों के प्रति समाज के नजरिए और उनकी वित्तीय योजना को पूरी तरह से बदल दिया है। लखपति दीदी, आत्मनिर्भरता की नई पहचान। लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए या उससे अधिक की स्थायी आय तक पहुंचाना है। आज 10.07 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदियों के सृजन का लक्ष्य रखा है और इन पहलों ने महिलाओं को केवल आय अर्जित करने का अवसर ही नहीं दिया बल्कि उन्हें स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामुदायिक नेतृत्व का महत्वपूर्ण केंद्र भी बनाया। ऐसे ही प्रधानमंत्री जन धन योजना, बैंकिंग से जुड़ी नारी शक्ति। जन धन योजना ने महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने बैंकिंग को सरल, सुलभ और सार्वभौमिक बना दिया है। 2014 में शुरू की गई ये योजना शून्य बैलेंस खाते खोलने और परिवारों को औपचारिक बैंकिंग से जोड़ने पर केंद्रित है और इससे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, DBT, बीमा बचत और ऋण जैसी सुविधाओं तक उनकी पहुंच आसान हुई और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला है। और ऐसे ही बात करें मुद्रा योजना और स्टैंड अप महिला, जिसने महिला उद्यमिता का विस्तार किया है। जी हाँ, महिला उद्यमियों के सामने व्यवसाय शुरू करने के समय आने वाली बिना गारंटी लोन की समस्या को साल 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इसके तहत मार्च 2026 तक 40.07 लाख करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है, जिसमें महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी सबसे प्रमुख है। इसके अलावा विनिर्माण और व्यापार क्षेत्र में इसके बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत महिलाओं को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का बड़ा ऋण दिया जाता है, जिसने मार्च 2025 तक 2.05 लाख से अधिक महिला उद्यमियों को मजबूत वित्तीय आधार दिया है। ऐसे ही नमो ड्रोन दीदी है, जो कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का महिला नेतृत्व करती है। वुमनिया और शी मार्ट, बाजार तक सीधी पहुंच, जिसने महिला उद्यमियों की बढ़ाई है और आज कितनी ही महिलाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं।
उज्ज्वला, आवास और जल जीवन मिशन योजना सम्मान और सुविधा का नया आधार है महिलाओं के लिए, और महिला आरक्षण राजनीति और नेतृत्व में बढ़ती भागीदारी। जी हाँ, पिछले 12 वर्षों में महिला सशक्तिकरण भारत की विकास यात्रा का एक केंद्रीय स्तंभ बनकर उभरा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, उद्यमिता और राजनीतिक भागीदारी के क्षेत्र में उठाए गए कदमों ने करोड़ों महिलाओं को नए अवसर प्रदान दिए हैं। आज देश की महिलाएं केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की सक्रिय भागीदारी बन चुकी हैं। और ये है मोदी सरकार के 12 वर्षों की ये यात्रा, इस बात का संकेत देती है कि विकसित भारत 2047 के संकल्प में नारी शक्ति केवल सहभागी नहीं, बल्कि परिवर्तन और प्रगति की अग्रणी शक्ति के रूप में देश का नेतृत्व करेगी। ये थी आज की लघु वार्ता। भारत सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आप लघु वार्ता सुन रहे थे। सुबह के 10:15 हो चुके हैं और देखिए आज वीरवार है। आज के दिन इस समय हम आपका मनोरंजन कुछ पंजाबी गीतों के साथ करते हैं। कार्यक्रम का नाम है पंजाबी फ्लेवर।

जी, आज के पंजाबी फ्लेवर कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ मैं भावना कतना, और आपको देखिए पंजाबी गीत तो सुनाएंगे ही, साथ में आपसे बातचीत भी करेंगे अपने जीवन को सुंदर बनाने की, क्योंकि आज 11 जून है और आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय जीवन सौंदर्य दिवस। और देखिए ना, कौन नहीं चाहता कि हमारा जीवन सुंदर हो, है ना, सभी चाहते हैं, और अपने जीवन को सुंदर सुलभ बनाने के लिए कितनी कोशिशें करते हैं, तो आज यही दिवस मनाया जा रहा है। तो देखिए ना, और ये जीवन उन लोगों को समर्पित है जो जीवन को सुंदर बनाते हैं, चाहे आप रिश्तों को संवार कर या दूसरों को व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करने में मदद करके सुंदरता का निर्माण कर रहे हों, आपके कार्यों का प्रभाव दूरगामी होता है। आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी जीवन को सुंदर बना रहे हैं और बना सकते हैं, इसी बारे में आपसे बातचीत करेंगे। पर हाँ, मनोरंजन भरपूर रहेगा पंजाबी गीतों के साथ।

बहुत ही प्यारा सा ये पंजाबी गीत हमने सुना। और देखिए, जीवन के सौंदर्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, जीवन सौंदर्य दिवस आज मना रहे हैं। तो देखिए, सुंदरता ना अनेक रूपों में प्रकट होती है। सिर्फ चेहरे की सुंदरता, शरीर की बाहरी सुंदरता ही काफ़ी नहीं होती, बहुत से रूप होते हैं सुंदरता के। दयालु शब्दों से लेकर कोमल हृदय तक, जो लोग दूसरों का हौसला बढ़ाते हैं ना, और आशा की छोटी छोटी किरणों में भी शक्ति पाते हैं, वो इस संसार में सुंदरता का संचार करते हैं। कुछ लोग अपने साहसिक कला के माध्यम से संदेश देते हैं, तो कुछ जरूरत के समय मदद के लिए आगे आते हैं। ये लोग वास्तविकता में सुंदर होते हैं। ये सुंदर लोग जख्मों को भरते हैं, थके हुए लोगों के दिलों को सुकून देते हैं और दूसरों को सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे जीवन खूबसूरत बन जाता है। क्योंकि उद्देश्य क्या है? जीवन को खूबसूरत बनाना। तो वो लोग जो सही मायने में ये काम करते हैं, वही इस दिन तारीफ़ के काबिल होते हैं। तारीफ़ के काबिल तो वैसे ये लोग हमेशा ही होते हैं, जो अपने से ज़्यादा दूसरों को महत्ता देते हैं, दूसरों के जीवन को भी सुंदर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, है ना। और ऐसे ही पंजाबी फ्लेवर कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को खूबसूरत पंजाबी गीत बनाते हैं। तो आइए एक और गीत सुन लेते हैं।

पंजाबी फ्लेवर। जी हाँ, ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। समय आपको बताएं सुबह के 10:32:40 हुए हैं और हम जीवन सौंदर्य की बात कर रहे हैं। जी हाँ, इस दिन को मनाने का उद्देश्य जो है ना, वो हमारे आसपास की सुंदरता को पहचानना है और उसमें योगदान देना है। ये दूसरों को उनके लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करने, जीवन को बेहतर बनाने के लिए और जो इस प्रयास में लगे हैं ना लोग, उनकी सराहना करने के लिए छोटे बड़े तरीकों से दयालुता व्यक्त करने का अवसर है। तो हमें भी अपने दैनिक जीवन में होने वाली बातचीत और अपने आसपास की दुनिया में सुंदरता को पहचानकर सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकते हैं हम। और ये दिन हमें हर रूप में सुंदरता को खोजने और उसका जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो देखिए, आज हम भी ये कर सकते हैं। चलिए, ब्रश उठाइए, लिविंग रूम में जाइए, नाचिए या फिर कुछ नया स्वादिष्ट बनाइए, कुछ भी करिए, रचनात्मक करिए। सिर्फ जगहों को सुंदर, ये जो रचनात्मकता होती है ना, ये सिर्फ जगहों को सुंदर नहीं बनाती बल्कि मन को भी सुंदर बनाती है, मन को समृद्ध करती है। और कौन जाने, आपकी बनाई दीवार पेंटिंग शायद मोहल्ले की नई सेल्फी स्पॉट बन जाए, है ना। तो चलिए, और कुछ और भी कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। आप किसी को धन्यवाद दे सकते हैं, किसी की तारीफ कर सकते हैं, कुछ अच्छा बोल सकते हैं। बस ये थोड़ी सी जो आप अतिरिक्त बोलेंगे ना, ये खुशियाँ बिखेरने जैसा होगा। और बस जीवन को यही छोटी छोटी बातें ही तो सुंदर बनाती हैं, है ना।

बिल्कुल जी, देखिए ये पंजाबी गीत पंजाबी फ्लेवर कार्यक्रम को कितना खूबसूरत बना रहे हैं। और जैसे ऐसे ही हम भी अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं कुछ और कार्य करके। देखिए जैसे एक लक्ष्य की ओर अग्रसर हों, अगर सपने धूल जमा करते हैं तो भाई आज उन्हें फिर से जीवंत करने का दिन है। चाहे गिटार पर कोई नया सुर सीखना हो, अपना उपन्यास लिखना शुरू करना हो, अपने सपनों को उड़ान भरने दें, चाहे वो कुछ भी हो। आप इस तरह से करेंगे ना तो क्या पता आप अपने सपनों को तो पूरा करेंगे ही, दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। और शोरगुल से भरी इस दुनिया में ना शांति का एक द्वीप भी हम बन सकते हैं। किसी की बात को ध्यान से सुनिए, किसी की बात पूरी तरह से सुनी जाना एक दुर्लभ उपहार है और ये एक साधारण दिन को असाधारण बना सकता है। परिवार के साथ हम समय बिता सकते हैं और ये गुणवत्तापूर्ण समय होता है। अपने रहने की जगह को प्यार के स्वर्ग में बदलना हमें ही आना चाहिए, हम ही कर सकते हैं ये। घर का बना खाना, बस साथ मिलकर घर की साफ सफाई करना, कोई भी प्रोजेक्ट हो उसे करना, आपके घर को यादों का एक अनमोल रत्न बना सकता है। और अगर आप प्रेरित महसूस करते हैं तो उस ऊर्जा को कार्य में लगाएं, किसी स्थानीय संगठन के साथ साझेदारी करें, सहयोग दें। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये सुंदरता की ऐसी लहरें पैदा करने की बात है जो दूर दूर तक फैले। इन विचारों को अपनाकर राष्ट्रीय जीवन सौंदर्य दिवस मनाएं। सुंदरता, दयालुता और रचनात्मकता का प्रत्येक कार्य आनंद और जुड़ाव के ताने बाने में योगदान देता है।

सानू वीता रब्बा कोई चौन वाला होएगा। जी हाँ, जब हम दूसरों की केयर करेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे, तो दूसरे भी तो हमारे बारे में सोचेंगे ना। तो बस अपने जीवन को बेहतर बनाइए, सुंदर बनाइए, दूसरों की मदद कीजिए, प्रकृति से जुड़िए, कृतज्ञता व्यक्त कीजिए और बस सुंदर जीवन यापन कीजिए।

पंजाबी फ्लेवर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:45 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है लोक रंग कार्यक्रम।

0: लोक रंग कार्यक्रम सुनने वाले यहाँ दे सारियां श्रोतियां जो भावना कतना दी राम राम जी। श्रोतियों आज भी अहाँ हाजिर न तुहां दे मनोरंजन ताई कुछ पहाड़ी लोक गीत ले करी दावा कार्यक्रम दी शुरुआत करदे हन। ए लोक गीत सुनते हैं इस अंतराला दे बाद।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जी हेत राम कैंथा और दी आवाज जे तुहां ए लोक गीत सुनिया है लोक रंग कार्यक्रम तुहां सुनी करदे हैं आकाशवाणी हमीरपुरा ते कने अगला लोक गीत जे अहां तुहां जो सुनाना है सै पिंकी शर्मा और दी आवाज जे तावा सुनदे हैं लोक गीत इस अंतराला दे बाद।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

जी श्रोतियों, तो इस लोकगीत सोगी अज दा लोक रंग कार्यक्रम दा समय हुआ करदा है समाप्त। तां दे आ इजाजत, राम राम। लोक रंग कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और एनडीए ने हमेशा राष्ट्र के विश्वास को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। सम्मेलन में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेता, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में विकसित भारत 2047 के रोडमैप पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस दौरान विभिन्न राज्यों के

0: मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी भाग ले रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश से जुड़े चार प्रमुख मुद्दों को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाएंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे जो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व घाटा अनुदान राशि के बंद होने से राज्यों को हुए आर्थिक नुकसान, प्राकृतिक आपदाओं की भरपाई और लंबे समय से लंबित ग्रीन बोनस की मांग से जुड़े मुद्दे उठाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी हाईकमान से सरकार और संगठन से जुड़े विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्वास के विकास के 12 वर्ष, गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल 12 व 13 जून को शिमला के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने कहा कि 12 जून को नड्डा शिमला में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। इसके अलावा वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में समाज के विभिन्न वर्गों को संबोधित करेंगे। 13 जून को वे मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे और केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं का अवलोकन करेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश में 5 छात्रों वाले 73 स्कूल मर्ज और 0 नामांकन वाले 20 स्कूल और बंद कर दिए हैं। राज्य सरकार का तर्क है कि स्कूलों के युक्तिकरण से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं व संस्थान उपलब्ध करवाए जा सके। इस बीच सरकार ने 3 सरकारी कॉलेजों को विलय करने के आदेश वापस ले लिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में कल अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें डिग्री कॉलेज कुकुमसेरी, डिग्री कॉलेज रोहनाट और डिग्री कॉलेज जयनगर के विलय के आदेश वापस लिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के चुनाव में विधायकों के वोट डालने पर रोक लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश अतुल एस चांदुरकर की खंडपीठ के समक्ष ये मामला 15 जून के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 जून को प्रदेश सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसके तहत स्थानीय को नगर निकायों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में बराबर पार्षद होने पर वोट डालने का अधिकार दिया था। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव की 4वीं सांस्कृतिक संध्या में आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस संध्या में सुप्रसिद्ध पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर मुख्य कलाकार के रूप में अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अतिरिक्त हिमाचल के विभिन्न मशहूर कलाकार सांस्कृतिक संध्या में सामा बांधेंगे। इसके अलावा उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से विभिन्न राज्यों के कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ लोगों और पर्यटकों का मनोरंजन करेंगे। 12 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम व अन्य प्रतियोगिताएं लोगों व पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। सुबह की 11:05 और 45 सेकंड हुए हैं। अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: बेगम अख्तर की आवाज में ये पारंपरिक दादरा गीत आप सुन रहे थे।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: ये पॉप गीत आप सुन रहे थे अदनान सामी की आवाज में, समीर के बोल थे।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग।

सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज़ थी, देव कोहली के बोल थे, आनंदराज आनंद का संगीत था। ये फिल्म थी हमको तुमसे प्यार है।

0: शारदा सिन्हा की आवाज़ में मैंने प्यार किया इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। असद भोपाली के बोलों को सुरों में ढाला राम लक्ष्मण ने।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य जवानी अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी।

तर्ज आवाज और गीत रचना है सुखविंदर सिंह की, नशा ही नशा है इस एल्बम का गीत आप सुन रहे हैं। मोहब्बत

तलाश फिल्म का ये गीत था अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में समीर के बोल, संजीव दर्शन का संगीत था। और यही है श्रोताओं आज के रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के ठीक 12 बजे हैं और दोस्तों आज वीरवार है। आज के दिन इस समय हम आपका मनोरंजन कुछ गैर फिल्मी गीतों के साथ करते हैं और कार्यक्रम है सुगम संगीत।

0: जी, कार्यक्रम सुगम संगीत की शुरुआत हमने की कैलाश खेर और साथियों के गाए इस सूफियाना गीत के साथ। और अब आपको सुनाएंगे एक प्यारा सा गीत मनोज मिश्रा, खुशबू जैन के युगल स्वरों में, पर इस अंतराल के बाद।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है और इस समय सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आइए अब कार्यक्रम में शामिल करते हैं एक गजल को जिसे गाया है हरिहरन ने।

0: जी, ये गीत आपने सुना राया ओझा की आवाज में। सुगम संगीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: सुगम संगीत कार्यक्रम के अंत में आइए करते हैं आबिदा परवीन का गाया ये सूफियाना गीत।

आबिदा परवीन के गाए इस सूफियाना गीत के साथ ही अब आज का सुगम संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। लीजिए आज फिर हम हाजिर हैं आपके मनोरंजन के लिए कुछ फिल्मी गीत लेकर। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ईश्वर फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है नितिन मुकेश, कविता कृष्णमूर्ति ने। अनजान के बोलों को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम का ये है अगला गीत, कुमार सानू अलका याग्निक के युगल स्वरों में। कच्चे धागे फिल्म का नाम।

जी, साजन फिल्म का ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर है। इस गीत में आवाजें आप सुनेंगे एसपी बालासुब्रमण्यम, कुमार सानू, अलका याग्निक की।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। अभी आपने साजन फिल्म का एक गीत सुना एसपी बाला सुब्रमण्यम, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। आइए अब आपको सुनाते हैं अकेले हम अकेले तुम फिल्म का ये गीत।

अकेले हम अकेले तुम फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, पर हाँ, हम कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, ना अपने श्रोताओं को रहने देंगे। आकाशवाणी हमीरपुर हमेशा अपने श्रोताओं के साथ रहेगा। और अब सैनिकों के लिए कार्यक्रम का अंतिम गीत, आइए सुन लेते हैं। फरेब फिल्म से हमने इस गीत को लिया है।

अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत आपने सुना और इसी के साथ आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम यहीं होता है समाप्त। इजाज़त दीजिए, जय हिंद। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर का 1 बजा है, अब से लेकर शाम 4 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, ये तो सही है कि आप जहाँ जहाँ हैं विविध भारती साथ साथ है, और साथ है सरगमी नगमों का जादू जो हमारे दिल की हर बात जानता है, कहता है और सुनता है। हमारी खुशियों, हमारी जिंदगी के सफर में शामिल इन नगमों की परवाज का क्या कहना, और उन बातों, उन शिकायतों का भी क्या कहना जिनमें छुपा छुपा सा प्यार भी नजर आ रहा है, और यही बातें मिलकर बनाती हैं इस प्रोग्राम को सुरीला सफर। तो अब आज की इबारत से पहले उन श्रोताओं को बता दें जो अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं इस कार्यक्रम में, अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं दे पाए हैं, तो लॉग इन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai, और इस पते पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। और अब आपको बता दें आज की इबारत। एक रात दस्तक दी किसी ने, दरवाज़ा खोला तो देखा जैसे मेरी ही शक्ल, मेरा ही हमसाया। कहने लगा मैं तुम्हारी ही यादें हूँ, रैन बसेरा चाहता हूँ। याद करो वो भोर की किरणों का पनघट पर बसेरा, इसी पनघट पर जब बातें होती थीं। एक दिन जब खो गया कहीं कान का बाला, वो सूंधी रोटी, वो खिलौने, वो रेत की नाव, वो झाग के माझी, वो काठ की रेल, वो सीप के हाथी, वो मोम के चाक जो रुके न चले, वो संगी साथी, वो जादूगर का खेल, वो पगडंडी में दौड़ना, जब तुम्हारे आने से मेरी टूटी फूटी नाव सज जाती थी, कभी तुम्हारी मुस्कुराहट को देखते, कभी सोचते कि हमसे तो ये पायल ही अच्छी है, काश अपनी आंखों में बसा कर ये तस्वीर रख लूं, फिर कोई दिल तोड़ चला। सखियां भी एक एक कर ससुराल चली गईं, एक रोज डाकिया डाक लाया, पता चला ये शहर ही अब जिंदगी बन गए, और मन गांव में बस गया। शहर में कमरे ज्यादा हैं, घर बड़ा है, शायद इतना बड़ा कि कोई मिलता नहीं। शहर की इस आपाधापी में कोई पास बैठता नहीं, हाल पूछता नहीं। सुनो चलो उसी मनमोहक गांव में वापस चलें जो आज भी वैसा ही है, जिसकी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, शायद हमने दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है। तो ये थी

तो आज की इबारत, आज का टेक्स्ट, और अब आपको शब्दों को ढूंढना है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने तो शब्द पहचान लिए हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों के बारे में भी लिखा है, तो देखते हैं कि आज कौन से गीत शामिल होते हैं।

श्रोताओ, गांव की जो दिनचर्या होती है वो बड़ी गजब होती है। तो गांव में या अभी आपकी दिनचर्या क्या है? अगर जब कभी आप गांव में थे तो उसे किस तरह से अब के समय से आप जो है मैच कर सकते हैं कि अब शहरों में जो सोना उठना बैठना उसका समय और गांव में जो दिनचर्या होती थी वो भोर के समय, जी हाँ, पनघट पर बहुत सारी पनिहारिने नज़र आ जाएंगी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन की भाग दौड़ में मन आज भी अपने गाँव, अपने बचपन और उन अनमोल रिश्तों में बसा हुआ है, जहाँ बचपन की यादें, गाँव की मिट्टी, बिछड़े साथी और पुरानी यादें आज भी दिल में घर बनाए हुए हैं। और बहुत सारे गीत भी इन्होंने बताए हैं, हमें सुझाए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सभी को प्रणाम, तो आप सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम। विविध भारती के सुरीले सफर में जहां बचपन फिर यादों के सहारे लौट आया है, वो आज़ादी, वो स्वच्छंदता अब लौट के नहीं आने वाली। जब मेघ बरसते थे, भीगते निकल जाते थे और साथियों के साथ चपाकचई खेलते, बहते धारे में कागज की नाव चलाते, दिन भर बिना भूख प्यास की चिंता के नदी के पार जाकर खेतों से खरबूजे चुराया करते। एक श्रोता और लिखते हैं कि आज की इबारत केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि अतीत की स्मृतियों और आधुनिक जीवन के अकेलेपन का एक बेहद खूबसूरत और मर्मस्पर्शी दस्तावेज है। लेखक इन्होंने लिखा है कि बड़ी संवेदनशीलता के साथ शहरी चकाचौंध के पीछे छिपे खालीपन और ग्रामीण जीवन की निश्चलता के बीच द्वंद्व को हमने उभारा है। आखिरी पंक्तियां, शायद हमने दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है, ये दर्शाती हैं कि भले ही भौतिक रूप से इंसान शहर में कैद हो, लेकिन उसका मन आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। ये अंत निराशा में भी एक खूबसूरत उम्मीद और सुकून देता है। गाँव की तो बहुत सारी यादें होती हैं। श्रोताओ, आपको अपना गांव क्यों अच्छा लगता है और इसकी क्या खासियत है? क्या कुछ है जो आप अपने गांव में अब भी याद करते हैं और क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं? तो ये हमें ज़रूर लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं बहुत सारे गीतों के बारे में, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, ढूंढो ढूंढो रे साजना। तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी कोई चीज़ गांव में कहीं खो गई हो या फिर पनघट पे कहीं रह गई हो तो आप ज़रूर बताइए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं जाते हैं तो कुछ ख़ास गीत एक अकेलेपन में बैठकर सुनते हैं। गांव में क्या कुछ आपके साथ ऐसा हुआ तो हमें लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं, शहर और गांव हमेशा से एक नियमित प्रसंग के रूप में किसी भी वाद विवाद के चर्चित विषय के रूप में उभर कर आते हैं। अधिकांश शहरवासी शहर छोड़कर गांव में रहने की कल्पना भी नहीं करते, चाहे कितनी भी दुश्वारियां हों शहर में, वही गांव में रहने वाले मजबूरी में ही शहर का रुख करते हैं और बाद में वहीं के होकर रह जाते हैं। भारत में शहर और गाँव दो अलग अलग

आप जरूर बताइए, और आपको याद ही होगा तो इनका बाला कहाँ है, कहाँ गुमा है, आप क्या ढूंढ सकते हैं तो हमें जरूर बताइए अगर आपको मिला हो। वैसे गांव में भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जब आप पनघट पर गए होंगे, कोई चीज़ या कहीं गए होंगे, कुछ खो गई होगी, तो कुछ यादें अगर इसे मिली जुली आप साझा करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और गाँव की बहुत सारी खासियत होती है श्रोताओं कि गाँव में जो यादें हैं, रहट का पानी है, या अगर आपको याद हो कहीं दूर रेडियो में कोई गीत बजता हो जो आपको अपनी तरफ खींचता हो, या कोई फिल्म ऐसी जो आपने गांव के थिएटर में देखी, क्योंकि गांव में पहले थिएटर कम हुआ करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दूं कि गंगा जमुना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। इस गीत से पहले सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गीत आपने सुना जो जीना तमान पर फिल्माया गया, और सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार आपको बताने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, यादें अजीब होती हैं, एक तो बिन बुलाए आ जाती हैं और आ जाएं तो सांस थमने सी लगती है। किसी पुरानी फोटो को देखो जो धुंधली पड़ गई, लेकिन उसके पीछे उससे जुड़ी याद हमेशा ताज़ा मिलेगी, ताज़ी मिलेगी। कुछ यादें शब्द मांगती हैं तो कुछ यादें खामोशी, कुछ आवाज़ें अब भी दुनिया में नहीं पर कभी कभी लगता है कि कंधे पर हाथ रख कर कह रही हूँ अपना ध्यान रखना। वो हाथ जो अब कंधे पर नहीं पर थकान में सहारा बन जाते हैं। यादें हमें एक ही समय में दो जगह रख देती हैं, शरीर को वर्तमान में और दिल को किसी सुनहरे अतीत में। दुख इस बात का नहीं कि वक्त बदल गया, दुख इस बात का कि वो लम्हे अब दोबारा नहीं जी सकते। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज एक बार फिर काफ़ी लंबा गद्यांश सामने आया है और साथ मिलाया है वो बचपन की यादें जो कभी मन को सुकून देती, जब पनघट, पगडंडी, खेत, खलिहान, नदी, झरने, रेत पर उकेरी तस्वीरें सब अपने से लगते थे और हम खुशियों के से पल भरे पल जीते थे। लेकिन जब ये छोड़ शहर की ओर चले तो वक्त की लाठी ने धीरे से सब कुछ छीन लिया और दे दिया खालीपन। बस बाकी रह गया तो सुनहरी यादों का गांव मन के भीतर एक कोने में। तो जादूगर की भी बहुत सारी यादें होंगी श्रोताओं, आप बांट सकते हैं, क्योंकि ऐसी यादें तो मेरे पास भी बहुत सारी हैं कि जादूगर आया करते थे गांव में।

प्रदीप कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म नागिन से। और एक गीत के हमने संगीतकार आपसे पूछे थे, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि भूर भय पनघट पर, अब वो दौर कहाँ जब पनघट पर गांव की गोरियां इकट्ठे होकर दिनचर्या की बातें किया करती थीं। अब हर घर पर नल से जल हो गया है, पगडंडी थी अब वो पक्की सड़क बन गई है, मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है, डाकिये की साइकिल की घंटी मूक हो गई है, डाक का स्थान अब मोबाइल मैसेज और ईमेल ने ले लिया है, गाँव के हरे भरे जंगल जैसे माहौल को शहर के कॉन्क्रीट के जंगलों ने उजाड़ दिए, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, इस गीत को इन्होंने याद किया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में विविध भारती के गानों की बौछार हो रही है, ये कहीं न कहीं हमारे मन को सुकून और दिल को ठंडक पहुंचा रही है। सचमुच ही विविध भारती का ये सुरीला सफर हम श्रोताओं को एक साथ जोड़ता है और जो कि इस कार्यक्रम को रंगारंग दिलचस्प बनाता है। और इन्होंने विविध भारती का शुक्रिया किया है, तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और श्रोताओं कार्यक्रम तो आपके शामिल होने से ही बनता है। एक श्रोता और लिखती हैं कि गांव की अनमोल यादें ताज़ा हो रही हैं इस इबारत में, गाँव का प्राकृतिक सौंदर्य, नदी का किनारा, नैया की सफर, सौंधी मिट्टी की खुशबू, शुद्ध हवा की शीतल लहरें, अनुपम सौंदर्य, सूर्यास्त, गांव का मेला, खेल खिलौने, मौज मस्ती, गांव में गुजरे बचपन की सभी यादें दिखाई देने लगी हैं। उसी की तस्वीर लेकर आ रहा है ये सुरीला सफर और कुछ गीत भी इन्होंने बताए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्द हो सकते हैं रात दस्तक, यादें, भोर, पनघट, सौंधी रोटी, खिलौने, रेत की नाव, जी हाँ, और गीत भी बताएं।

नया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार आप बताना चाहें तो बता दें श्रोताओ। गांव तो अपने आप में बड़ा खूबसूरत होता है, यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं, बगीचे से आम चुरा कर चोरी चोरी दोपहर में खाना, रहट का पानी, गांव की क्या खासियत है आपके गांव की। रेडियो की यादें, कुछ थिएटर की यादें, बाइस्कोप की यादें, दिनचर्या, पत्र जो आपके पास आया करते थे, तो क्या नहीं है गांव में, ऐसी बहुत सारी बातें हैं श्रोताओ। क्या कभी आपने बैलगाड़ी का सफ़र किया या साइकिल से स्कूल जाते थे, ये भी आप हमें ज़रूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है संगीतमय होगा, हमने इबारत पढ़ ली है, हम गांव और शहरों में तुलना करें

किसी अद्भुत दुनिया की ओर हमें ले जाता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मर्म को छू लेने वाली है हमारी आज की इबारत, हमारी पीढ़ी वालों को झकझोर देती है। बचपन गांव में या छोटे शहरों में बीता, आज बस आडंबर की भीड़ में मात्र एक इकाई बनकर रह गए हैं। अभी भी दिल के कोने में वो मंजर, हरियाली, बाग बगीचे, कुआं तालाब, बरगद की छांव में चारपाई पर लेटना आदि दिल के कोने में छुपी हुई इन्हें शहरी भीड़ में तलाशते हैं, मगर सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन याद करके दिल को सहला लेते हैं। मिट्टी की सोंधी खुशबू वाली इस सफर का इंतजार है। तो जी हाँ, ये सफर जो है वो तो जारी है। आप भी अपनी बातें कहिए गांव को लेकर, गांव की यादों को लेकर, और गांव आपको क्यों याद आते हैं ये जरूर बताइए।

ये प्यारा सा संगीत था नौशाद का, और आप कलाकार बता दें, एक कलाकार हम आपको बता देते हैं, राजेंद्र कुमार। जी हाँ, ये गीत था फिल्म गंवार से। बाकी आप बताइए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का सफ़र सुरीला बड़ा प्यारा है, गांव की सभी यादें ताज़ा हो गईं, और हमें भी याद आता है कुएं से पानी भरना, बैलों को पानी पिलाना, गाय का दूध निकालना, बकरियाँ, वो आंगन में सब कुछ समेटना, और रोज़गार के लिए हमेशा काम करते रहना। जी हाँ, जब रोज़गार की बात आती है तो नैया, जिसका गीत हमने आपको सुनवाया, नाव भी बड़ी साधन है रोज़गार का, और हम ऐसी

या को प्रणाम करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो गांव में बड़ी ज्यादा खुशियां या प्यार या लोग बड़े अच्छे होते हैं, शायद इस वजह से कि वहां संतोष बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा न पाने की इच्छा होती है, शायद इसीलिए गांव और गांव के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। इन्होंने और भी थोड़ी बड़ी इबारत लिखी है। वैसे एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत भावुक है, गाँव की यादें, बचपन, बिछड़ शहर का अकेलापन, ये सारी बातें इन्होंने लिखी हैं और बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल के दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, वो दिन याद करो, भोर भए पनघट पे, ढूंढो ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला, बहुत सारे गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की यादें जब दस्तक देती हैं, तब हम मन के बंद दरवाजे खोलते हैं, भूली बिसरी शक्लें, पनघट की यादें, खिलौने, रेत के घर, कागज की नाव, सब याद आता है। तो इनमें से आपको क्या पसंद था? रेत पे घर बनाना, खिलौने, कौन से खिलौने आपको अच्छे लगते थे, या अपने स्कूल की कोई याद? खासकर जब हम लोग स्कूल में थे तो चटपटी चीज़ें बहुत खाते थे श्रोताओं, और अब तो जंक फूड आ गए हैं। आप बताएं ये कलाकार कौन है?

बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म ठोकर से। सजन दिलवी के बोल थे और श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि जो कभी गांव में गया ही ना हो और वो लोग गांव के बारे में क्या जानेंगे।

का मिलनसार जीवन, लड़ते झगड़ते दोस्तों का गांव की जिंदगी क्या होती है, वो बातें याद आती हैं तो दिल में एक कसक सी उठ जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जादूगर एक बार हमारे मिडिल स्कूल में शो करने आया था। खेल की घंटी में स्कूल के प्रांगण में एक घंटे तक ये शो हुआ। बात 1976 के सितंबर की है। हमने घर से 75 पैसे लेकर उसे दिए थे। बहुत मज़ा आया था। जी हाँ, तब पैसे भी बहुत कम हुआ करते थे और थोड़े से पैसे में बहुत सारी चीज़ें हम खरीद लिया करते थे। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मेरे गांव के चारों तरफ पहाड़ है, जैसे एक टोकरी होती है, जिसके कारण मेरे गांव का नाम टोकर है। मेरे गांव की लोकेशन बहुत अच्छी है। गांव उत्तर दिशा की पहाड़ी की तलहटी में बसा है। दक्षिण की तरफ तालाब है जिसका नाम कायरा तालाब है। गाँव तो हमारा जीवन है, इसकी हर चीज़ हर स्थान हमारे रग रग में बसा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच अपने गांव में बचपन की यादें और पुराने दोस्तों के साथ बिताए गए पल आज भी बहुत सताते हैं। गांव की भोर की बेला में पक्षियों की चहचहाट और बचपन के दोस्तों की यादें किसी मरहम से कम नहीं। ये अनमोल पल में बिताए गए बचपन से जोड़े रखते हैं, जिसमें हमारे मन को असीम सुकून और शांति देते हैं। और भी इन्होंने अपनी बातें बहुत सारी लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का जो ये सुरीला सफ़र है, अक्सर लोग गाँव छोड़कर शहर में रहने लगे हैं, लेकिन गांव में जो आपसी प्रेम और भाईचारा देखने को मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता। शहर में तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता। मनुष्य अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए शहर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो गांव में थी। तो खिलौने वालों की जो यादें हैं वो आप हमसे साझा कर सकते हैं।

0: संध्या पर फिल्माया गया दो आंखें बारह हाथ फिल्म का ये गीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है इस गीत के बारे में, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद इस गीत को पहचानने के लिए। और भी हमारे कुछ नगमे हैं, देखते हैं कि कौन से शामिल हो पाते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे वाह, तीन गीत मेरे शामिल हो गए। आज सुहाना सफर में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मेरे गाँव की पैदाइश है, बहुत सुंदर था बचपन। हमारे गाँव में रामलीला होती थी और इन्होंने निम्बाड़ी लोकगीत गणगौर उत्सव में बड़ा आनंद आता था। बहुत याद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल में शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं। आपने रुला दिया, वो बहुत यादों को जगा दिया। तो जी हाँ, यादें तो होती ही हैं, ऐसी हैं, समय समय पर इन्हें जगाना भी चाहिए श्रोताओं। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि यह हकीकत है कि गुजरे वक्त यानी पास्ट में हम जा नहीं सकते, इसलिए अपना अक्स अपने बच्चों और आसपास के बच्चों में देखा करते हैं। बचपन में मैं स्कूल और कॉलेज जाया करता था। उनकी सभी गतिविधियों को देखकर मैं ये सोचता हूँ और महसूस करता हूँ जैसे उनकी शक्ल में मैं स्वयं हूँ। उनमें स्वयं को देखकर अपने गुजरे वक्त को याद करके बहुत खुश होता हूँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने 8 गीतों को लिखा और पहला गीत शामिल हुआ जो भोर भय पनघट पे। जी हाँ, तो यही तो आपको पहचानना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत पढ़कर आपने बचपन और बचपन के साथी याद आ गए। हमारे मन बहुत बेचैन हो रहा है, कौन कौन से साथी बिछड़ गए पता नहीं।
1: Ha ha ha!

ये तो बैलगाड़ी है जिसमें ये दुल्हनिया जा रही है, ये कौन सी दुल्हनिया है वो आपको बताना है, फिल्म पहचाननी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको बताऊं, मेरे गांव से एक नदी बहती है, बचपन में हमने इस नदी के पाट करीब 100 फीट के आसपास देखा है, जो कि बरसात में 1 किलोमीटर दूर तक हो जाता था, किंतु अब बहुत दुख होता है वो केवल एक नाले में परिवर्तित हो गया है। इस नदी के पास आम के बगीचे होते थे जो आज नहीं है। जी हाँ, यही सारी चीज़ें हैं जो हमें बचानी है। श्रोताओं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, अगर कुछ खास करते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, जैसे पेड़ वगैरह लगाने को लेकर जो बातें हैं। और आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आजकल खेतों में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो गांव में भी हमारा

कार्यक्रम सुनते हैं, विविध भारती सुनते हैं। एक और श्रोता ने बचपन के जो चटपटी चीज़ें थी उसके बारे में लिखा है कि बेर जो गुड़ और नमक मिर्च के साथ पके रहते थे वो कागज़ की पुड़िया के समान बांध के देना, वो न्यूज़पेपर के लिफाफे जो घर में आटे की लोई बनाकर बनाए जाते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गाँव में कहीं शादी होती थी तो लाउड स्पीकर बजता था, उस समय राजा और रंग का मेरा नाम है चमेली ये गीत लोकप्रिय था। आवाज़ सुनते ही सभी साथी दौड़ कर वहाँ पहुँच कर गाना सुना करते थे।

दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी तेरवा आते सोमवार है, छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार।

0: किया बाबू?
1: क्या री?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन? बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से आवी का लिख दो।

ये गीत आप सुन रहे थे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। श्रोताओं, पलकों की छाव में इस फिल्म का गीत था, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, वो भी क्या दिन थे जब पनघट पर हम सब इकट्ठे भोर की किरणों को ताका करते थे। बड़े खुशनुमा दिन थे, यादें अजीब चीज होती हैं, वे कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, बस अचानक से किसी गीत में किसी रास्ते से दस्तक देती हैं और हम घंटों बैठे रहते हैं उस याद में, उसकी तस्वीर के साथ। मन ने इन सब यादों को, बातों को बड़े सीधे तरीके से आत्मसात कर लिया है। हर चीज को स्वीकार करना, यही सुख की निशानी है, इसी में बड़ी समझदारी है। फिल्म आपको पहचाननी है श्रोताओं, और कलाकार

पहली फिल्म का ये गीत आपने सुना, सत्यजीत और नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया। हमारे श्रोताओं ने इस गीत को भी पहचाना बिल्कुल ठीक, और अगले गीत को आपको पहचानना है, कलाकार पहचानना है। एक श्रोता ने लिखा है, मैं कल ही अधिक मास के चलते मेरे शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर चांदोद, जो नर्मदा नदी पर बसा है, वहां दर्शन करने गई थी। वहां नाव में बैठकर सामने वाले दूसरे किनारे पर स्नान किया। मतलब कल ही नाव में बैठकर आई हूं।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वो दादी के हाथ की मक्के और ज्वार के चूल्हे पर बनी रोटी काश एक बार ही सही खाने को मिल जाए, बस फिर और कुछ नहीं मांगेंगे अपने इस मालिक से।

एक शोधा ने लिखा है, मेरा गांव बहुत सुंदर है जो पहाड़ों की तलहटी में बसा है। एक नदी बहती है जिसके तट पर बहुत से मंदिर हैं। शाम के समय जब घाट पर बैठते हैं तो मंदिर से आरती की स्वर लहरियां गूंजती हैं, बस मन खुश हो जाता है।

अरुण गोविल और जरीना बहा पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म से। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओं, तो अब चलते हैं गांव से शहर की ओर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी गांव ज़रूर जाना चाहिए और वहां की सारी चीज़ों को देखना चाहिए, निहारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम सुरीला सफ़र सम्पन्न होता है।

0: most unfortunate sides in World Cup history remain the Netherlands, who have reached three finals but are yet to win the title despite producing generations of world-class talent. From history to high stakes, from legends to new challengers, the stage is set for football's ultimate battle. Shagun Chopra from Sports Desk.
1: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and states key to realising Vikasit Bharat vision, chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. First made-in-India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण. उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है. राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया. सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया. तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया. भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की. अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की. और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ. समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है. नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए. उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले. बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है. इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास. बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं. किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं. प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया. इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला. उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया.
3: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में. हम आज के

0: समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
0: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
3: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में US मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के

0: रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। इरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्दन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जॉर्दन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कन्फर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद ड्रोन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइंस पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेस में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिम हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई।

0: की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली।

0: कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, एम जी हर्षमत के बोल थे। किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित को आप सुन रहे थे फिल्म उलझन में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म पूर्णिमा में आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर को, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी, आनंद जी ने। विविध भारती से श्रोताओं इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म पालकी का ये गीत आपने सुना। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: शारदा की आवाज में अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की तर्ज है, और श्रोताओ यही है सदाबहार नगमे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार, और आप सुनिए ये नगमा।

0: देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में विश्वास के विकास के 12 वर्ष, गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल 12 व 13 जून को शिमला के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने कहा कि 12 जून को नड्डा शिमला में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। इसके अलावा वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में समाज के विभिन्न वर्गों को संबोधित करेंगे। 13 जून को वे मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे और केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं का अवलोकन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार की उदासीनता और सुस्त कार्यशैली के कारण ऊना के हरोली में बन रही बल्क ड्रग पार्क परियोजना तय गति से आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस कारण प्रदेश को आर्थिक और औद्योगिक स्तर पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जयराम ठाकुर ने बल्क ड्रग पार्क का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हिमाचल को ये परियोजना कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद मिली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना को प्राथमिकता नहीं दी, इस कारण राज्य को इसका समय पर लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के बन जाने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जयराम ठाकुर ने सरकार से राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर इस परियोजना को युद्ध स्तर पर पूरा करने की मांग की। सोलन जिला में जनगणना के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर है। जनगणना निदेशक दीप शिखा की अध्यक्षता में आज सोलन में कर्मचारियों को जनगणना का प्रशिक्षण दिया गया और इस कार्य की बारीकियों से अवगत करवाया गया। दीप शिखा ने इस मौके पर कहा कि जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। इन दिनों स्वगणना का कार्य चल रहा है। 16 जून से 15 जुलाई के बीच मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के लिए लगभग 18,600 कर्मचारी फील्ड में तैनात किए जाएंगे।
2: फर्स्ट फेज जो है वो 16 जून से 15 जुलाई के बीच में चल रहा है और हमारा इसमें स्वगणना का प्रावधान भी रखा गया है, जिसके अंतर्गत की कोई भी जो हमारा जनमानस है, आम जनता है, वो स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in पे जाके उस पे FAQs दिए हैं, उसको पढ़ सकते हैं और अपनी मोबाइल नंबर के थ्रू उसमें एंटर करके अपनी लोकेशन मार करके 33 जो प्रश्न है आधिकारिक रूप से उनके आंसर भर सकते हैं पोर्टल पे। तदुपरांत उनको एक सेल्फ इन्यूमरेशन ID जनरेट होगा, जिसको की प्रगणक जब 16 जून से 15 जुलाई के बीच में आएंगे तो उनके साथ शेयर करेंगे और फाइनली वो उसको एक बार वेरीफाई करके पोर्टल पे सबमिट कर। पूरे हिमाचल में हमारे करीबन 18,600 के करीब करीब जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं उनकी ड्यूटी लगी है।
1: ईरान के हॉर्मुज जलडमरू में एक भारतीय तेल टैंकर पर हुए अमेरिकी हमले में हमीरपुर जिला के गलोड़ के रहने वाले नाविक आदित्य शर्मा की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आदित्य शर्मा की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई है और कहा है कि राज्य सरकार इस मुश्किल घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने जिला प्रशासन को पीड़ित परिवार को हर मुमकिन सहायता देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को शांति और दुखी परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति देने की भी प्रार्थना की है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी आदित्य शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। डॉक्टर प्रेमलाल गौतम को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। डॉक्टर प्रेमलाल गौतम बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। वे कृषि वैज्ञानिक हैं और उन्हें इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौतम ने देश का प्लांट जर्मप्लाज्म रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क शुरू किया है। वे बिलासपुर जिला से संबंध रखते हैं। राज्य सरकार ने सेवा अवधि के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का निर्णय लिया है। अभी तक अध्ययन अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त वेतन का केवल 40% और महंगाई भत्ते के साथ आवास भत्ता दिया जा रहा था। इसके लिए सरकार ने CCS नियम 1972 के नियम 56 में संशोधन किया है। जिन कर्मचारियों ने पहले पुराने प्रावधानों के तहत अध्ययन अवकाश लिया था उन्हें भी संशोधित नियमों अनुसार वेतन के बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
0: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं चंबा जिला की चिट्ठी। लेखक हैं विकास ठाकुर और वाचक स्वर शशि चौहान का है।
1: चंबा जिले की जनजातीय पांगी घाटी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण साच पास को लोक निर्माण विभाग ने रिकॉर्ड समय में बहाल कर दिया है। लगभग 14,500 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाले इस मार्ग से बर्फ हटाकर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। मार्ग खुलने से पांगी घाटी के लोगों को बड़ी राहत मिली है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मार्ग बंद होने से लोगों को जम्मू या कुल्लू के रास्ते करीब 750 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर चंबा पहुंचना पड़ता था। अब ये दूरी मात्र 172 किलोमीटर रह जाएगी। नगर परिषद चंबा के चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गए। चुनाव परिणामों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने 6 सीटों पर जीत दर्ज कर बढ़त बनाई, जबकि भाजपा समर्थित प्रत्याशी 5 सीटों पर विजयी रहे। मतगणना के बाद समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। प्रशासन ने पूरी चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाया। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में भी जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। करवाल पंचायत निर्विरोध चुनी गई, जिसके लिए पंचायत को सरकार की ओर से 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि जिले में कुल 411 पंचायत प्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए हैं, जिनमें 4 प्रधान, 7 उप प्रधान तथा 400 वार्ड सदस्य शामिल हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सर्वाइकल कैंसर रोकथाम अभियान के तहत चंबा जिले में भी HPV वैक्सीन टीकाकरण अभियान तेज कर दिया गया है। 14 वर्ष तक की किशोरियों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निशुल्क टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य कम उम्र में ही बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित करना है। जिले का ऐतिहासिक व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मिंजर मेला इस वर्ष 26 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने दायित्वों का गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि मिंजर मेला चंबा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है तथा इसके मूल स्वरूप और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। जिला मुख्यालय के सुल्तानपुर वार्ड के ओबड़ी संपर्क मार्ग की जर्जर स्थिति स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे होने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। लोगों ने मुख्यमंत्री से इस सड़क की शीघ्र मरम्मत करवाने की मांग की है। जनगणना 2027 की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है। प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण व आवास जनगणना का कार्य किया जा रहा है। उपायुक्त व जिला जनगणना अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने बताया कि इस बार जनगणना में आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है तथा नागरिकों को स्वगणना की सुविधा भी प्रदान की गई है। नागरिक निर्धारित अवधि में ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। पूरे देश की तरह चंबा जिले में भी ईद उल अजहा का पर्व श्रद्धा और भाईचारे के साथ मनाया गया। ऐतिहासिक चौगान मैदान में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सामूहिक नमाज अदा कर देश और प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी। बैरागढ़ पांगी वायस साच पास मार्ग पर पर्यटकों से भरा एक वाहन गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में 7 पर्यटक और 1 चालक शामिल हैं। बेंगलुरु से आए ये पर्यटक साच पास क्षेत्र में बर्फ देखने गए थे। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि दुर्घटना का पता चलने के बाद पुलिस और राहत दल ने दुर्गम क्षेत्र में राहत व बचाव अभियान चलाया। जिला परिषद और पंचायत समिति के नव निर्वाचित सदस्यों ने भी अपने पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। जिला मुख्यालय स्थित बचत भवन में आयोजित समारोह में 18 जिला परिषद सदस्यों और 135 पंचायत समिति

0: सदस्यों ने शपथ ली तथा अपने क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी हाल ही में चंबा जिले का दौरा किया। खजियार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और मतदाताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और प्रत्येक मतदाता का वोट लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने जिले के मतदाताओं से भविष्य के चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।
1: और भावपूर्ण कठपुतली आंदोलनों के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं आरती, और बहुत दशकों जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ जो वहाँ के लोक परंपराएं हैं उसके साथ में एक जुड़ाव भी महसूस करवाते हैं।
2: बिल्कुल। और सीमित संसाधनों और घटती लोकप्रियता के बावजूद भीमावा ने गांव और कस्बों में व्यापक यात्राएं की और पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी।
1: पारंपरिक कठपुतली कला जो विलुप्त हो रही थी और खतरे में जा रही थी, क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया कि भाई जो चीज़ उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सकें, ताकि जो तोगलू गोम्बे याता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी ज़रूरी ज्ञान है, कौशल है, वो उन तक भी उसे पहुंचा सकें।
2: बिल्कुल। और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन ने कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की है, जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। उनके मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला आ रहा है।
1: और ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखिए ना आज भी संरक्षित है, और उनके प्रदर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को, बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहाँ के उत्सव हैं, त्यौहार हैं, जो भी परंपरा हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं।
2: बिल्कुल।
1: भीमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये पूरी कहानी बयां करती है।
2: बिल्कुल। उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा, ताकि तोगलू गोम्बेता की प्राचीन आवाजें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें। और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला टोगलू गोम्बेता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोडा बलप्पा शिले कैथारा को भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया।
1: वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या-क्या फायदे हैं समझाती रहें, लोगों को इससे जोड़ती रहें, यही शुभकामनाएं हम देते हैं।
2: जी
1: और एक
2: बिल्कुल।
1: गीत सुन लें अभी।
2: जी बिल्कुल।

0: देखिए ना, इस गीत में भी कठपुतली का जिक्र था, और ऐसे जो खेल होते हैं ना, ये बच्चों को बड़े लुभाते हैं। और हम सब ने भी बचपन में जरूर कठपुतली का खेल देखा होगा, और
1: बिल्कुल
0: खास तौर पे स्कूल में जब कठपुतली वाला आता था तो एक बच्चों में बड़ा कौतूहल सा होता था कि
1: हाँ
0: किस तरह के खेल दिखाए जाएंगे। और उसमें कुछ कठपुतलियां होती है ना जिनकी कमर बड़ी लचकती है, और उनका जो
1: हाँ
0: डांस है वो देखने में बड़ा मजा आता
1: बिल्कुल। और अजीब अजीब सी आवाजें भी निकालते हैं ना।
0: हाँ
1: तो हमारी एक जो श्रोता है वो लिखती हैं कि कठपुतली का खेल डांस जो डांस होता है प्राय विलुप्त सा हो रहा है। गांव और शहर में मोहल्लों में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं। सोसाइटीज़ और बड़े बड़े बंगला बंगला जो एरिया है उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। हम लोग के स्कूल में कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, जैसा आपने बोला वो बोल रही
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: और अगर आपको लगता है कि कहीं भी बच्चों के स्कूल में या आसपास के क्षेत्र में अगर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है, तो बच्चों को ज़रूर वहाँ लेकर जाएं, ताकि कल बच्चे भूल ना जाएं कि कठपुतली नाम की कोई चीज़ होती है, कठपुतली का खेल कैसा होता है।
1: बिल्कुल
0: और इसीलिए जागरूकता के लिए भी इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं। और जब ऐसे किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है, तो उन्हें भी इस चीज़ के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल
0: तो बात हम कर रहे थे खेलों के बारे में, आज जो खेल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो 11 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है हमें।
1: बहुत। और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए खेल की रक्षा करने के लिए खेल को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा बचपन जो है बच्चों का वो बचा रहता है।
0: बिल्कुल। और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके। और परिवार में जिस सदस्य की खेल की तरफ रुचि ज़्यादा होती है, मतलब सबकी तो नहीं होती ना, तो जिसकी रुचि ज़्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े अंतर्मुखी होते हैं ना, तो वो लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित
1: बिल्कुल। वो
0: करना
1: जिस
0: बहुत
1: तरीके
0: ज़रूरी
1: खेल में
0: है।
1: उनको रुचि हो उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए।
0: जी
1: और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं और कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदी हो गए हैं और खेलकूद से रक्त का संचार होता है, शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है। पुराने खेलकूद, छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना सब लुप्त हो गए हैं। आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना। खैर, हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है।
0: लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है,
1: बिल्कुल
0: ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने के जो एक स्पिरिट है, ये सब चीज़ें बच्चों में आ सकें। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है, इसे हम सब जानें, पहचानें और समझें। ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना ज़रूरी है। और खेल दिवस जैसे आयोजन ये बातें समझने का हमें मौका देते हैं, और यही वो समय होता है आरती, जब हम सब मिलकर ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर बच्चा खेलने के अधिकार का पूरा लाभ उठा सकता है।
1: बिल्कुल। और बहुत ज़रूरी भी है खेल के को महत्व देना। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हम जो बच्चे आजकल दिख रहे हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो खेलेंगे तो जो प्राकृतिक रूप से उनका

0: विकास होगा।
1: और खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री हो ये भी जरूरी नहीं है, जैसे बचपन में जो हमने खेल खेले हैं या हमारे बहुत सारे सुनने वालों ने भी खेले होंगे,
0: दौड़ भाग है, साइकिल चलाना है, हाँ। बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम खेल के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: लुका छिपी भी खेलते थे और बस पत्थरों से कुछ टुकड़े जमा के सतोलिया बना के खेला, और कपड़े की, पुराने कपड़े की गेंद बना ली।

बच्चों में आ सकें। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है इसे हम सब जानें, पहचानें और समझें। ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना ज़रूरी है। और खेल दिवस जैसे आयोजन

0: बहुत ज़रूरी भी है खेल के को महत्व देना। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हम जो बच्चे आजकल दिख रहे हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो खेलेंगे तो जो प्राकृतिक रूप से
1: जी।
0: उनका विकास होगा।
1: और खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री हो, ये भी

0: बच्चों के साथ मिलकर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जब खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो बच्चों को खेलने में
1: और
0: बड़ी
1: मजा आता
0: रुचि रहती है। तो
1: है।
0: देखिए हमारे एक श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, कि ये जो दिन है ये बताता है कि हमारे जीवन में खेल कितना ज़रूरी है। और हमारी ये श्रोता जो है वो कहना चाहती हैं कि अगर कोई बच्चा खेल की तरफ रुचि रहता है लेता है तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि खेल में कोई करियर है या नहीं है, बस खेलने के लिए उसको प्रेरित करना है। और आगे लिख रही हैं कि खेल हर चीज़ में हमें जीने का तरीका सिखाता है, इसीलिए सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। और खेल हार जीत में कैसे उभरना है इसका तरीका भी हमें सिखाता है, और इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि मेरे विचार से खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है और हम सोशल मीडिया

0: बाल जीवन की नींव है, इसे भी वो रखते हैं।
1: बिल्कुल
0: और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनौपचारिक खेल के जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो कम है, अगर कहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है।
1: सुरक्षित
0: हर
1: नहीं।
0: बार बच्चे के साथ कोई जाए ये ज़रूरी नहीं हो पाता, तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा घर पर ही खेले। तो ये सुरक्षा भी अगर बच्चों के लिए दी जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहाँ होना चाहिए जो
1: बिल्कुल
0: बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे। माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो, इन चीजों
1: बिल्कुल
0: का ध्यान रखना बहुत जरूरी
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और बच्चे सीखते हैं कि किस तरह हमें साथ साथ मिलके काम करना है, साथ मिलके खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीज़ें खेल के जरिए ही आती हैं। जब वो साथ मिलके खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनके से उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं, बहुत कुछ
0: अभी
1: सीख
0: जैसे
1: सकते हैं
0: बारिश
1: सीख
0: का जब
1: सकते हैं।
0: मौसम आएगा, पेड़ों पर झूले पड़ेंगे, तो सब बच्चे एक साथ मिलकर झूलते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने आप लंबी पेंग नहीं ले पाते हैं झूले की, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा सिखाते हैं झूला
1: हाँ
0: कैसे जाता है, उनके साथ बैठकर, उनके साथ खड़े होकर, तो झूलना भी एक खेल हो गया। तो इस तरह से आप साथ लेकर कैसे चलेंगे, ये भावना
1: बिल्कुल
0: विकसित होती है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर यही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है। खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है।
0: और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है। बस
1: बिल्कुल
0: हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें, और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं हमारी, हम उन्हें भी खेल में बदल सकते
1: बिल्कुल। और
0: हैं।
1: हमें रोज ही कम से कम इतना समय निकालना चाहिए और बच्चों के लिए भी इतना समय निकालना चाहिए कि उनके साथ हम खेल सकें, ना कि हम मोबाइल पे या उनके साथ में कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं या हम टीवी में लगे हुए हैं या मूवी देख रहे हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन एक इतना समय ज़रूर होना चाहिए हर दिन कि बच्चों के साथ बाहर खेला जाए। जो बाहर आप खेलते हैं ना, उससे वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव होता है, तो वो उससे उनके उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: जब
1: बहुत
0: बच्चों को
1: ज़रूरी है।
0: धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में व्यस्त करिए या घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर खेलने से ही होता है
1: बिल्कुल। और थोड़ा बहुत भीग जाना भी ज़रूरी होता
0: जी।
1: है कभी कभी।
0: भाई बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा खेल होता
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल।
0: तो चल रही गाना सुने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों के खेल की। बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते।
1: नहीं, बिल्कुल
0: अगर
1: नहीं।
0: वो खुश हैं तो खुशी दिखाई देगी, अगर वो किसी से नाराज हैं, गुस्सा हैं, तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती हैं आरती, कि खुश हैं या नहीं, कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है।
0: खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है तब ये दिखावा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहाँ बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज़्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देखकर कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो सामने वाला है ना, ये सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति यही है और हमारे जीवन में कोई खुशी पता नहीं है भी कि नहीं। लेकिन अक्सर इन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है
1: उसको खुश देख के बारे में समझ नहीं साथ में आ जाते हैं कि वो इतना खुश है हमसे। कहते हैं ना कि हमारी हमारे मतलब तुम्हारे उसके कपड़े हमारे कपड़े सफेद कैसे हो सकते हैं, तो वही चीज है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है।
0: हाँ, तो उन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से थोड़ा दूर होने लग जाता है।
1: बिल्कुल, और हर कोई ये सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या, बजाय इसके कि उसे

0: तनाव और असंतोष, क्योंकि उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं सही लग रहा हूँ या मैं सही हूँ, वो सिर्फ दूसरों की नज़र से खुद को देखने लगता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए अगर सच्ची खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन में तो क्या करना है, जो लाइक्स और फॉलोअर्स हैं ये दिखावे से नहीं आती। आजकल इसी के पीछे बस सब भाग रहे हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट डाली है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जिसमें हम नजर आ रहे होते हैं, हाँ। तो वहां हमें बहुत सारे एक लाइक मिले।
0: बस आप क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं कितने लाइक्स हो गए,
1: वो लाइक कितने बढ़ गए,
0: वो उसी में लगे रहते हैं।
1: और बस इसी से हम है ना, तो ये अच्छे रिश्ते और आत्मसंतोष, स्वस्थ जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है, इन चीज़ों से नहीं मिलती। ये चीज़ हमें समझनी है आरती। और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की हमें ज़रूरत ही नहीं। क्यों हम सबूत दिखाएं कि हम खुश हैं, इस बात की हमें दिखावा करना ही क्यों है, बल्कि हमें ये समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है वो सबसे ज़रूरी है।
0: बिल्कुल, और सच्ची खुशी किसी भी दिखावे की तो मोहताज होती नहीं है कि हमें दिखाना पड़े कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं कब हम रो रहे हैं, एक एक चीज़ को उस पर डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो चीज़ें होती हैं जो खुशी होती है ना, वो होती है छोटे छोटे पलों में। हम बहुत बड़े बड़े पलों का इंतज़ार करते रहते हैं ना कि चलो ये त्यौहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो हम अभी क्यों नहीं खुश हो जाते? तो हर जो जो जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है उसे इंतज़ार में कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में आए।
1: और जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना, इस तरह से उनकी खुशियाँ ज़िंदगी में पूरी कभी नहीं होती। ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे मिलेंगे तब खुश, यहाँ जाएंगे तब खुश होंगे, इसके ये आएगा तब खुश होंगे, ये तो सिर्फ एक बहाने हैं। लेकिन वो खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप बता रही हैं,
0: जीवन है कोई ऐसा मंच नहीं है कि हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए। भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नज़र से नहीं जीना, हमें अपनी नज़र से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है।
1: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं। जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं। दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है पर रात को हम तखिया भी होते हैं। कभी कभी गिरकर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है, पर दिखावा ही अगर ज़िंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है जो सच में हंसता था। लेकिन दिखावा वहीं तक सही है जहाँ तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े। ये इतना प्यारा संदेश है और हम श्रोता ने जिसने भी लिखकर भेजा उसे बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: बिल्कुल, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ हम सब के साथ में होता है, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी ना कभी दिखावा करना ही पड़ता है, क्या करें। लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज़्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। खुश रहने का एक उपाय

0: कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को और खुशी को आप ज़्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो सामने वाले के जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगी।
1: बिल्कुल।
0: और देखिए, अब हम मैं एक अच्छा सा संदेश पढ़कर आपको सुनाती हूँ। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या खुशी का दिखावा करना, दोनों पहलू शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी कुछ और ही होती है। जो अलग अलग सोशल मीडिया के साइट्स हैं वहाँ पर अपने स्टेटस, अपना घर, अपने कपड़े, आउटिंग की फ़ोटो डालकर बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हैं, और इस बेहतरीन दिखने की वहाँ पर होड़ सी मची हुई है। खुशी मांगे जो हो और मांगे सामानों से महंगे पलों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है, शांति में होती है, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में छिपी होती है। बहुत सही बात लिखी है।
1: बहुत सही बात। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना और खुश रहने का दिखावा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। असल में खुशी आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है, जबकि जो दिखावा होता है वो सिर्फ एक मुखौटे की तरह होता है, जिसमें सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना होता है और कुछ नहीं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। कुछ लाइन्स उन्होंने भेजी है गाने की,
0: और इस गाने के माध्यम से इस बात को बहुत सटीक तरीके से समझा जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: एक आगे के संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि आज के समय में लोग अपनी खुशी से ज्यादा उसकी नुमाइश करने में व्यस्त दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन है उसके बारे में इन्होंने भी लिखा है, और आगे लिखते हैं कि दिखावा कुछ समय के लिए ही प्रभावित कर सकता है, लेकिन मन का संतोष, मन की शांति कभी नहीं दे सकता। रिश्तों में अपनापन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर है तो चेहरे पर मुस्कान खुली रहती है, और यही सच्ची खुशी है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश दिखना नहीं है बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वास्तविक खुशी मन को संतोष और जीवन को अर्थ देती है। जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना सीख जाता है, तब उसे खुशी का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उसका जीवन ही खुशी का प्रमाण बन जाता है। बहुत सही बात कही उन्होंने।
0: एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा संदेश है कि जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज़्यादा आवश्यक हो गया है। जहाँ वास्तविक खुशी मन की शांति और संतुष्टि देती है, वहीं दिखावा ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है।
1: बिल्कुल,
0: ये भी सही बात है।
1: बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि खुश रहना और खुश दिखना ये दो अलग यात्राएं हैं। खुश रहना भीतर का अनुभव है, ये सस्ता है क्योंकि इसका लेन देन बाहर की दुनिया से नहीं भीतर से होता है, लेकिन खुश दिखना दिखावे की दुनिया का खेल है। ये सब महंगा है, जेब से, दिल से, शांति से भी। असल में कठिनाई खुश रहने की नहीं, खुश दिखने की मजबूरी छोड़ने में है। सुख हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहरी चमक सिर्फ एक नकली रोशनी है। बहुत बहुत गहरी बात कही इन्होंने।
0: और भी संदेश है।
1: तो एक और जमाइश होता है जो कहते हैं कि भाई दुनिया तो दिखावटी तो है ही, अभी तो उसके पोषक भी है, फिर खुश रहना चाहते तो सभी हैं क्योंकि वो आनंद के सच्चित स्वरूपांश हैं, किंतु खुद में खुश रहना एक कला है, और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं।
0: ऐसी बहुत से मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी हैं। कुछ संदेश जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं, और सुनते हैं ये वाला गीत।

0: आरती, हम बात कर रहे थे ना खुशी रहने के, खुश रहने के बारे में और उसका दिखावा करने के बारे में। एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है, खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को। जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है। दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है। इसीलिए खुश दिखने से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, ज़िंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सचमुच खुश हो।
1: बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। और इसी के साथ एक और हमारे श्रोता है, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुशी रहना चाहिए। खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते। दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई की श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूँ, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूँ तो आप सभी शक्की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं उनको सुनकर हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है, तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
0: बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे। और
1: जी
0: जब बात सुनने की आ रही है तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है,
1: बहुत जरूरी
0: और
1: है।
0: इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है, और ना केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है। इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है।
1: बहुत ज़रूरी है। और कानों में इसलिए क्या करना है, हमें कभी भी कोई नुकीली चीज़ या माचिस की तीली, जैसे अक्सर हम ना
0: हाँ,
1: कुछ नहीं तो अरे कान में कुछ नहीं हो रही तो बस माचिस की तीली लेके करने लगे, तो वो बहुत
0: और
1: खतरनाक चीज़
0: महिलाएं
1: होती है।
0: हेयर पिन घुमाती हैं
1: हाँ, हेयर
0: जिससे
1: पिन, चाबी लेता कोई कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो, तो कभी इस तरीके की चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुँचा सकता है। और लंबे समय तक हमें तेज़ संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना बहुत समय तक, ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही हो जहाँ पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि एक अलग फ्रिक्वेंसी पे रहता है ना
0: जी
1: जो हमारे कानों की होती है, वो एक लिमिटेड होती है, उससे ज़्यादा हम अगर शोर में रहेंगे तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाएगा।
0: देखो, जिस तरह से आंखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आंखों में जो नमी है वो अपने आप आंख उसे निकालकर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है, और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है। कई बार उसे ज़बरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं। तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है, तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें।

0: चाबी, नुकीली चीजें,
1: बल्कि हम
0: हेयर
1: कहेंगे
0: पिन,
1: कि आप
0: इनका तो
1: इनको
0: कभी
1: बिल्कुल
0: ना
1: आप
0: करें।
1: इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करें, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना, जितनी आपकी उंगली जो आपके हो सके जा सके उस हिसाब से आप करिए, वो सब चीज़ आप प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि पुराने जो होते हैं वो बड्स, उसमें वो फंगस भी होती है तो वो अंदर जाके नुकसान पहुँचाता है, इसलिए ये सब चीज़ें आप ना प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए, और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए,
0: जी।
1: और क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे एक
0: जी
1: आवाज़ ही आती रहती है, तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं, तो अब बहुत ज़्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुँचाएगा ही।
0: क्योंकि जब इस चीज़ का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से, बात करने से मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फ़ोन नहीं लगाना है तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज़ आवाज़ में, तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही। एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं
1: बिल्कुल
0: तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज़ या अन्य कोई आपको आवाज़ भी दे रहा है तो आपका ज़रूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है,
1: बिल्कुल
0: तो ईयरफोन का इस्तेमाल कम से
1: बिल्कुल।
0: कम करना
1: और
0: है।
1: सबसे बड़ी चीज़ है, आप फिफ्थ अगर आपको सुन ही रहे हैं, आप उसको बहुत ज़रूरी है आपको कान में लगाना, तो आप 50, उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए, बहुत ज़्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज़ को कि आपको बाकी आवाज़ें ना आए। और दूसरी चीज़, अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं, एक कान में लगाइए, आप ये करिए ना, एक कान में लगा लिए, थोड़ी देर बाद अपने दूसरे कान में लगाएं, इससे क्या होता है ना, कान आपका ऐसे पर्दे पर उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो ख़राब नहीं होगा। और साथ ही अगर आपकी बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, कृपया करके अपने आप कोई दवाई मत करिए। कई लोग होते हैं ना कि कुछ हम ये चलो ये डाल लें, ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज़ आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए, आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीज़ें, तो वो उसका पूरा एग्जामिन करें, उससे उसकी जाँच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जाँच होती है वो भी ज़रूर करवाइए।
0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें, और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है आरती। आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज़ ना डालें, पानी को झुकाकर अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें, और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा,
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: भारत एक महान देश हमारा, हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार में मिट्टी से तिलक लगाते हैं, अपने बदन पर तिरंगा ओढ़ने की चाह रखते हैं। इस तिरंगे को मान सम्मान मिले वो इरादा रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक बारी कहा था कि भारत में हर एक जीव, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वो भारत की तरक्की के लिए योगदान दे रहा है। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने भारत के लिए योगदान से भी ज्यादा अपना समर्पण दिया है। आज हम सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह, प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री उनको ये सम्मान दिया गया। आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित ललित शाह जी आते हैं पहाड़ों की उन वादियों से जहां बचपन में ही उनका एक जज्बा उनको भारत की सेना में, भारत के सशस्त्र बल में कहीं ना कहीं किसी रूप में योगदान देने के लिए प्रेरित कर गया। आज हम उनके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल से जुड़ी तमाम बातों की यहां चर्चा करेंगे। एसएसबी जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, और वर्तमान में भारत नेपाल सीमा जो लगभग 1751 किलोमीटर की, और भारत भूटान सीमा जो लगभग 700 किलोमीटर की है, उस सेना, उस कार्यरत जवानों की, अफसरों की जहां बाज योगदान, उस कंट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। आइए पूरे भारत के साथ स्वागत करते हैं सेकंड इन कमांड ललित शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का, उस फोर्स का हिस्सा हैं। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की।
1: जी बिल्कुल, हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप में विशेष होता है, परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी अपनी विशेषता है। ये एक पोरस बॉर्डर है, और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को एसएसबी के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी अपने पूरे ईमान से, पूरी मेहनत से 24/7 365 डेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये फोर्स भारत की सेवा में हमेशा तत्पर है। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा सुरक्षा और बंधुत्व, हम उस पर कार्य करते हैं, और लगातार जो है हमारा पूरा फोर्स इस ध्येय वाक्य को साधने पे लगा हुआ है।
0: तो शाह साहब, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने हिस्सा लिया, आपने की अपॉइंटमेंट्स में से मैं कहूँगा कि फिलहाल आप एसएसबी एकेडमी में, जो श्रीनगर है उत्तराखंड, वहाँ पर आप ट्रेनिंग का जो भार है वो संभाल रहे हैं। 9 बटालियन के साथ आप थे बिहार में, सीतामणि में, बलरामपुर में, और ढेर सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे, लेकिन इस फोर्स में आना आपके लिए कब तय हुआ? कब आपने ये डिसाइड किया कि ये फोर्स कुछ खास है और मुझे इसके साथ जुड़ना है?
1: ये स्कूल के दिनों की बात है। मैंने अपनी स्कूलिंग पिथौरागढ़ से की है, और पिथौरागढ़ में भी जो मेरा स्कूल रहा है केंद्रीय विद्यालय, वो छावनी क्षेत्र में रहा है। मेरे क्लासमेट्स भी अधिकतर फौजी बैकग्राउंड से, CAPF बैकग्राउंड से ही रहे हैं।
0: जी जी,
1: जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमेशा ही फौज की वर्दी, फौज का डिसिप्लिन, फौज के कार्यकलाप हमेशा बचपन से ही देखते आए हैं। तो एक छोटे बालक से जब हम बड़े होते गए तो फौज को देखते देखते ये फोर्स यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा

0: तो तभी आ गया था। उसके बाद जब मौका मिला तो हमने फौज फोर्स में ज्वाइन कर लिया।
1: तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, 80 का दशक था, तब सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में, लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। अगर मैं कहूँ कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहाँ थी आपके गाँव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था और किसने आपको प्रेरित किया?
0: उस समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो
1: जी
0: स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था,
1: जी जी
0: तो कैपसेक के अंडर आती थी, तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी।
1: जी
0: बॉर्डर गार्डिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है।
1: ओके
0: 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया। 2004 में भारत भूटान सीमा के लिए। अगर मैं अपने समय की बात करता हूँ तो तब हम सशस्त्र सीमा बल को इस तरीके से नहीं जानते थे, तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ था।
1: जी
0: तब हम आईटीबीपी को देखते थे, हमें सीआरपीएफ की
1: जी
0: जानकारी
1: जी
0: थी, बीएसएफ की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे।
1: जी
0: पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उस पे आने का रुझान बन गया।
1: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
0: अगर आप बॉर्डर को देखेंगे तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं। खास तौर पे भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है, आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते। परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है अलग-अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं, तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है। तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और उसी टास्क को जो हम हैं ह्यूमन इंट कहिए या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, और ये एक चैलेंजिंग टास्क है और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे।
1: और आपकी जो फोर्स है वो फेस है भारत का इन
0: जी
1: कंट्रीज के, तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी,
0: बिल्कुल
1: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी।
0: बिल्कुल
1: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग भेस बदल के भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हो सकते हैं इन देश के ना हो किसी और देश के हों, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचान

0: जी
1: उसमें हम सीसीटीवीज को यूज़ कर रहे हैं, हम कैमराज जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने बहुत जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम लगाया है,
0: जी
1: हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं, उसके अलावा जो हमारा जवान वहाँ पे खड़ा है वो उस चीज़ में पारंगत हो चुका है, वो देख रहा है लोगों को आते जाते हुए, उनसे वो पहचान रहा है, वो लगातार नोटिस कर रहा है। उसके अलावा हमारे अपने मैकेनिज्म रहते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है इस तरह की गतिविधियों के बारे
0: राइट देन, तो आप अभी सीटीसी में हैं,
1: में।
0: श्रीनगर। श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं है, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर। और वहाँ पे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है,
1: बिल्कुल,
0: और किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को दे
1: बेसिकली
0: रहे हैं?
1: जो हमारा सीटीसी है वो सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है,
0: जी
1: और यहाँ पे हम जो है हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं।
0: ओके
1: उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ पे कराते हैं।
0: ओके
1: उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं हम वहाँ पे कराते हैं, राफ्टिंग का कोर्स कराते हैं, और भी बहुत गतिविधियों को हम वहाँ पे करते हैं।
0: जी, या जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाका है और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
1: बिल्कुल, ये सही बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती रोल रहे हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था तो वहाँ पे ही डिप्लॉयमेंट रही है, तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेशन तक आसानी से पहुँचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव
0: और
1: किया।
0: आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हैं आप सीटीसी में, ये कितने समय से हैं?
1: मेरे को अभी 1 साल हुआ है लगभग।
0: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, और एक ख़ास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी स्मार्ट लुकिंग यंग ऑफिसर, ही इज़ सेकेंड इन कमांड ललित शाह ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम कहते हैं SSB। यहाँ पे एक, क्योंकि प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम यहाँ आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
1: ऐ मेरे वतन के लोगों,
0: ये आपको बहुत प्रिय है
1: बहुत प्रिय है,
0: और कोई खास वजह?
1: पहले से सुनते आ रहे हैं, जब भी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरेबली रहता ही था,
0: जी जी
1: तो दिल को छूता है ये सॉन्ग।
0: एंड इट्स संग बाय वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स, जिसको हम कहते हैं द नाइटिंगेल एज फार एज द प्ले बैक सिंगिंग इज कंसर्न, द लेट द लेजेंडरी लता मंगेशकर।
2: Yeah!

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह। और आज हम इस भारत की खास फोर्स के बारे में उनकी जुबानी सुन रहे हैं। इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को ये एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ देखते हैं, वहाँ तैनात रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत योगदान देते हैं भारत की तरक्की में। लेकिन यहाँ सेकंड इन कमांड ललित शाह जी, आपसे जानना चाहूँगा, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तब आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ पोस्टिंग हुई?
1: मेरी अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई। बिहार में सीतामढ़ी एक जगह है, वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से। तो वहाँ पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं वहाँ जवानों से मिला तो एक कंपनी है तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है। फिर मैंने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ को समझा
0: जी,
1: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो जाना
0: जी,
1: और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जाना। और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने और एक अच्छा मेरा टेन्योर वहाँ पे निकला अपने जवानों के साथ
0: जी।
1: और हमने एक अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत किया। और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो
0: जी,
1: इस तरीके के कार्य करते हैं उस तरीके का कार्य भी वहाँ पे रहता है। तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला और किस तरीके से रोकना है अपने।
0: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है
1: जी,
0: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है
1: जी।
0: और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
1: अगर ऑपरेशंस की बात करें तो जो मेरा नक्सल का टेन्योर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़, इसके लिए भी चुना गया है। तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और हम लोगों ने उस जिस ज़िले में हम लोगों को दिया गया था उस ज़िले को नक्सल फ्री कराने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है।
0: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोड्डा पाकुड़ दुमका साहिबगंज जामतारा और देवघर जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं दुमका पाकुड़ और गोड्डा, ये नक्सल इन्फेस्टेड जिले हैं 1990 के समय से ही। और जब हमारी मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ 2018 में, उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहाँ पे रहा है और इवन एक ऐसा समय था वहाँ पे 2013 के आसपास कि वहाँ पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी एक आईपीएस ऑफिसर की, अमरजीत बलिहार सर करके वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में गोड्डा पाकुड़ और दुमका, इस क्षेत्र में हमारी कंपनियाँ थी, तो यहाँ पे हम लोगों को नक्सल ऑपरेशंस करने थे। तो इसलिए हमको डिप्लॉय किया गया था। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हमारे सीनियर्स के द्वारा

0: प्लानिंग की गई और उसके बाद हम लोगों के द्वारा टीम बनाई गई वहाँ पे, और उस टीम की मदद से जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस वहाँ पे किए हैं, और उस ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि आज दुमका नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट है और नक्सलवाद लगभग वहाँ से ख़त्म हो गया।
1: अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा, ये नक्सलवाद वहाँ पर है तो आप लोगों की कभी भी कोई ऐसी कोशिश रही तो होगी कि हम बातों से थोड़ा सा बिफोर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी घटना हो तो हम बातों से बातों का जो सिलसिला है उसे रखकर कोई चीज़ सॉल्व कर सकें?
0: बिल्कुल, कोई भी ऑपरेशन की जो ये ऑपरेशंस हैं उससे पहले सारी तैयारी जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है, और उसके अलावा जो आपका जो लोकल पॉपुलेस है उसका आपको विश्वास जीतना है, उसमें आपने एक विश्वास बनाना है अपने लिए, तभी इन्फॉर्मेशन फ्लो भी होती है। हम लोगों ने बहुत कार्य किया अंदरूनी इलाकों में जाके, हम लोग वहाँ पे जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते थे, मेडिकल सिविक एक्शंस करते थे, हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे बिल्कुल दूर दराज के गांव में जाके ओपीडीज लगाते थे। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए बहुत
1: ये
0: कार्य
1: सब
0: किया,
1: एसएसबी कर रही है?
0: बिल्कुल एसएसबी कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग के कोर्सेज कराए, जो बच्चे होते हैं उनको हमने ड्राइविंग के कोर्स कराए, उसके अलावा मैकेनिक के कोर्स करवाए, प्लम्बिंग के कोर्स करवाए, उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए।
1: मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो, आपकी जो फोर्स है वो टेररिज्म से भी वो काउंटर टेररिज्म में अपना रोल अदा करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक एस्टैब्लिश फोर्स हो गए या आर्मी के अगेंस्ट या हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वो जस्ट एनी अदर ह्यूमन बींग नहीं होगा, वो एक युवा होगा जिसको मिसगाइड किया गया होगा और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया होगा, तो उस युवा को थोड़ा सा काउंसलिंग करने का भी श्रेय आपकी फोर्स लेती है?
0: बिल्कुल, हमने बहुत बहुत बार हम लोगों का ये फ्रीक्वेंट, जब भी हम जाते थे अंदरूनी इलाकों की तरफ
1: जी
0: वहाँ के युवाओं से बातचीत करने का प्रयास, उनको स्कूलों के प्रति जागरूक करने का प्रयास। नक्सलियों की एक टैक्टिस रही है कि वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनको कभी भी सरकार के द्वारा मिली हुई चीज़ों को लेने नहीं देना चाहते हैं, कभी रोड नहीं बनना देना चाहते हैं, उनकी टैक्टिस को रोकना, रोड बनना बनने देना, विद्यालयों को अंदर तक का पहुंच पहुंचाना, हॉस्पिटल्स की सुविधा उनको अंदर तक पहुंचाना, गांव वालों को विकास के नज़दीक लेके जाना, ये कार्य हम लोगों ने उस क्षेत्र में बखूबी तौर से किया। और हमारे ही वहाँ पे तो इवन मैंने ये देखा कि जो रोड बन रहा है
1: जी
0: उस रोड को बनाने का प्रोटेक्शन भी हम दे रहे हैं कि आप बनाइए, जो वो ठेकेदार है वो भी तब बना पाता है जब उसको लगे विश्वास हो कि भाई मुझे नक्सली हमला नहीं करेगा, ये सुरक्षा भी हमने प्रदान करी। अब मुझे लगता है कि बहुत अंदर अंदर तक का रोडे पहुंच गई, विकास जैसे ही पहुंचता है नक्सलवाद अपने आप ही भाग जाता है।
1: पर आपको क्या लगता था कि किस पॉइंट को लेकर नक्सलवाद वहां पे इतना इतने सालों तक रहा, कुछ आपको आइडिया? क्यों वो विकास नहीं चाहते?
0: मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का ना होना, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार क्या चीज़ है। 90 का दशक है वहाँ पे लोक अदालतें लगती थी, ये लोग अपने आप फैसले देते थे, ये लोग किसी को भी मुखबिर घोषित कर देते थे, उसको मार देते थे,
1: पनिशमेंट
0: कोई भी बिजनेस कर रहा है उससे लेवी वसूलते थे। तो एक जो इन्होंने खौफ भी बनाया लोगों के मन में, तो लोग सीधे साधे हैं, झारखंड में जिस इलाके में मैं रहा हूँ संथाल
1: जी
0: परगना में,
1: जी
0: बहुत सीधे साधे लोग
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुँचने नहीं देते थे,
1: जी
0: पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया, और यही इसी से नक्सलवाद वहाँ पे बढ़ा शुरू में। फिर इन्होंने कोई भी चीज़ के उसमें बैरियर लगा दिया, आप और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे, तो डर भी एक चीज़ थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सल

0: कितनी देर ये ऑपरेशन चला और क्या था?
1: हाँ, मैं ज़रूर बताता हूँ। थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि किस तरीके से ये हम लोगों की टीम डेवलप हुई। तो कुछ व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिन लोगों की वजह से हम लोग इतना अच्छा ऑपरेशंस कर पाए। नाम लेना चाहूँगा मैं उनका। हमारे आईजी सर थे श्री संजय कुमार, हमारे डीआईजी सर श्री सुमित जोशी
0: जी,
1: हमारे कमांडेंट सर परिचित सर, मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर सतीश सर थे। बहुत अच्छा साथ ही हमें साथ मिला अपने जवानों का, और मेरे साथी नरपत, गुलशन, विनायक, ये हम लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई। इसी के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी ये रही कि उसी समय जो जिले के एसपी थे श्री वाई एस रमेश, उसके अलावा सीआरपीएफ के जो एएसपी ऑफिस थे इमानुल बास्की और आरसी मिश्रा सर, हम लोगों की टीम जो एक डेवलप हुई और हमारे आईजी सर के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने एक टीम बनाई, जिसको हमने अपने ही बटालियन के अंदर से अपने ही लोगों से एक स्मॉल एक्शन टीम करके बनाई। और उस टीम को हमने जो है उसमें हमने ऐसे लोग लिए, एक छोटी टुकड़ी बनाई, क्योंकि बहुत लोग जाके ऑपरेशंस नहीं हो सकते, तो एक छोटी टुकड़ी बनाई जिसको एक ऑफिसर लीड करता था, उसके संग 20 जवान करीब। तो वो जवानों का सिलेक्शन, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, उनके बाद उसको जो उसके टैक्टिकल वेपन्स, एक फिर उसके बाद आया हमारा इंट, जो टैक्टिकल इंट थी। तो इसमें एक नरपत सिंह जो अभी डिप्टी कमांडेंट हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो लोगों के बीच में पैड बनाई और जो इन्फॉर्मेशन एक फ्लो होने लगी, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और हमारी टीम ने, आप मानेंगे कि ऑपरेशन तो एक दिन है, पर उससे पहले की जो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हम लगातार जंगलों को डोमिनेट करते रहे, हमें हर जगह जाके कि हम कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे, रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की
0: जी,
1: उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए। और उन ऑपरेशंस की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है।
0: वाह, वंडरफुल। तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं, और उसके बाद जब एक कंप्लीशन होता है, ठीक है, गौरवान्वित इंसान फील करता ही है, लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी, शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो झारखंड जैसे एरिया में, थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हो। तो उनका भाव आपके जो भी आप कार्यरत थे जितने टाइम के बाद, कुछ सेटिस्फैक्शन उनके भी चेहरों पर दिखी?
1: बिल्कुल। आतंक का पर्याय थे ये नक्सली, ये नक्सलियों लोग डरते थे इनसे, इनके पास हथियार थे, इनके पास AK-47 इंसास, इस तरीके के वेपन्स थे जो इन्होंने पहले से लूट लिए थे। इस तरीके के वेपन्स लेके ये जब लोगों के घरों में रात को घुसते थे, उनसे ज़बरदस्ती खाना बनवाते थे, उनके घर में रहते थे, तो जब ये नक्सली मारे गए या इनका सफाया हो गया, तो डेफिनेटली लोगों ने जश्न मनाया है, लोग खुश हैं, आज तरक्की की राह पे आगे बढ़ गए हैं लोग, और उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज पहुंचने लगी हैं। ये बैरियर थे उस अपॉर्चुनिटीज के, और वो बैरियर तोड़ दिया एसएसबी ने, वहां जाके इस बैरियर को तोड़ दिया।
0: आपके फोर्स के अंदर फिर क्या माहौल हुआ? मैं समझ सकता हूँ आप ऑपरेशन में थे, आपकी एक टीम थी, लेकिन आपकी फोर्स बहुत बड़ी है, तो ये खबर जब पूरी फोर्स में फैली होगी, तो उत्साह के साथ साथ मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल भी एक स्टेप हो गया होगा सबके लिए।
1: बिल्कुल। ये हमारी जो टीम थी, इसी तरीके से हमारे जो बिहार और झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशंस में जो टीम्स थी
0: जी,
1: वो टीम्स ने भी हमारी टीम्स के इस जो कार्य करने की शैली थी, इसके बाद जो है उनका भी कार्यशैली में बड़ा परिवर्तन हुआ, और मतलब बेहतर रिजल्ट्स आने लगे। और मोटिवेशन तो होता ही है, फोर्स में जब देख रहा है दूसरा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो एक कंपटीशन है और एक पॉजिटिव कंपटीशन है, और सब सारी ही यूनिट्स ने फिर वहाँ पे झारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है।
0: और वो मेरे ख्याल से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बाद आप एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं हम उनको कैसे ग्रूम करें आगे जाके।
1: बिल्कुल।
0: और शायद वही आप कर रहे हैं अपनी सीटीसी में जो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं।
1: बिल्कुल, हम हमेशा बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से ये ऑपरेशंस रहे हैं, ये केस स्टडीज जो है ये लगातार भागों में हर जगह हर ट्रेनिंग सेंटर्स पे चलती रही।

0: तो भारत के किन किन प्रांतों से आपके फोर्स के अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं?
1: ऑल इंडिया,
0: लगभग
1: हमारे उसमें
0: सभी।
1: सभी जगह से लोग आते हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह के लोग हैं हमारे वहाँ पे। बहुत ही भरा पूरा परिवार रहता है
0: जी।
1: और हम हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं। हमेशा कोई ना कोई किसी प्रांत का फेस्टिवल होता है तो बहुत अच्छा
0: तो मेरे ख्याल
1: रहता
0: से आप ट्रेनर हैं, तो आपका भी सबसे पहला सवाल होता होगा किसी नए रिक्रूट से जब आप मिलते होंगे कि आप क्यों आए हो एसएसबी में, क्या खींच कर लाया आपको एसएस? कुछ ऐसे ही मेरे
1: बिल्कुल
0: अंदाज में तो नहीं, आपके अपने अंदाज में ही।
1: बिल्कुल हम पूछते हैं उसके कहाँ से वो आया है,
0: जी
1: उसकी क्या मोटिवेशन था, किस वजह से उसने फोर्स ज्वाइन करी है।
0: जी
1: हमें जानना होता है कि वो ट्रेनिंग में कितना एक्सेल करेगा, उसको हमने किस लेवल तक लेके आना है,
0: ओके।
1: उसमें कितना मोटिवेशन हमें डालने की ज़रूरत है कि या सेल्फ मोटिवेटेड है। तो हम उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज तो करते ही हैं अपने ट्रेनिंग्स को।
0: राइट देन, मैं थोड़ा सा यहाँ रुख मोड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम का। दोस्तों, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर, और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, सेकंड इन कमांड हैं एसएसबी के, ललित शाह जी। कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने।
1: बिल्कुल
0: स्मार्ट लुकिंग एक ऑफिसर मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ अपने फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में?
1: बिल्कुल मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं
0: जी
1: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में। और
0: पिथौरागढ़ में अरेंज डी होती होंगी है उस समय, तो हमारे दिल्ली जैसे शहरों
1: बिल्कुल
0: में आके लोग कहते हैं ओ पापा आई एम इन लव, बट यू वर ऑलरेडी इन लव विद द नेशन, आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था। तो आपकी वाइफ जब आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है, एक दूसरे से मिल सकते हैं
1: हाँ
0: शादी से
1: बिल्कुल,
0: पहले?
1: हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उसके बाद एक एक परंपरा है पाता जाने की। जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है। तो जब पाता, लड़की का पाता आता है, मतलब पतरा जो आप वो
0: जी पत्र। ओके
1: कहिए, तो वो आता है, तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है और
0: ओके
1: वो मिल जाता है, तो उसके बाद वो शादी फिक्स हो जाती है। तो इसी प्रकार से मेरी भी शादी हुई है।
0: हाँ, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पे हूँ और भारत की एक प्रमुख फोर्स है और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो।
1: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है जानने की ज़रूरत है, पर मेरी वाइफ ने जितने जल्दी इस चीज़ को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा,
0: जी
1: अलग
0: जी
1: अलग जगह
0: जी
1: ड्यूटीज़ की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा और मेरी वाइफ हमेशा मेरे इस काम के लिए मेरे साथ खड़ी रही।
0: अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दो बच्चियाँ भी हैं,
1: जी
0: तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत फ़र्क आ गया है,
1: जी
0: मॉडर्न पढ़ाई है, और ये गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके टाइम में उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं। तो उनका रुझान कैसा है, वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का या?
1: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती हैं। बहुत छोटी हैं तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से
0: जी
1: वो
0: जी
1: उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है, बट मैंने ज़रूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं, तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं। तो हो सकता है भविष्य में उनका बने रुझान और प्रबल
0: जी,
1: हो जाए।
0: आपकी एसएसबी में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है,
1: बिल्कुल
0: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के दे स्मार्ट कंट्रीब्यूटर्स।
1: बिल्कुल, हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं। और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बढ़ाने जा रही है। और मैंने देखा है कि महिलाएं भी बहुत जगहों पे, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम हैं हर चीज़ के लिए। वो वक्त की बात है, वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही
0: वाह,
1: बेहतरीन उनका कार्य है, और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं। उनकी सोचना समझना, उनका तरीका बहुत अलग रहता है।
0: ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा
1: बिल्कुल
0: हूँ, पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए गाना चला रहे हैं। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जौली। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अभी यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहाँ भेज सकते हैं। कुछ लोगों को मुँह जुबानी हमारे जो नंबर है ना वो याद है ललित शाह जी, तो एक जनाब हैं दिल्ली से ही, द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है, और वो आपको ग्रीट करते हुए कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं। आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका नाम है शंकर लोड,
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँ, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं देहरादून से लिख रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में।

0: अभी जो मैं सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर में हूँ, तो मेरा दायित्व ट्रेनिंग देना है। तो मैं एज ट्रेनर वहाँ पे पोस्टेड हूँ, तो ट्रेनर हूँ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं। बेसिकली DDO का कार्य रहता है, सेकेंड इन कमांड के पास।
1: जी
0: ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको। तो उसका कार्य पे अलाउंसेस, ये जितने भी वित्त रिलेटेड मैटर्स हैं, उसमें
1: जी
0: अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है।
1: ओके
0: हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है, उसको DIG लेवल के ऑफिसर वो करते हैं। तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है। तो उसमें से एक मैं भी हूँ, सेकेंड इन कमांड वहाँ पे।
1: जी
0: और ट्रेनिंग है, और कुछ DDO वाला वर्क जो है, मैं वहाँ पे कर रहा
1: राइट।
0: हूँ।
1: मैंने मशीन खोली है तो देखिए, आपने कहा था ना कि हर प्रांत से आपकी रिक्रूटमेंट्स होती है। तो देहरादून से, अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का। साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना जो भावुक होकर हम लिखते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सुना जा रहा। थाईलैंड से अमोल अंबावणे, अगर मैं आपका सरनेम सही ले रहा हूँ, तो वो मैसेज हमें भेज रहे हैं कि न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से हमें देश और विदेशों में सुना जाता है। न्यूज़ ऑन AIR ये एक ऐप है, और पृथ्वी पर कहीं पर भी आप हैं जहाँ पे आपके पास मोबाइल डेटा है और आपको एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप हमें सुन सकते हैं। एक और हैं, सल्यूट सर कर रहे हैं, रंजीत इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं CTC SSB श्रीनगर से हूँ। सर, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और सुन के आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। आशा करता हूँ ये आपके परिचित होंगे शायद कोई।
0: थैंक यू।
1: ऑल राइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं। महेश सिंह जी कहाँ से लिख रहे हैं ये मुझे अब बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। 29th SI/DE चेतन लिख
0: अच्छा,
1: रहे हैं, आप
0: ओके
1: पहचान गए होंगे।
0: जी।
1: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद, विजय कुमार जी हैं वहाँ से लिख रहे हैं। एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर। यश गुप्ता लिख रहे हैं, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम
0: धन्यवाद
1: उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें, क्यों?
0: है यश का
1: नागेश गडाडे हमें पोलैंड से सुन रहे हैं।
0: जी।
1: अब देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे। चंद्रशेखर तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूँ ललित सर का। सही कह रहे हैं सर ये।
0: जी
1: ऑलराइट, यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा, एंड ऑफ कोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है। दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव।
0: जी जय हिंद बाबूलाल।
1: ऑलराइट, को मैसेज सब भेज रहे हैं। एक और इंटरनेशनल मैसेज यहाँ पे आया है, एंड ऑफ कोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है। एंड आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार जो होता है उसमें मेन वेमेन
0: जी
1: दोनों आपके बीच आते हैं। यहाँ पे
0: बिल्कुल
1: कॉम्बैट की सिचुएशन की भी ट्रेनिंग आप देते हैं।
0: बिल्कुल
1: आपने एंटी इंसर्जेंसी, एंटी टेरर ट्रेनिंग भी आप लोग वहाँ पे देते हैं। तो कितना चैलेंजिंग होता है दोनों, महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग देना, या आप कहीं सोचते हैं कि नहीं एक सॉफ्ट ट्रेनिंग रखते हैं एक हार्ड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होता है?
0: ट्रेनिंग दोनों के लिए ही बराबर है, सेम शेड्यूल है दोनों का। और दोनों ही, मैंने जो देखा है कि दोनों ही, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ढलने में कुछ समय लगता है, पर एक बार जैसे ही ढल जाते हैं तो वो रोल ऑन करते हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं। महिलाओं को मैंने देखा है कि जो उनका एक्सीलेंट टाइम है या उनका वेरी गुड टाइम है या वो है, वो अपने बेंचमार्क्स को अचीव करती हैं। कुछ समय लगता है, हर किसी के लिए लगता है। अभी तो जो पुरुष भी आते हैं उनको भी समय लगता है, बट एक बार वो ट्रेनिंग में ढलते हैं तो जो उनकी 48 वीक्स की ट्रेनिंग है, और जाते जाते सब लोग अपना बेंचमार्क्स, अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को। और इवन फील्ड्स में भी अभी हर जगह पे, कोई भी हमारी ट्रांजिट रूट्स हैं या पेट्रोलिंग चल रही है या नाका चल रहा है, तो महिलाएं बराबर का योगदान दे रही हैं। जी
1: क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, लगभग 9 मिनट बचे हैं,
0: जी
1: तो मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा और किसी का मैसेज छूट ना जाए, मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ। क्रांति चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक भी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके थ्रू SSB के थ्रू ले सकती है डिफेंस एकेडमी में?
0: अभी तक का तो जो हमने देखा है कि सिविलियंस को इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है।
1: बट सुझाव अच्छा है।
0: बहुत अच्छा सुझाव है, और मुझे लगता है कि इस सुझाव को मैं अभी जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स के सामने
1: वाह
0: रखूंगा, और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है, और इस तरीके की ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए।
1: कृष्ण कुमार साहू हैं, 52 वर्षीय हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वो आपको जय हिंद कह रहे हैं। शैलेंद्र वर्मा ने हमें मैसेज भेजा दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ कि फोर्स की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, जो आम पुलिस की ट्रेनिंग होती है, उसमें आप लोग में, आप वो जानना चाह रहे हैं कि कोई फ़र्क होता है।
0: कुछ जो वेपन्स के हैं या कुछ उसके अलावा कुछ टैक्टिस है जो पुलिस की टैक्टिस है, जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है, उनके
1: जी
0: लिए क्यूरिकुलम थोड़ा अलग है। और हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमको ANO नक्सल ऑपरेशंस भी करने हैं,
1: जी
0: उसके अलावा उन्हें JNK हुए, तो उस एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे भी हम लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग में जोड़ देते हैं, जो शायद पुलिस में रह जाता होगा, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते होंगे।
1: ऑल राइट। TPT सेल FHQ से जय हिंद बोल रहे हैं कि हमारा ये सेल आपका ये प्रोग्राम सुन रहा
0: जी, मैं इस सेल में रह चुका हूँ यहाँ पे।
1: है। ओके
0: जी
1: सनातन कुमार नई दिल्ली से लिख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही SSB में है, और आज मैं अपने ऑफिसर का काम छोड़कर आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। नहीं भाई, ऑफिस का काम मत छोड़िए, प्रोग्राम करते
0: बिल्कुल
1: रहिए और सुनते रहिए, यही तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमें सुन रहे हैं,
0: जी
1: और वो कह रहे हैं कि लाइव सुन पा रहे हैं, और सुनकर उनको आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। रोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मैसेजेस आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स धर्म जी हमारे साथ हैं, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, धर्म भाटिया रोहतक से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपसे कि अब आगे की जो जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी एक डोमिनेट कर रही है वॉरफेयर में, मैं ये नहीं कह रहा कि SSP सिर्फ वॉरफेयर ही करेगी, लेकिन सर्वेलेंस, वो आपने बताया कि बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं आपके बीच में, तो उसमें भी आप लोग फ्यूचर विजन रख के कुछ विस्तार करने की सोचते हैं।
0: बिल्कुल, जितनी मेरी लिमिटेड जानकारी है उसके अनुसार जो है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरीके से भारत सरकार जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है। और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा उसमें जो गैजेट्स हैं, जो नए गैजेट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हमारी बॉर्डर गार्डिंग यूनिट्स के संग। और जो हम अपने पोरस बॉर्डर को जो सर्वलांस करते थे मैंड होके,
1: जी
0: उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी उसको सर्वलांस करेंगे, और उस पे आने जाने वाले मूवमेंट पे हम लोग नज़र रख
1: तो
0: पाएंगे।
1: यानी मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि कंप्लीटली, लोगों को लगता है कि यार आपने कंप्लीटली मशीन पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया,
0: नहीं
1: AI का
0: नहीं
1: जमाना आ गया,
0: वो
1: आप
0: तो
1: लोग
0: नहीं,
1: AI को अडॉप्ट कर रहे हैं SSB में।
0: कुछ जगहों पे अभी उस रफ्तार से तो नहीं,
1: जी जी
0: बट
1: जी
0: ये है कि AI के अपने भी कॉन्स हैं, उसमें भी बहुत
1: एब्सोल्युटली।
0: सारे गैप्स हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो बहुत कम स्तर पे ही।
1: तो ललित शाह जी, एक सवाल आ रहा है मन में, ठीक है आप इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे स्थित हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं, वो भी आपकी मूवमेंट पे, आपकी तकनीक पे नज़र तो ज़रूर रखते होंगे।
0: बिल्कुल नज़र रखते होंगे और उन पे हम भी नज़र रखते हैं, नज़र दोनों ही तरफ से रखी जा रही है। और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज, हम लोग खुद जो है उन पे नज़र रखते हैं, और उनके किसी भी मूवमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी
1: तो
0: हुई है।
1: हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि
0: बिल्कुल,
1: हम
0: हम भी
1: बिल्कुल
0: तैयार हैं। बिल्कुल
1: चौकन्ने हैं।
0: बिल्कुल
1: CTC श्रीनगर से ही सोनू चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धन सिंह का एक मैसेज आया है, रोशनी रावत हमें मैसेज लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट भमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव, और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आपको पूरे देश में और काफी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा
0: सब आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद।
1: है। महिपाल सिंह हैं, ट्रेनिंग आप ही के जहाँ आप स्थित हैं श्रीनगर, वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं, एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया बाबूलाल यादव का, आसमां में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं, जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं, मेरी तरफ से सर को सुनाओ, अच्छा लगेगा।
0: धन्यवाद।
1: ऑल राइट। 29th SID से एक और मैसेज आया, जयपुर राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना नाम ज़रूर लिखें। अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं, और वो कह रही हैं हम सब की तरफ से, हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें। समय बीतता जा रहा है, क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊँगा, नाम मैंने लगभग सबके ले लिए हैं, और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सेकंड इन कमांड ललित शाह, सशस्त्र सीमा बल, आप

0: अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से भारतवासियों को अगर मैं कहूं कि एक मैसेज देना चाहें या मोटिवेट करना चाहें युवाओं को, तो क्या कहेंगे?
1: मैं कहना चाहूँगा कि फिट रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली फिट रहें, देशभक्ति अपने अंदर लाएं और सत्यमेव जयते जो ये एक वाक्य है, इसका हमेशा इसको अपने जहन में रखें। सत्य जीतता है और सत्य की तरफ ही हमें रहना है। जय।
0: दोस्तों, एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस आज रहा, क्योंकि सशस्त्र सीमा बल के बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिली उनके सेकंड इन कमांड ललित शाह जी की तरफ से। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूँ। कमांडो प्रवीण उनमें से एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मैसेज भेजा। साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं इंग्लैंड से, तो वो सुन के आपको वहाँ से शुभकामनाएँ भेज रही हैं आपको और आपकी फोर्स को। शिरडी से भी हमारे पास मैसेज आया है, महाराष्ट्र से। और यही तो है ना जो भारत को जोड़ता है, हमारा ये महान देश। लेकिन चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आकाशवाणी में भी एक बहुत ही प्रमुख रोल हम लोग प्ले करते हैं, तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता ललित शाह जी अगर आप अपना संबंध आकाशवाणी से कितना पुराना है और क्या खास है वो अपनी जुबानी बता के जाएं।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी से संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मैं हो चुका हूँ।
0: अच्छा।
1: जब छोटे थे पहली बार रेडियो सुना तो आकाशवाणी जो है उसको सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था। और आज भी हम जो है आज यहाँ आके भी ऐसा लगा कि मैं कोई नई जगह नहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूँ।
0: राइट देन, तो आप ही की पसंद का एक गाना है, उसके साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। किशोर दा के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने गा के नहीं सुनाया, कुछ ट्राई कर सकते हैं?
1: नहीं, बस यही गाना मैं गा लेता हूँ जब भी कहीं पार्टी और कुछ होता
0: ये
1: है।
0: मौका अच्छा है आकाशवाणी पर माइक पर
1: गुनगुना सकते हैं फिर कभी, पर ये मेरा पसंदीदा गाना है।
0: राइट देन, संदेश टू सोल्जर्स में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप जुड़े आकाशवाणी के साथ। आप हैं तो हम हैं। 90 साल, 9 दशक आकाशवाणी भारतवासियों के साथ रहा है, भारत के साथ रहा है। आप भी हमारे साथ रहें।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 5 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में भाग लिया। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीति आयोग भारत को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। खाड़ी क्षेत्र के अपर सचिव असीम आर महाजन ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री महाजन ने बताया कि 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जा रहे जहाज MT मारिवेक्स को 8 जून को ओमान के तट पर निशाना बनाया गया था। चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने फारस के खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर बल दिया।
2: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे
1: तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन को भेजा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C-295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। PV सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की ही ईशा रानी बरुआ और तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर 5:05 हुए हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है भजन संध्या। आप सभी का इस कार्यक्रम में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए वातावरण को बनाते हैं भक्तिमय और करते हैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत इस भक्ति रचना के साथ।

भजन संध्या, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे थे कर्नेल राणा और साथियों की आवाज़ों में ये भक्ति रचना। आइए अब सुनते हैं शेर सिंह और साथियों की आवाज़ों में ये भक्ति गीत।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं।
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर। 5:30 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवमंच।

0: नमस्कार युवा साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। जी हाँ, कार्यक्रम है युव मंच, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त मधु। जी दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम जिस विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं, वो विषय हम सभी से जुड़ा है। सिर्फ युवाओं से ही नहीं, बल्कि बच्चों से भी जुड़ा है, बुज़ुर्गों से भी जुड़ा है, यानी कि हर वर्ग के जो लोग हैं, हर उम्र के जो लोग हैं, उन सभी के साथ जुड़ा हुआ ये विषय है। जी हाँ, बात कर रहे हैं युवा और योग की। लेकिन युवाओं के लिए के साथ साथ ये जो विषय है योग, ये हम सभी से संबंधित है, हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज के इस कार्यक्रम में हम इस विषय पर आप सभी से बात करने वाले हैं। वैसे ये कोई नया विषय नहीं है दोस्तों, आप सभी योग के बारे में जानते हैं, और योग का नाम सुनते ही एक अजीब सी शांति हमारे मन में आ जाती है, हमारे दिमाग को सुकून सा मिलने लगता है कि वाह, योग, यानी कि हम रहेंगे निरोग अगर करेंगे योग, तो कितनी अच्छी बात है ये। लेकिन लेकिन लेकिन ज़रा रुकिए, सोचिए कि हम कितने आलसी प्रवृत्ति के इंसान हैं। हमें बहुत सी चीज़ों का पता है कि ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, ये चीज़ हमारे लिए गलत है, लेकिन मन, कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, लेकिन मन पर कंट्रोल, मन पर काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी मन इतना थक जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, योग है तो बहुत ज़रूरी, लेकिन मन नहीं कर रहा सुबह उठने का, कौन योगा करेगा। और योग बहुत, इसका प्रोसेस जो है, इसका रिजल्ट जो है, वो बहुत स्लो है, स्टेडी है, लेकिन परमानेंट है। दोस्तों, बहुत ही जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में हम ज़रूर बात करने वाले हैं, जी हाँ, योग के बारे में। तो बेहद ख़ास है ये प्रोग्राम, क्योंकि ये हमसे संबंधित है, हमसे जुड़ा हुआ है, ऐसी चीज़ के बारे में जो दिखने में तो हज़ारों साल पुराना है, लेकिन आज के युवाओं के लिए सबसे कूल और ज़रूरी लाइफस्टाइल बनता जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सभी के लिए। तो आज के हमारे इस स्पेशल सेगमेंट में हम बात करेंगे युवा और योग की। स्ट्रेस आउट, एनर्जी इन। हम जानेंगे कि कैसे योग हमारे इंस्टाग्राम रील्स की तरह ही हमारी लाइफ को भी ट्रेंडी और बैलेंस्ड बना सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, यानी एफएम हमीरपुर के साथ, आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, क्योंकि ये कार्यक्रम है बिल्कुल आपका अपना। आप सुन रहे हैं युव मंच, यानी कि आपका अपना मंच।
1: अचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे, सो इजी।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: नीलम छुटकी राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
8: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
9: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
8: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है, और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी।

0: था। ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
1: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

गाने के एक बार बाद जो है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं युवा मंच, यानी कि आपका अपना मंच, और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं युवा और योग की। जी हाँ, अच्छा बताओ दोस्तों, सुबह जब आप उठते हो सबसे पहले तो क्या करते हो? हम जब सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं, नोटिफिकेशन का ढेर, असाइनमेंट्स का प्रेशर, करियर की टेंशन, और ऊपर से वो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस भाग दौड़ में हमारा दिमाग जो है वो 24 घंटे रिफ्रेश मोड पर रहता है। नतीजा एंग्जाइटी, कमर दर्द, चिड़चिड़ापन। अब आप कहेंगे भाई ज्ञान मत दो, सोल्यूशन बताओ। तो सोल्यूशन बहुत सिंपल है बॉस, योग। कई लोग सोचते हैं कि योग सिर्फ बुजुर्गों के लिए या संतों के लिए है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। योग आज के युवाओं का सीक्रेट वेपन है। जी हाँ, सीक्रेट वेपन। ये सिर्फ शरीर को मोड़ना नहीं है, बल्कि हमारे बिखरे हुए दिमाग को एक जगह फोकस करना है। जिम जाने से हमारी मसल्स बनती हैं, लेकिन योग से हमारा मेंटल मसल्स मजबूत होता है। इस पर हम बात करेंगे और ज़्यादा, क्योंकि ज़रूरत है, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। और हम चर्चा कर रहे हैं युवा योग की, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो हम बताने जा रहे हैं आपको ऐसे 3 आसन जिन्हें आप अपने कमरे में सिर्फ 10 मिनट कर सकते हैं। और देखिए, ज़्यादा ना करने की बजाय थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन कंसिस्टेंटली करें। अगर ये कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो डैम श्योर कि हम उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाम ट्री पोज की, यानी कि ताड़ासन की। बस सीधे खड़े हो जाएंगे, हाथों को ऊपर खींचेंगे और उंगलियों के आपस में फंसा करके स्ट्रेच करना है। ये हमारे पोस्चर को ठीक करता है, जो दिन भर लैपटॉप पर बैठने से बिगड़ जाता है। और चाइल्ड्स पोज, यानी कि घुटनों के बल बैठ जाएं और सिर को ज़मीन से छुएं। ये आसन हमारे दिमाग को तुरंत शांत करता है और परीक्षा या इंटरव्यू के स्ट्रेस को भी गायब कर देता है। तो यदि आप परीक्षा देने जा रहे हैं और आपको लगता है कि बहुत मेंटल प्रेशर है, स्ट्रेस है, तो इस आसन को आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यूसली करें, कंसिस्टेंटली करें, तो इसका रिजल्ट जो है वो बहुत पॉजिटिव है। और एक और आसन है अनुलोम विलोम। जी हाँ, ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग जिसे हम कहते हैं। सिर्फ 2 मिनट इसे कीजिए तो 24 घंटों में से तो मुझे लगता है कि 10 मिनट हम अपने आप के लिए निकाल ही सकते हैं दोस्तों। क्यों, क्या कहते हो? हमारे फोकस को ये इतना बढ़ा देगा कि हमारी जो रील स्क्रॉल करना जो है, हम इसे भूल कर अपने काम पर ध्यान लगा पाएंगे। और ये वाकई बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर बच्चे को, हर युवा को योग से जुड़ना चाहिए, ताकि हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी हैबिट्स हैं जो हम रीबिल्ड कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं और पॉजिटिवली कुछ नया सीख सकते हैं। तो आज ही से ट्राई कीजिए दोस्तों। मुझे लगता है कि हमें योग का महत्व जानना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब हम योग के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आलस आता है कि कौन करे, इतना स्लो प्रोसेस है, कौन करेगा रोज़ सुबह सुबह उठ के। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा थोड़ा रोज़ 5 से 6 आसन रोज़ सुबह ट्राई करेंगे, रोज़ रोज़ इसे अपनी अपने लाइफस्टाइल में इसे अपनाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो जो है हमें लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और वैसे भी दोस्तों, हम योग दिवस मनाने जा रहे हैं 21 जून को, और इसे मनाने की ज़रूरत भी इसीलिए है ताकि हम अवेयर कर सकें हमारे आसपास के लोगों को भी कि इसका महत्व जो है वो आज की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये समझने की ज़रूरत है हमारे सभी दोस्तों को कि ये कोई बोरिंग काम नहीं है, ये खुद को जानने का सबसे कूल तरीका है। तो सिर्फ अगर 10 से 15 मिनट प्राणायाम या हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग,

की पावर है वो भी बढ़ जाती है और स्किन ग्लो भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम हमारे लिए क्या इतना वक्त निकाल सकते हैं, 24 घंटों में से क्या हम अपने लिए 10 से 20 मिनट निकाल सकते हैं। तो ज़रूर सोचिए इस बारे में, गौर फरमाइए। और यहाँ पर हम लेते हैं म्यूजिकल कम कमर्शियल ब्रेक। ये जो गाना अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। आप इस गाने को सुन करके, इसके ऊपर डांस करके, जुम्बा करके अपनी बॉडी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, क्योंकि गाना कुछ ऐसा ही संदेश लेकर आ रहा है। आप सभी के रेडियो सेट्स पर डांस पे चांस, सुनिधि चौहान और लाभ चंजुआ की आवाज़ों में।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: जी दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। जी हाँ, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं युव मंच। करे योग और रहे निरोग, ये नारा न केवल एक प्रेरक वाक्य है दोस्तों, बल्कि एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली का आधार है। भारत के प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग आज विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुका है। ये न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, बल्कि मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करना योग की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है दोस्तों। और इस निबंध में आज इस संदर्भ में योग के महत्व और उसके लाभ को जो है वो लोगों के बीच में उसका प्रचार प्रसार करना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता पर विचार करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो दोस्तों, आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव और चिंता मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल रही है। योग ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से मन को शांत करता है, तनाव को कम करता है। और वैसे भी दोस्तों, ये अध्ययनों से भी पता चला है, रिसर्च से पता चला है कि जो तनाव के हार्मोन्स होते हैं, योग कॉर्टिसोल होते हैं, उनका स्तर को ये कम करता है, जिससे चिंता और अवसाद में कमी आती है। माइंडफुलनेस आधारित योग प्रथाएँ जो हैं वो आज के जीवन में नकारात्मक विचारों से हमें दूर रखती हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं, एकाग्रता को बढ़ाती हैं, कंसंट्रेशन हमारा इम्प्रूव करती हैं, भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल बैलेंस बहुत ज़रूरी है आज की जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए। तो विशेष रूप से युवाओं में जो करियर और सामाजिक दबाव से जूझ रहे हैं, योग मानसिक लचीलापन विकसित करने में सहायक है। तो योग केवल शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग है। व्यक्ति को स्वयं से जोड़ता है और उसे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। बहुत से धर्मों और विश्वासों के लोगों के लिए एक समान मंच प्रदान करता है, क्योंकि ये किसी विशेष धर्म से बंधा हुआ नहीं है। आध्यात्मिकता की अगर हम बात करें तो इसके माध्यम से योग सामाजिक सद्भाव और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। संवेदनशीलता जो लोगों में कम होती जा रही है उसको बढ़ावा देता है। ये व्यक्ति को न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सोचने के लिए प्रेरित करता है। कर्म योग और भक्ति योग जैसे मार्ग सामाजिक सेवा और निस्वार्थ भाव को प्रोत्साहित करते हैं, जो एक समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देते हैं। और जो आधुनिक जीवन की चुनौतियां हैं दोस्तों, तकनीकी व्यस्तता हो गई, हमारी सामाजिक अलगाव हो गया, लोगों से दूरी है, इम्बैलेंस है हमारी जीवन शैली में, योग को और अधिक प्रासंगिक बना देती है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के युग में लोग अक्सर अपने मन और शरीर से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं, तो योग उन्हें इस डिजिटल शोर से मुक्ति दिलाता है, आत्म जागरूकता को बढ़ाता है। कार्यस्थल पर योग की शुरुआत भी बढ़ रही है। कई कंपनीज, और आपने देखा होगा, जो कर्मचारियों के लिए योग सत्र जो है वो आयोजित कर रही हैं, उनकी उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। स्कूल्स में योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की मांग बढ़ रही है, ताकि बच्चों में कम उम्र से ही अच्छी आदतों का विकास हो सके। तो स्कूल्स में भी योग को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। योग की लोकप्रियता इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने में योग को अक्सर केवल शारीरिक व्यायाम के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसका समग्र दृष्टिकोण जो है उसे समझा जाता है। प्रशिक्षित योग शिक्षक जो हैं उनकी कमी और गलत योग प्रथाओं के कारण जो जोखिम है, और कुछ लोग, कुछ क्षेत्र जो हैं वो इससे वंचित भी हैं। तो

ज़्यादा से ज़्यादा योग की बात करें, खुद भी करें और औरों को भी समझाएं, क्योंकि करेंगे योग तो रहेंगे निरोग। तो दोस्तों, ये एक नारा नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है, इसलिए हमारे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक एकता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए और आधुनिक जीवन की जटिलताओं का सामना करने के लिए एक बहुत ही प्रभावी उपकरण, हमें योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और इसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। सरकार, समाज और व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास से हम एक स्वस्थ, संतुलित और समृद्ध विश्व का निर्माण कर सकते हैं। योग के माध्यम से हम न केवल अपने शरीर और मन को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहाँ शांति हो, सद्भाव और शांति जो है वो सर्वोपरि हो। तो करें निरोग, रहें निरोग, करें योग, रहें निरोग। इसी के साथ, इसी नोट के साथ अपनी रेडियो दोस्त मधु को आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम आप सुन रहे थे युवमंच।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युव मंच. आपने ट्यून किया FM हमीरपुर आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर. 6 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से, और उसके बाद लौट कर आएंगे आप सभी के रेडियो सेट्स पर लेकर कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने. आपको बता दें दोस्तों 7:10 पर आप सुनेंगे भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के पर विशेष कार्यक्रम साइंस एंड टेक, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा.

रात्रि 10 बजे सुनिएगा खेल जगत कार्यक्रम और 10:30 पर चांदनी रातें। देर रात 11 बजे हिंदी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी हमीरपुर, आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति।

0: सके। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व भाजपा सरकार, खासकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को जिम्मेवार ठहराया है। हर्षवर्धन चौहान ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को आरडीजी के रूप में 5 सालों में 70,000 करोड़ रुपए मिले, लेकिन उसने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। यही नहीं, पूर्व भाजपा सरकार ने आय के संसाधन जुटाने की भी कोशिश नहीं की। इसके विपरीत तत्कालीन जयराम ठाकुर सरकार मौजूदा सरकार पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर चली गई। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश का सारा वित्तीय सिस्टम गड़बड़ा गया है और अब मौजूदा सरकार इसे ठीक करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की देनदारियां चरणबद्ध ढंग से दे रही है, लेकिन भाजपा सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रही है।
1: जो हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हालत हुई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार। सबसे पहले तो जयराम जी और इनकी जो सरकार 5 साल रही है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हमारी सरकार कोशिश करेगी रेवेन्यू जनरेट हो, जो ये पिछली लाइबिलिटीज है, जो कर्मचारी के एरियर्स है, पेंशन की, मेडिकल रिइम्बर्समेंट है और चीजें, वो हम देने की कोशिश सरकार कर रही है और बहुत हद तक जो है इसको दिया भी गया है। बीजेपी तो राजनीति करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रही है।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता नीरज भारती ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों से सरकार का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने आज शिमला में कहा कि नीरज भारती के आरोपों ने साबित कर दिया है कि सरकार में लंबे समय से भ्रष्टाचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकाय चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि जनादेश सरकार के खिलाफ है और आने वाले समय में जनता कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। जयराम ठाकुर ने सरकार द्वारा पहले सैलरी डेफर करने और इस फैसले को वापस लिए जाने पर कहा कि सरकार ने यह फैसला बिना सोचे समझे लिया था। इस बीच जिला परिषद के चमियाना वार्ड से रिकॉर्ड मतों से जीते खुश विक्रम सेन ने आज शिमला में जयराम ठाकुर से अपने कार्यकर्ताओं सहित भेंट की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार से हिमाचल को सिर्फ केंद्रीय योजनाओं के हिस्से के तौर पर ही पैसा मिल रहा है और राज्य को किसी प्रकार की विशेष आर्थिक सहायता नहीं मिली है। विनय कुमार ने आज शिमला में कहा कि आरडीजी बंद होने से हिमाचल की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में अपने सभी दायित्वों को पूरा कर रही है और सभी कर्मचारियों की देनदारियों को चरणबद्ध ढंग से दिया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से आग्रह किया कि वो प्रदेश हित में केंद्र से हिमाचल को विशेष आर्थिक मदद दिलवाएं और आरडीजी को भी बहाल करवाएं। कुल्लू जिला प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिगत रामपुर जल विद्युत परियोजना के संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के ड्रोन अथवा यूएवी के संचालन और उड़ान पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। कुल्लू के उपायुक्त अनुराग शर्मा ने कहा कि पावर हाउस, स्विचयार्ड, सुरंगों, ट्रांसमिशन सुविधाओं और अन्य संबंध प्रतिष्ठानों के ऊपर ड्रोन का अनाधिकृत संचालन सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और परियोजना की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: FM हमीरपुर 101.8 MHz पर 6:05 हुए हैं और हम आपके रेडियो सेट्स पर लेकर आ चुके हैं कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। आप सभी दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए मधु का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, घड़ी खमा दुआ वणकम प्रणाम, शुभ संध्या।

जी दोस्तों, जिंदगी भाग दौड़ भरी जिंदगी, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि हम ट्रैप हो चुके हैं, जिंदगी के अपने ही जाल में फंस चुके हैं। कभी कभी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? लेकिन हम कनेक्टेड फील कर सकते हैं ऊपर वाले से, जिसने हमें खूबसूरत से जिंदगी बख्शी है, खूबसूरत से नेमत है ये जिंदगी, बहुत कुछ सिखाती हुई हमें आगे बढ़ाती हुई, हर पल नई सीख देती हुई, बहुत सारे सरप्राइजेस लेकर आती हुई। क्योंकि सुख और दुख हमारी जिंदगी के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों। हम दुख के बिना सुख की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हर रात के बाद सुबह का आना निश्चित है। चलिए सुनते हैं खूबसूरत संगीत आप सभी के रेडियो सेट्स पर आ रहा है आज के इस कार्यक्रम की पहली पेशकश।

0: एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जिंदगी किताब जैसी है दोस्तों, हर पल उसका नया पन्ना पलटता है, कभी खुशियों की स्याही कभी गमों की दास्तान लिखता है। जिंदगी की राह में हर कोई खो जाता है, कभी खुशी तो कभी गम पा ही जाता है। और अगर खुद से प्यार करना हमने सीख लिया तो हर दर्द हर गम हल्का हो जाता है। बिल्कुल इस खूबसूरत से जिंदगी का लुत्फ लीजिए और इस गाने का भी। खूबसूरत आवाज़ है कमल खान की, प्यार किया तो डरना क्या फिल्म से।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सफर सुहाने, गाने नए पुराने, आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत सी जिंदगी की जो ऊपर वाले ने हमें बख्शी है, तो बिल्कुल उसका सम्मान कीजिए और उसके हर पल को महसूस कीजिए। और कभी निराशा हो भी जाए तो हमें ये सोचना चाहिए कि वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, वो गुज़र ही जाता है। जी हाँ, इसकी यही खासियत है कि ये गुज़र ही जाता है। चलिए, आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आप सभी के रेडियो सच में।

तो दोस्तों के साथ अब अपने रेडियो दोस्त मधु को आज का ये प्रोग्राम यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। अपनी ट्यून के FM हमीरपुर आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 101.8 MHz पर 6:30 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले असंदे सारे ही किसान कने बागवान भाई भैन जो तिना दी अपनी किसान दोस्त लाजो दा कने मेरे सौगी
3: मंगला दा प्यार भरा
2: नमस्कार। राम राम जी। किसान कने बागवान भाई भैनों, दिखा भाई अपने टाइमां दे अनुसार, अपने मौसमां दे अनुसार अहां सारे ही किसान जी इसे अपने कम्मां कारां लगदे हन। कने मंगलां दा भी सारा कम्मकार जी असे ठीक ठाक चली दा होना।
3: ओ मेरा कम्मकार तां ठीक चली दा ना, पर तू मिंजो ए दस बे ठीक उती तू मिए जमाने बाद मिली।
2: दिख गर्मी बड़ी है, धुप्पे बड़े हो आदे
3: ताने निकल आदे।
2: हां संजा प्यागा जी असे अपनी खेती बाड़ी दिखनी, कने दोपहर खजे असे अपने घर दा काम जी असे नबेड़ने च लगी रह दे ना।
3: खरा खरा जो अड़गे
2: कदी कदी चल मिलना मलाना भी हो जांदा है।
3: हां मैं सच गलाया ना, धुप्पे तो बड़े भारी है। कने अगर जे अज के दिन दे तापमान दी गल बात करिए ना, तो मिए दिन ज्यादा से ज्यादा रही 34 डिग्री सेल्सियस ना। कने संजा पे घट घट 21 डिग्री सेल्सियस।
2: हां
3: तो फिर अपू हिसाब लाई ले बे, गर्मी जैसे खरी हुई दी, कने दिन जैसे बाहर निकली नहीं होदा भी। आ
2: बिल्कुल ठीक गलाया, पर आप ही निकलना पौना, कने अपने कामकार जी इतना जो निपटाना पौना।
3: बिल्कुल।
2: कने जेडी जी जानकारियां कुति ते अहां जो मिलो ना, तिना जो लई कने तिना जानकारियां दा सं जो फायदा भी लई लेना चाहिदा।
3: बिल्कुल। कने ऊन जेड़ी अहां अपने सुनने वाले ने गलबात सांझा करनी सह करनी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना दे बारे ची।
2: हाँ बिल्कुल भाई मंगला, दिख इहा योजना दा ए उद्देश्य आ कि जेड़े जी 100 आकांक्षी कृषि जिले, यानी कि जिन्हां दी उत्पादकता घटी तिन्हां दी कृषि उत्पादकता जो बढ़ाना।
3: बिल्कुल। कने किसाना दी आय विच सुधार करना।
2: बिल्कुल।
3: कने मी यह योजना चलाने दा ना सरकारा दा ए उद्देश्य है ना। यह योजना दे माध्यम ते जे असे 6 वर्षां ताएं भारी बजट जे असे खर्च कित्या जादा, कने इस दा लगभग 40% सब्सिडी, 30% बुनियादी ढांचा, कने 20% ऋण, कने 10% प्रशिक्षण ताए जैसे बंडी थी दावी है।
2: बिल्कुल ठीक गला दे पाईया। कने जेड़े जहां दे किसान हैं तिना जो आधुनिक उपकरण भी होइगे या फिर उन्नत तकनीक जी ऐसे उपलब्ध कराई करने जी ऐसे तिनों लंबे टाइम तक सहायता दिती जा दी।
3: सच गला है मी एक दिखना बे यह योजना दा जो जरूर फायदा लेना चाहिंदा, कने फायदा दिख इंजन नहीं मिलना भी आ, थोड़े बहुत अड़ गुड़े जैसे अपने भी लगाना पौने भी।
2: हाँ।
3: पहले जाने यह योजना ने जुड़ना पौना, कने जुड़ने ताए जे ऐसे ऑनलाइन या ऑफलाइन बे आवेदन करना पौना।
2: और बड़ी फायदे वाली चीज है।
3: हाँ।
2: दिख जेड़ा जे जो कटाई है ते बाद भी कोई नुकसान होए ना।
3: हाँ।
2: तती जो रोकने दे ताई पंचायती या फिर ब्लॉक स्तर पर जी ऐसे भंडारण क्षमता या फिर कोल्ड स्टोर जी तिना दा विस्तार कित्या जादा।
3: बिल्कुल। ते ए सारी सुविधाएं जे इसे सरकार दे पासे ते यह योजना दे माध्यम ते जे इसे दित्ती जादी भी, तद ए भी जड़ जे इच्छुक आदमी है ना से यह योजना ने जुड़ी सकदा, कने फायदा ले सकदा भी।
2: और मंगला इच्छा कहनी होनी, दिख इस ते जी आसे जेड़े जी रासायनिक उर्वर के तिना दी निर्भरता जी से घट होनी, कने प्राकृतिक और जैविक जी आ तिस जो बढ़ावा मिला दा जिस ते क्यों दा आहां दी मिट्टी जी तिहा दी सेहत जी से बरकरार रहंदी, यानी कि आहां दी मिट्टी जी तिहा दी उर्वर क्षमता जी से बणी दी रहनी।
3: सच गला बो तो दिख ए तो गलबात हुई योजना दे बारे च ना, कने ऊन हां कार्यक्रम विच सुनना एक लोक गीत
2: जी।

0: ने लोक जुड़े प्राकृतिक खेतिया ने
1: जी जी
0: इन्हें वास्ते भी विभाग ने बड़ा अच्छा एक जीवामृत जो रखने वास्ते बनाने वास्ते एक एक प्लास्टिक का ड्रम जो सारे लोगों जो दिता से ताकि से अपनी खाद जी तो से अपने घरें पर तैयार करी लैन। मतलब
1: अच्छा।
0: ये वो फायदा मिलया। इसके बाद फिर यहाँ जो तिने अच्छे अच्छे बीज दिते लिया इन्हें भी
1: जी
0: तुसा इन्हें जो लाइना च बवा क्योंकि जेड़ी जो प्राकृतिक खेती है ते पहले जे अहे खेती करा थे ता अहे सिर्फ तिने जे मतलब छली बाणी ता हाँ छलियां गास थे जे कणक बाणी ता कणक बाई देनी खेतां च
1: जी
0: कन्ने मतलब सिंगल कली फसला गास अहे काम करा थे मतलब।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन इस चीज जुड़ने के बाद क्या होया भी यहाँ ये जड़ी ये छलियां बाणिया तो छलियां कन्ने यहाँ सोयाबीन कन्ने माह शुरू किते बाणे से मतलब दाली वाली फसल
1: यानी कि जिन्हें पहले रोंग भी बाई दिंदे
0: रोंग भी
1: थे।
0: बाई है इन्हें च रोंग भी बाह दे से सोयाबीन भी बाह दे फिर अपना माह भी बाह दे हूं तो कुल्थ भी बाह दे थोड़ा थोड़ा मतलब पिछले जे हरे सियाने करा थे कम सह ही खेती यहाँ दोबारा शुरू की मतलब एड़ा बोली सका है से था इस प्रति खेती है जो था।
1: बिल्कुल।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: जिंगे जे तुम जो इतने सारे फायदे मिले भी है तो फिर जिंगे कोई और भी मतलब सरकारा दे पासे ते केड़ा दे या कदम रिया तिस दे तुम जो फायदा मिले हो जे
0: इसके
1: सहायता
0: बाद
1: मिली।
0: जिया जी अहां दा सरकार दी तरफा ते अहां केंद्र सरकार दा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद करा है अहां दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन तिना ने शुरू किया था ये सेंटर दी तरफा ते तो तिस कने कने तिने तिया जे सौगी अहां दी किसान सम्मान निधि हुई फिर 2023 तिने मोटे अनाजा पर जेड़ियां जो है पौष्टिक अनाज मंडल कोंगणी बाजरा स्योल ये जी यहाँ दे ये सारे जी पौष्टिक अनाजा च तिना जो जो है मोटे अनाज बुलाए तो ये हरे सियाने खां थे ना चीजा जो कि अपने
1: जी
0: खेतों च बां थे लेकिन अहे सारे भुली गए थे। तो आ प्रधानमंत्री हो रहा 2023 जो है वो मोटे अनाजा का इस जो ईयर दिता गया नाम दिता गया तो तीस चाह जो इन्हारी पहचान हुई अहे आस्ता आस्ता हूँ अपने खेतों च जे तो मंडल भी बाह दे सौंक बाह दे कोंगणी बाह दे स्योल बाह दे तब से तीन जो है खा दे भी है फिर प्रधानमंत्री और ये तरफ आते यहाँ जो जिया जे किसान सम्मान निधि होगी मोटे अनाजा का अहम जो जानकारी होगी फिर प्राकृतिक खेती मिशन जो है सब इन्होंने शुरू किया ये सारे फायदे जी अहम जो केंद्र सरकार तरफ आते बड़े अच्छे कामयाब सिद्ध होए इतनी अहम हिमाचल।
1: बिल्कुल बे जिंगे जहाँ दे सियाने काम कार करते हैं मोटे अनाजा के बारे भी चिकन है शरीर ताएं भी अच्छे होंगे है स्वास्थ्य वर्धक भी ये दूजे पास से सरकारें यदि पहल की तो आज एक प्रोत्साहन भी मिले भी पर ये जो तुम दस्या जिंगे जो प्रकृतिक खेती के बारे भी केड़ी जी शुरुआत की जिस चीज तुम जो भी फायदा होया।
0: इस चाह का यह फायदा होया भी जियां जैसे गाय ली आए अपने गाँव च शुरू काम किया तो हरे लगभग इस वक्त जे है ना टोटल हरे गाँव च 62 परिवार है तो
1: जी
0: तिना चाहते 58 परिवार जे से प्राकृतिक खेती ने जुड़ी रहे
1: जी
0: तो तिना च क्या है कि अब सरकार बोले भी 21 गाँव ते छड़ी ने ये अहाँ हरेक गाँव च खेती जी तो शुरू करनी मत तो इस करी ने सरकार का ये मेन उद्देश्य है भी सारे लोग जे तो तिना जो प्राकृतिक खेती ने जोड़ना। लेकिन इस च क्या समस्या आई भी जिया जी अब बिच सारे खेती नहीं कर सकते भी ये दिखा
1: जी जी
0: ता जेड़े जे खादियां वाले खेती करें लोग तीन जे खेतर एक बार बाई त्या एक बारी तीस जो जेड़ी जे अंग्रेजी
1: रासायनिक
0: खाद
1: तरीक
0: दे दी
1: हाँ
0: तब फिर यहाँ लुणने ही जाना।
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: प्राकृतिक खेती च थोड़ा जा हटीने आ काम
1: जी
0: पे यहाँ एक ता ये लाइना च बिजाई करनी जे अहाँ छट्टा भी लगाई त्या तो अहाँ सिंगल फसल कोई नहीं लगानी मिक्स फसल लगानियाँ
1: अच्छा
0: एक ता काम ये आ। दूजा यह भी इस बिच अहाँ स्प्रे कोई नहीं करना कैमिकल का तो अपने अहाँ जो अहाँ दा जेड़े जे खड़पतवार असें अहाँ जो हत्था ने ही निकालना पौना भी आ या
1: जी
0: तीस बिच एक अहाँ दा आच्छादन विधि आई तीस जे अहाँ दे जितने भी अहाँ दे पेड़ पौधे दे सुके पत्ते हैं सुकी घा है तेना जो बिछाई देंदे अपने खेतों च नालियां बनाई ने और
1: परत
0: तीसो
1: बनाई ने
0: परत बनाए ने तीसो
1: जी
0: ये आच्छादन बोलते हैं तीसते क्या वहां पे यहाँ का घा भी घट जमा मतलब अहरी फसल जी है तैयार रह जाए कने थोड़ा क्या वहां तीस भी मते दिनों तक अगर जी एक बारिश हो जाए तो सह लगभग काफी दिनों तक तीस थलें फिर यहाँ की नमी रही अहरी फसल जो सह पानी की मात्रा जी तीस ते पूरी कराई सह कने अगलिया फसल जो क्या वहां पे सह पत्ते जी अहाँ दे सारे से एक खाद का रूप धारण करी लें कने अहाँ का मिट्टी जी से बिल्कुल उपजाऊ हो जाए तो तीसो है बोले प्राकृतिक खेती च एक आच्छादन की विधि।
1: गलाने दे मतलब है कि अगर जे सिंचाई दी सुविधा ती अभी घट बाद उपलब्ध हो ता आच्छादन विधि दे माध्यम ते जे अभी है आहा अपनी फसलां जे से उगाई सकदे भी।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। और इस बिच जेड़ा जे अगला सरकार दा एक अहम जो तीस जो फायदा मिलया काफी अच्छा सह ये था अब ये सारी गल्लां जे ही तो हर कोई यह खेती है जो नहीं कर सकता था क्योंकि
1: जी

अभी आप सुन रहे थे किसान व बागवान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
1: हम अपने नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलों से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ओमान के अधिकारी राहत और आपातकालीन समन्वय के प्रयासों में जुटे हैं। टैंकर में आग लगने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। 8 जून को एमटी मारिवेक्स अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर आकाशवाणी में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में।
3: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं? क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: धन्यवाद आपका।
3: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
4: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूँ, मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला।

0: उनको बहुत बहुत बधाई।
1: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा हैं, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
0: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और यह भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा, अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी, चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है। और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
1: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं, अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
0: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूं, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा न चुनाव की बात, न मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
1: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
1: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
0: देखिए, एक तो संकट है
1: जिसको इतिहास याद रखेगा,
0: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि यह दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी, कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है, जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब किसान महिला नौजवान सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगी सरकार। मन के बहलाने
0: को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
0: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पकाओ, पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
0: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई। दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। CBI को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
0: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की, भरने की कोशिश की गई।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
0: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
1: नहीं, तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन को?
0: हकीकत तो ये जनता जान, देखिए हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, NDA शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं, लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
0: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूँ
1: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी। कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे, मतलब मैं तो कहूँगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है।

0: निरंतर काम राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या एलपीजी के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
0: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूँ तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
0: तत्काल ही देखिए, मैं तो उनके हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता है, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूँ, और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की, और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं। तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम 3 मंत्री एक साथ गए थे कार।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े लक्ष्य हमारे। एक, देश की खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित करना है। दूसरा, पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे AI के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
0: हमने अल नैनो की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये AI का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो AI के ऐसे अनेकों उपयोग है जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने AI के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया है। उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी, अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी AI की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे, इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहाँ पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहाँ कम संभावना है, कहाँ ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुदेव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
0: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश उसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूँ, जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूँ, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूँ। और वो चीज़ मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक, हम सबको भी एक सीख दी चरे वेती के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थीं रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
3: छब्बीस मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे

0: जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई, या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए, या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहाँ से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की, जिसपे हम काम कर रहे हैं, और वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा बेहतर हैं, उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सब को अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे, हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहाँ किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने अभी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे, और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे?
0: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा विहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पे रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेनजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं

0: रादर हम अपनी बात करें, अपने समय में हमें नहीं पता था। तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
1: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेज़ों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए। जैसे पोर्ट ब्लेयर था, जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के नेताजी के नाम से द्वीप हुआ। जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल हैं या जो पुरातत्व स्थल हैं, उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और ख़ासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं, और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ ARVR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारे यूथ हैं, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं, वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूज़ियम स्थापित हो रहा है। ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी। तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
0: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेंजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी, और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम वंचित थे। और आज जब आप इस दौर में हैं, संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खास कर जब भारत की वो पुरानी धरोहर हैं, वो मूर्तियाँ, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं, तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
1: देखिए, एक मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं, तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है बल्कि भारत के सभी मिशन्स, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशन्स, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहाँ भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
0: सर एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेंजी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं की लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारी दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं, और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करें, बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे, और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे, और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस ओर हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमेटिकली हम काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
0: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM 91.8 MHz पर। 7:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से।
4: माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े,
5: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
4: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
5: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
4: जानकारी लें, अधिकार जाने,
5: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है, और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
7: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है, और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
6: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
8: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उठाए हिमाचल के हित के मुद्दे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल से प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर, विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। उद्योग मंत्री हर्ष

0: हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेवार और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा नीरज भारती के आरोपों से उजागर हुआ सरकार का भ्रष्टाचार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में आरडीजी सहित हिमाचल के हितों के मुद्दे उठाए। उन्होंने प्रदेश के सामने मौजूद वित्तीय चुनौतियों के समाधान के लिए प्रधानमंत्री से एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने आरडीजी बंद होने के बाद प्रदेश को दिए गए 25,000 करोड़ रुपए की राशि को नाकाफी करार दिया और विकास गतिविधियों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए इस राशि को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्वास के विकास के 12 वर्ष गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल 12 व 13 जून को शिमला के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने कहा कि 12 जून को नड्डा शिमला में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। इसके अलावा वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में समाज के विभिन्न वर्गों को संबोधित करेंगे। ईरान के हॉर्मुज जलडमरू में एक भारतीय तेल टैंकर पर हुए अमेरिकी हमले में हमीरपुर जिला के गलोड़ के रहने वाले नाविक आदित्य शर्मा की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आदित्य शर्मा की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन को पीड़ित परिवार को हर मुमकिन सहायता देने के निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर ने भी आदित्य शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। सोलन जिला में जनगणना के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर है। जनगणना निदेशक दीप शिखा की अध्यक्षता में आज सोलन में कर्मचारियों को जनगणना का प्रशिक्षण दिया गया और इस कार्य की बारीकियों से अवगत करवाया गया। दीप शिखा ने इस मौके पर कहा कि जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। इन दिनों स्वगणना का कार्य चल रहा है।
1: फर्स्ट फेज जो है वो 16 जून से 15 जुलाई के बीच में चल रहा है और हमारा इसमें स्वगणना का प्रावधान भी रखा गया है जिसके अंतर्गत की कोई भी जो हमारा जनमानस है आम जनता है वो स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in पे जाके उस पे FAQs दिए हैं उसको पढ़ सकते हैं और अपनी मोबाइल नंबर के थ्रू उसमें एंटर करके अपनी लोकेशन मार करके 33 जो प्रश्न है आधिकारिक रूप से उनके आंसर भर सकते हैं पोर्टल पे। तदुपरांत उनको एक सेल्फ इन्यूमरेशन ID जनरेट होगा जिसको की प्रगणक जब हमारे 16 जून से 15 जुलाई के बीच में आएंगे तो उनके साथ शेयर करेंगे और फाइनली वो उसको एक बार वेरीफाई करके पोर्टल पे सबमिट करें। पूरे हिमाचल में हमारे करीबन 18,600 के करीब करीब जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं उनकी ड्यूटी लगी है।
0: स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधारीकरण की दिशा में बेहतर कार्य कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री आज शिमला में अटल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल चमियाना में रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में रोगी कल्याण समिति के 2026-27 की अनुमानित आय और व्यय के अनुमानों को मंजूरी दी गई। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसके तहत सरकार गांवों के द्वार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों को घर द्वार पर उनकी समस्याओं का समाधान मिल सके। जगत सिंह नेगी ने आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निचार में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को संबोधित किया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं।

0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व भाजपा सरकार, खासकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को जिम्मेवार ठहराया है। हर्षवर्धन चौहान ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को आरडीजी के रूप में 5 सालों में 70,000 करोड़ रुपए मिले, लेकिन उसने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अब मौजूदा सरकार इसे ठीक करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की देनदारियां चरणबद्ध ढंग से दे रही है, लेकिन भाजपा सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रही है।
1: जो हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हालत हुई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार। सबसे पहले तो जयराम जी और इनकी जो सरकार 5 साल रही है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हमारी सरकार कोशिश करेगी रेवेन्यू जनरेट हो, जो ये पिछली लाइबिलिटीज है, जो कर्मचारी के एरियर्स है, पेंशन की, मेडिकल रिइम्बर्समेंट है और चीजें, वो हम देने की कोशिश सरकार कर रही है और बहुत हद तक जो है इसको दिया भी गया है। बीजेपी तो राजनीति करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रही है।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि पूर्व कांग्रेस नेता नीरज भारती ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों से सरकार का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने आज शिमला में कहा कि नीरज भारती के आरोपों ने साबित कर दिया है कि सरकार ने लंबे समय से भ्रष्टाचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकाय चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि जनादेश सरकार के खिलाफ है और आने वाले समय में जनता कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। जयराम ठाकुर ने सरकार द्वारा पहले सैलरी डेफर करने और इस फैसले को वापस लिए जाने पर कहा कि सरकार ने यह फैसला बिना सोचे समझे लिया था। इस बीच जिला परिषद के चमियाणा वार्ड से रिकॉर्ड मतों से जीते खुश विक्रम सेन ने आज शिमला में जयराम ठाकुर से अपने कार्यकर्ताओं सहित भेंट की। डॉक्टर प्रेमलाल गौतम को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। डॉक्टर प्रेमलाल गौतम बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। वे कृषि वैज्ञानिक हैं और उन्हें इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौतम ने देश का प्लांट जर्मप्लाज्म रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क शुरू किया है। वे बिलासपुर जिला से संबंध रखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज चंबा जिला की तीसा उपमंडी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। पठानिया ने इस मौके पर कहा कि इस उपमंडी के शुरू हो जाने से क्षेत्र के किसानों और बागवानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए अब घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष दिलदार अली बट ने इस मौके पर जिले के सभी किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने और सरकार द्वारा दिए जा रहे समर्थन मूल्य का लाभ उठाने की अपील की। पंचायत समिति जुब्बल के आज संपन्न चुनाव में कांग्रेस समर्थित कमलेश झगता को अध्यक्ष और लोकपाल शरखोली को उपाध्यक्ष चुना गया। ये चुनाव निर्विरोध हुए। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने गुणात्मक स्कूल शिक्षा के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। धर्माणी आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डंगार में विद्यार्थियों के साथ संवाद कर रहे थे। इस दौरान विद्यार्थियों ने मंत्री से भी प्रश्न पूछे। धर्माणी ने बाद में एम्स बिलासपुर का दौरा भी किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार एम्स की आपात सेतु पहल को प्रदेश भर में लागू करने का प्रयास कर रही है ताकि आपात स्थिति में मरीज को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार से हिमाचल को सिर्फ केंद्रीय योजनाओं के हिस्से के तौर पर ही पैसा मिल रहा है और राज्य को किसी प्रकार की विशेष आर्थिक सहायता नहीं मिली है। विनय कुमार ने आज शिमला में कहा कि आरडीजी बंद होने से हिमाचल की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में अपने सभी दायित्वों को पूरा कर रही है और सभी कर्मचारियों की देनदारियों को चरणबद्ध ढंग से दिया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से आग्रह किया कि वो प्रदेश हित में केंद्र से हिमाचल को विशेष आर्थिक मदद दिलवाएं और आरडीजी को भी बहाल करवाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उठाए हिमाचल के हित के मुद्दे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर, विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेवार और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा नीरज भारती के आरोपों से उजागर हुआ सरकार का भ्रष्टाचार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर।
3: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
4: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
5: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
7: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
6: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
8: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
6: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
8: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
6: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
7: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
6: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
8: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
6: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
8: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
6: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजे हैं, अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

0: आनंद।
1: हेलो नीरजा, आज कैसे भूल पड़ी?
0: भूलती ही कब हूँ, हर पल तो आके तुम्हें ही खोजा करती हूँ। न जाने तुम्हारी सांवली सलोनी सूरत में कैसा आकर्षण है कि सासों की बंसी तुम्हारे ही नाम को तैरती रहती है।
1: बस बहने लगी ना भावलोक में।
0: सुनो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत रिंग खरीदी है, देखो। सुनो, आज शाम पिक्चर देखने चलोगे?
1: मेरा आज तो आर्ट्स फैकल्टी में लेक्चर है।
2: ओ डार्लिंग, तुम तो हर समय व्यस्त रहते हो, मेरा जरा भी ख्याल नहीं। मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचती हूँ, कितने सपने सजाती हूँ, पर तुम पर कोई असर नहीं होता। The pain of loving you is almost more than I can bear.
1: मुझे देर हो रही है, तुम्हें कोई खास बात करनी है?
0: कहने को तो बहुत कुछ है ना। कल रात मैंने एक सपना देखा, तुम गुलाब का एक फूल लाए हो और चुपके से मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। कहने लगे, नीरजा ये फूल तुम्हारे बालों में लगा दूं? सच, उस समय मैं कितनी खुश थी, जैसे फूल पत्ती के प्रेम पर जिंदा रहता है ना, बस ऐसे ही मैं तुम्हारी। काश ये सपना असली होता।
1: सपना वही देखते हैं जो अपने प्यार को हासिल नहीं कर पाते।
0: गलत, जो जिसे प्रेम करता है वही उसका सपना देखता है।
1: ये जानते हुए भी तुम मुझसे प्रेम करती हो?
0: ये भी कोई पूछने की बात है?
1: तुम्हें गलत फहमी।
0: मुझे वो भी प्रिय है क्योंकि वो तुम्हारी ही दी हुई है।
1: ये तुम्हारे अनुराग की चरम सीमा है नीरजा, जो सत्य को जानते हुए भी तुम अनंत की ओर बढ़ रही हो।
0: क्या करूं, अनंत पद कामी जो ठहरी।
1: तुम्हें समझाना मुश्किल है।
0: एक बात मानोगे?
1: क्या?
0: कल शाम हमारे कॉलेज के सालाना जलसे में मेरा डांस का प्रोग्राम है, आओगे ना?
1: कल तो मैं बहुत बिजी हूँ।
0: प्लीज, कैसे भी आइए।
1: देखो मैं मजबूर हूँ। ओके, फिर मिलेंगे।
0: निष्ठुर। अरे हाय, सुनिए तो आनंद जी, दिल तोड़ दिया बिचारी का। दर्शन के प्यासे दो लोचन, बिन देखे अकुलाते, हर सिंगार के फूल से सपने पलछिन में मुरझाते।
3: देख झरना, मुझे तंग मत कर, मेरा दिल पहले ही बहुत दुखी है,
0: इसीलिए तो कहती हूँ प्रीत किए दुख होए।
3: दुख हो या सुख, मुझे अनंत से प्रेम है।
0: बस जब देखो अनंत अनंत अनंत, इसका कोई अंत भी है? जब उसे तेरी कोई चिंता नहीं तो तू उसके लिए क्यों इतनी व्याकुल रहती है? नहीं मानता तो सब्स्टिट्यूट कर दो।
3: कब तक नहीं मानेगा, मैं इंतजार कर सकती हूँ।
0: अगर उसने शादी से इनकार कर दिया तो?
3: ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपने प्रेम पर भरोसा है। मैं अपनी पूजा भक्ति और लगन से उसे जीत लूंगी। अगर मेरे प्रेम में सच्चाई है तो उसे एक दिन बदलना ही पड़ेगा।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहला प्रेम है ना, पर ज्यादा भरोसा मत करना।
3: तू नहीं जानती झरना, पहला प्रेम गले में बंधी उस घंटी की तरह होता है जो बस हर समय कानों में बजती ही रहती है।
0: तुम घंटी बजाओ और वेटर को बुलाओ।
3: अरे मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम कुछ लोगी?
0: कुछ नहीं, बस मुझे घर तक लिफ्ट दे देना।
3: अच्छा आओ चले।
4: नीरा जी।
0: कौन है?
4: वही आपका रोमियो।
0: ओ आप, क्या कहना चाहते हैं?
4: कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर यह कमबख्त दिल कुछ धड़कता सा है। सच तो यह है कि जब आपसे बातें करता हूँ तो सब कुछ फूल सा जाता हूँ और कुछ भी याद नहीं रहता कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ।
0: मिस्टर रूप, मालूम होता है आजकल आप बहुत फिल्में देखने लगे हैं।
4: करेक्ट, पर ये मेरे दिल की फिल्म है जिसे सिर्फ आप ही अपने मन की आंखों से देख सकती हैं। आप ही मेरे सपनों को साकार कर सकती हैं। क्या आपको मुझसे प्रेम नहीं है?
0: मित्रता का अर्थ प्रेम नहीं होता मिस्टर रूप, मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं कुछ हद तक आपको पसंद भी करती हूँ, पर प्रेम नहीं।
4: पसंद और प्रेम दोनों में थोड़ा ही फासला होता है। पसंद का दूसरा नाम ही कशिश है, और जहाँ कशिश है वहीं मोहब्बत है।
0: ये आपका फलसफा हो सकता है
4: मगर सच
0: नहीं, एकदम गलत। मुझे आपसे प्रेम नहीं है।
4: कल शाम मिलोगी? नहीं,
0: मेरा डांस का प्रोग्राम है। सॉरी, अब आप जा सकते हैं।
4: हाय, किस बुत की मोहब्बत में गिरफ्तार हूं।

0: हेलो नीरजा,
1: तुम यहाँ भी?
0: जहाँ तुम वहाँ हम।
1: मेरा ख्याल छोड़ दो,
0: मैं तो बधाई देने आया हूँ।
1: किस बात की?
0: नृत्य की सफलता पर।
1: ओह धन्यवाद।
0: सुनिए, ये कुछ फूल आपके लिए लाया था।
1: ओह, मुझे देर हो रही है, चलो धरना। भी हो, रूप है दिलचस्प आदमी। तुझे बहुत पसंद है तो तू उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? अगर वो मुझे इतना चाहता जितना तुम्हें चाहता है तो जरूर कर लेती। क्या कमी है उसमें? हर बात में A1 है। A1 हो या टॉप ग्रेड, मुझे तनिक पसंद नहीं। मुझे तो उससे नफरत है। चलो नफरत ही सही, कुछ तो है तुम्हारे दिल में उसके लिए। बेचारा कितने अरमान रखता है। देख झरना, अगर तुझे रूप की तारीफ करनी है ना तो पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ, अनंत के घर बाद में जाऊंगी। अच्छा भाई, चुप हो गई। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर कौन करे? मैं मगर हूँ, यू सिली गर्ल। लो वो आ गया तुम्हारे चहेते का बंगला। रामू
2: जी,
1: अनंत बाबू हैं?
2: जी नहीं, और वो तो पिक्चर देखने गए।
1: अकेले?
2: जी नहीं, साथ में एक थी।
1: थी? नाम?
2: नाम तो मालूम नहीं, पर
1: ठीक है। अनंत जी आए तो कहना मैं आई थी।
2: जी अच्छा।
1: ओह छना, अब तुम गाड़ी ड्राइव करो, मेरा तो मूड एकदम ऑफ हो गया है।
3: और कहीं गाड़ी का मूड ऑफ हो गया तो
1: फिर मजाक।
3: वो तो मेरी आदत है। सच, तुम तो जरा सी बात पे नाराज हो जाती हो। अनंत से फोन करके पूछ लेना क्या बात है, हो सकता है नौकर को सही बात ना मालूम हो।
1: प्लीज झरना ड्राइव कर, मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ। अनंत, ये तुमने क्या किया? मेरी पूजा, मेरी आराधना, मेरा प्रेम क्षण भर में ठुकरा दिया। तुम नहीं जानते अनंत, नारी जीवन में सिर्फ एक पुरुष को ही प्रेम करती है, उसी को अपना इष्ट, अपना देवता मानती है। मैंने संपूर्ण निष्ठा से तुम्हें चाहा, तो समझ में नहीं आता कि तुम मुझसे क्यों रूट गए, क्यों रूट गए। शायद मुझ में ही कोई कमी थी जो मैं तुम्हें नहीं पा सके। पाना या न पाना तो भाग्य की बात है, पर तुम्हें बुला देना मेरे बस की बात नहीं।

0: नीरजा।
1: हेलो।
0: तुम अभी घर आई थी?
1: हाँ।
0: कोई खास बात?
1: वही तो मुझे पूछनी है।
0: कौन सी बात?
1: वही जो तुम बताना नहीं चाहते।
0: ऐसी तो कोई बात नहीं।
1: पिक्चर किसके साथ गई थी?
0: तो ये बात है।
1: कौन है वो लड़की?
0: मेरी मंगेतर।
1: तो मैं क्या थी अब तक?
0: एक मित्र।
1: तुमने मुझे धोखा दिया।
0: गलत।
1: तुम विश्वासघाती हो।
0: ये तुम्हारा भ्रम है।
1: सत्य को भ्रम देते हो?
0: नहीं, भ्रम है तुम्हारा। मैं पहले भी तुम्हारा एक मित्र था और आज भी एक मित्र हूं।
1: ठीक है, ठीक है, पर तुमने मुझसे पूछा तक नहीं, मुझे अंधेरे में क्यों रखा?
0: तुम कल्पना के पंखों पर उड़ती रही तो मैं क्या करता? मैंने कई बार तुम्हारी उपेक्षा भी की, पर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही। इसमें मेरा क्या दोष है?
1: तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया। आखिर आखिर मुझ में क्या कमी थी जो तुमने मुझे से शादी नहीं की?
0: जानना चाहती हो?
1: हाँ।
0: तुम अति आधुनिक और स्वच्छंद हो। पति को सिर्फ तुम एक बैनर समझती हो। मुझे घर से प्यार करने वाली पत्नी चाहिए नीरजा, फैशन की गुड़िया या मॉडल नहीं।
1: गलत है आनंद, गलत है। आई एम होम लविंग।
0: फिर तुम्हारा रूप से भी प्रेम है। राकेश के साथ भी मैंने तुम्हें कई बार घूमते देखा है।
1: वो तो सिर्फ मेरा एक मित्र है और कुछ भी नहीं।
0: मित्र है तो तुम्हारे चक्कर क्यों काटता है? तुम भी तो बहुत घुल मिल कर बातें करती हो उससे।
1: तुम्हें भ्रम है आनंद, भ्रम है। अगर मैंने किसी को चाहा है तो सिर्फ तुम्हें।
0: ये तुम्हारा ढोंग है।
1: शायद दुनिया से सच्चाई उठ गई है, वरना तुम कभी ऐसा नहीं कहते।
0: दुख का राग अलापने से सुख नहीं मिलता नीरजा। जीवन की राहें बहुत लंबी हैं। मैं तो चाहता हूं कि तुम किसी अच्छे युवक से विवाह कर लो और मुझे भूल जाओ सदा के लिए।
1: ये तुम कह रहे हो आनंद, तुम कह रहे हो। ठीक है, ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगी, ऐसा ही करूंगी।
0: सुनो तो नीरजा, नीरजा।

0: ओ नीरजा, आप और मेरे यहाँ, यकीन नहीं होता कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा।
1: जी नहीं, ये हकीकत है। तुम मुझे बहुत चाहते हो ना रूप।
0: जी
1: मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, उपेक्षा की, अपमान किया।
0: लेकिन
1: काश मुझे पहले मालूम होता कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मैं कभी तुम्हारा दिल ना दुखाती।
0: कुछ मेरी बात भी तो सुनिए।
1: मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। उस दिन कॉलेज के सालाना जलसे में तुम मुझे फूल देने आए थे और मैं ठुकरा कर चली गई थी। मुझे माफ कर दो रूप।
0: बस करो नीरजा, तुम कहना क्या चाहती हो।
1: मुझे तुमसे हमदर्दी है।
0: बस
1: मैं तुमसे प्रेम करती हूँ।
0: बस
1: मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ।
0: काश ये इरादा तुमने पहले कर लिया होता। अब बहुत देर हो चुकी है और मैं एक दूसरी लड़की से शादी कर रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी मिस नीरजा। अरे सुनिए सुनिए, तो मेरी शादी का कार्ड तो लेती जाइए।

हम सुन रहे थे ये गीत यंगिस्तान फिल्म से, अरिजीत सिंह की आवाज़ में। कौशर मुनीर ने इसे लिखा और जीत गांगुली ने इसे संगीतबद्ध किया।

0: हम सुन रहे थे पीके फिल्म का यह गीत, शान और श्रेया घोषाल ने इसे गाया, स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा और शांतनु मोइत्रा ने इसे संगीतबद्ध किया। सुनते हैं ये संदेश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुनीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक, और चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत, जो कि है फिल्म रिफ्यूजी से सोनू निगम अलका याग्निक की आवाजों में जावेद अख्तर के बोलों के साथ, अनु मलिक के संगीत के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

0: this is a beat. I know it's gotta be you, girl. You sweep me off my feet. Sweep me off my feet.
1: Girl, you sweep me off my
0: feet. And when the blood from my heart rushes into my brain, it sends a message to me to say you're driving me insane. You know you're driving me insane. Love gives your heart the power to open up and flower, coloring every hour with its refrain.
1: It's refrain.
2: हम सुन रहे थे यू मी और हम फिल्म का यह गीत श्रेया घोषाल की आवाज में. मुन्ना दीमान ने इसे लिखा और विशाल भरद्वाज ने इसे संगीतबद्ध किया है. आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम चित्रलोक का यह अंतिम गीत.

हम सुन रहे थे स्वदेश फिल्म का यह गीत ए आर रहमान की आवाज़ में, जावेद अख्तर के बोल और ए आर रहमान के संगीत के साथ। कार्यक्रम चित्रलोक यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर 8:45 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: हम अपने नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
4: The visit will provide an opportunity.
5: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
4: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि यह उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
6: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका

0: का सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है। कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, और हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए

हम सुन रहे थे उमराव जान फिल्म से तलत अज़ीज़ की आवाज़ में शहरयार के बोल और खयाम के संगीत से सजी हुई इस गज़ल को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए मैं आज की अंतिम गज़ल। मासूम फिल्म से है और अनूप घोषाल की आवाज़ है, गुलजार के बोल हैं और आर डी बर्मन का है संगीत।

0: छुपा के रखा था। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान।
1: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम आपके लिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोठे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मेरा जन्म भी बम्बई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौड़ जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज़्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज़ सुनी तो वो किसी साहस की सुनी, या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने, मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई हैं अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद, ही इज़ ऑल्सो प्रीमिक सिंगर, और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूज़िक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तो जब भी कोई स्कूल का फंक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो मुझे उसमें तबला बजाने के लिए कहते थे या गाने के लिए कहते थे।

0: पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, क्योंकि संगीत बहुत कम उम्र से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौर एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौर ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौर को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी, जिसमें रूप कुमार राठौर की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिली जैसे गुमराह, मोहब्बत की आरजू, तेजस्विनी और नाजायज, लेकिन रूप कुमार राठौड़ को असली कामयाबी मिली फिल्म बॉर्डर से।

पहला प्रोग्राम मुझे याद है, जैसे मैं 6 साल का था तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस एक गौला टैंक पे, एक हॉल है तेजपाल हॉल, वहाँ पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज़्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफ़ी म्यूजिशनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा, प्यार, और गाने बजाने की बातें ज़्यादा होती थी rather than gossip। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो आवाज़, जो तबले की जो पहली आवाज़ या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पर डाला कि अगर मैं रो रहा हूँ और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब घर पे आए और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज़ मुझे सुनाई दी और मेरी आँख खुल गई और मैं रोने लगा, ज़िद करने लगा। और फिर खां साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे और 1 घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया। हाँ, तो वाकई वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज़्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रहे हो सकती है कि मैंने तबला एज अ प्रोफेशनल बजाना शुरू किया।

0: रूप कुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कि कौन कौन आते थे?
1: अब्बा जी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह खान
1: साहब और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोज़र हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमीम अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और कौन से आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने से आई, कुछ चीज़ें सीखने से आई, और कुछ चीज़ें जो हैं अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, ख़ास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तरखवा खान साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब को देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में बिठाई, और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गज़लें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला, उसमें से ये एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहाँ मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में
0: और वहाँ पर हारमोनियम पड़ा हुआ था, ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई। उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौर को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

0: जमाना।
1: लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

0: मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत।

खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं।

आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे खेल जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरें। सबसे पहले बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, जहां फुटबॉल के महाकुंभ का आगाज जो है वो आज से हो चुका है और इस बार की जो 6 दावेदार टीमें हैं उनके बेस्ट खिलाड़ियों के बारे में थोड़ी सी आपसे जानकारी साझा करेंगे। 39 वर्ष के होने जा रहे इंटर मियामी के दिग्गज खिलाड़ी, जी हाँ दिग्गज खिलाड़ी हैं, अभी भी मैदान पर वो डटे हुए हैं। उनका अंतिम विश्व कप होगा। उन्होंने इंटर मियामी को पहला MLS कप जिताया था। ये कड़वी सच्चाई है कि उम्र बढ़ने के साथ उनके खेल में थोड़ी सी गिरावट भी आई है, लेकिन वे अभी भी सेट पीस से गोल करने में सर्वश्रेष्ठ हैं। बार्सिलोना के स्टार राइट विंगर ने यूरो 2024 में महज 16 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में कदम रखा था और उस टूर्नामेंट में उन्होंने 4 असिस्ट किए थे। वे लॉ लिगा में 16 गोल 11 असिस्ट और चैंपियंस लीग में 5 गोल 4 असिस्ट कर चुके हैं। हालांकि लंबे सीजन में कई बार उन पर हताशा देखी भी गई, लेकिन जब चीज़ें उनके मुताबिक नहीं होती हैं तो वे मैदान पर गुस्सा जाहिर करते हुए भी दिखाई देते हैं। सबसे मजबूत बेंच स्ट्रेंथ 7 टूर्नामेंट में 4 फाइनल में पहुंचे ये स्टार फॉरवर्ड फ्रांस के लिए वर्ल्ड कप में फॉन्टेन के 13 गोलों के रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ 2 गोल दूर हैं। उनकी नजरें हैं गोल्डन बॉल पर टिकी हुई। और रैंकिंग है 3rd नंबर की। उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए सभी प्रतियोगिताओं में 44 मैचों में 42 गोल दागे हैं और 7 असिस्ट का योगदान दिया है। हालांकि पिछले विश्व कप फाइनल में हैट्रिक लगाने के अलावा अन्य नॉट आउट मैचेस में भी उनका प्रदर्शन जो था वो सामान्य रहा था। 2018 वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट जीतने के बावजूद हैरी केन, जी हाँ इन्होंने इंग्लैंड में अक्सर बड़े टूर्नामेंट्स में अपने कप्तान और रिकॉर्ड गोल स्कोरर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकालने में वो विफल रहे। बड़े टूर्नामेंट में कई बार अपनी पूरी लय में नहीं दिखे। हालांकि 33 वर्षों से क्लब फुटबॉल में बायर्न म्यूनिक के लिए खेलते हुए अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरिंग सीजन बिताया। उन्होंने सभी प्रतियोगिताओं में 51 मैचेस में 61 गोल दागे हैं। बात करें अगर हम ब्राजील की तो ब्राजील है 6वें नंबर पर। जी हाँ अंडरडॉग के रूप में उतरेगी टीम मजबूत फॉरवर्ड लाइन में। विनिसियस जूनियर फॉरवर्ड विनिसियस रफ्तार ड्रिबलिंग कौशल और गोल करने की क्षमता के साथ ब्राजील के सबसे खतरनाक आक्रामक हथियार हैं। इस सीजन के शुरुआती हिस्से में रियल में तत्कालीन बॉस जॉबी ओलेंस के साथ तनाव के कारण वे संघर्ष करते दिखे, लेकिन अल्वारेज अर्बेलुआ के मैनेजर बनने के बाद उन्होंने शानदार वापसी की और लॉ लिगा में 16 गोल दागे। हालांकि उन्होंने ब्राजील के लिए 43 मैचेस में केवल 8 गोल किए हैं। तो इस तरह से अर्जेंटीना की रैंकिंग जो है वो सबसे पहले नंबर पर है, स्पेन की दूसरे नंबर पर है लामिने यमाल द्वारा, और फ्रांस की रैंकिंग है 3rd नंबर पर किलियन एम्बापे द्वारा, और इंग्लैंड की रैंकिंग है 4th नंबर पर हैरी केन के द्वारा, और विनिसियस जूनियर जिनकी हमने अभी बात की, जी हाँ वो है ब्राज़ील से और उनकी रैंकिंग है 6वें नंबर पर। और आखिर में बात करते हैं जर्मनी की, जिसकी रैंकिंग है 10वें नंबर पर। टीम में युवा जोश और अनुभवी खिलाड़ियों का बेजोड़ तालमेल है। जोशुआ किमिच द्वारा जर्मनी की टीम भले ही युवा प्रतिभाओं से भरी हो, लेकिन टीम का मुख्य केंद्र जो है वो है जोशुआ किमिच। 31 वर्षीय किमिच ने खुद को एक फुल बैक से शानदार होल्डिंग मिडफील्डर के रूप में बेहतरीन तरीके से ढाला है। जब फ्लोरियन विट्सर्स और जमाल मुसियाला टीम के आक्रमण की कमान संभालेंगे, तब के मैच डिफेंस और पूरे खेल को नियंत्रित करते नजर आएंगे।
डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना की नजरें 1962 में ब्राजील के बाद लगातार 2 खिताब जीतने वाली पहली टीम बनने पर हैं और टीम में उन 26 खिलाड़ियों में से 17 शामिल है जिन्होंने कतर में वर्ल्ड कप जीता था। लोटारो मार्टिनेज शानदार सेंटर फॉरवर्ड हैं, वे सीरी ए में 17 गोल के साथ शीर्ष स्कोर रहे और स्कोरर रहने के साथ साथ स्ट्राइक पार्टनर जूलियन अल्वारेज ने भी इस सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है। एलेक्सिस मैक एलिस्टर की रचनात्मकता, एन्जो फर्नांडिस की बॉक्स टू बॉक्स गतिशीलता और एटलेटिको के रोड्रिगो डी पॉल की ऊर्जा टीम को अजेय बना देती हैं। साथ ही रक्षा पंक्ति निकोलस ओटामेंडी व क्रिश्चियन रोमेरो जैसे मजबूत सेंटर बैक से सुसज्जित हैं। गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज के पास पेनल्टी शूटआउट का अभूतपूर्व अनुभव। दूसरी तरफ बात करें यूरो चैंपियन स्पेन के पास सबसे बेहतरीन प्रतिभाओं का दल मौजूद है और ये नई संभावित गोल्डन जनरेशन कहीं अधिक युवा है और इसमें बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। टीम अपने पारंपरिक और धीमे टीकी टाका के दौर से आगे निकल चुकी है और मुख्य कोच लुइस डे ला फुएंते के मार्गदर्शन में टीम ने अब एक तेज अधिक आक्रामक और सीधे गोल पर वार करने वाली शैली को अपना लिया है। मार्च 2024 से अब तक स्पेन ने नॉर्मल टाइम निर्धारित यानी कि 90 मिनट में लगातार 28 मैचेस में अजेय रहने का रिकॉर्ड बनाया है। स्पेनिश फुटबॉल में ये पहली बार है दोस्तों की टीम में रियल मैड्रिड का कोई भी खिलाड़ी नहीं है। बार्सिलोना के 8 खिलाड़ी टीम का हिस्सा हैं और रोड्री डिफेंस और अटैक को आपस में जोड़ने वाले सबसे मजबूत स्तंभ भी हैं। फ्रांस के पास सबसे अधिक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की फौज, उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि वे जीतने का मादा रखते हैं, 2-3 अलग अलग टीम्स बना सकते हैं। बैलन डी और विजेता उस्मान डेम्बेले टीम का हिस्सा हैं और इस टीम के पास हमलावर खिलाड़ियों की पूरी फौज है जिसमें डेम्बेले, डिजायर जॉय और माइकल ओलिस जैसे खिलाड़ी हैं। मुख्य कोच डीडियर डेज चैम्प्स टूर्नामेंट्स के बाद पद से हटने वाले हैं जिसमें दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीतने की पूरी कोशिश वो करने वाले हैं। फ्रांस ने पिछले 7 संस्करणों में से 4 बार फाइनल में जगह बनाई है। जानकार ये भी मानते हैं कि वर्ल्ड कप वही टीम जीतती है जिसका डिफेंस सबसे मजबूत होता है।

है और टीम के पास विलियम सलीबा, उपमेकानो, जूल्स कोंडे और हर्नांडेज जैसे डिफेंडर भी हैं। बात करें अगर हम इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के लिए खिताबी सूखा अब 60 साल का हो चुका है। इसे ख़त्म करने से मजबूत इरादे, दो बार की यूरो रनर अप टीम वर्ल्ड कप में पहुंच गई है। कोच थॉमस टुचेल की सुगठित और अनुशासित इंग्लैंड टीम ने 100% रिकॉर्ड यानी 8 मैचेस में से 8 जीत के साथ अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। टुचेल ने टीम में कुछ हैरान करने वाले नामों को शामिल किया है, जबकि कई बड़े सितारों का बाहर का रास्ता भी दिखा है। ऐसे में उनके सामने अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 चुनने की चुनौती भी रही। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 26 सदस्यीय इस टीम के 9 खिलाड़ियों के पास कभी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में खेलने का कोई पूर्व अनुभव नहीं है। ब्राज़ील एकमात्र टीम ऐसी है दोस्तों जिसमें हर वर्ल्ड कप में हिस्सा ले चुकी है। 5 खिताबों के साथ सबसे सफल और प्रतिष्ठित देश, इस बार उसे इतिहास की सबसे कम फेवरेट ब्राज़ीलियाई टीमों में से एक माना जा रहा है। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना ये भी है कि अंडरडॉग का टैग ही उन्हें बिना किसी दबाव के खेलने की आज़ादी दे सकता है। उत्तरी अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड कप से ब्राज़ील की बेहद सुखद यादें जुड़ी हुई हैं। उन्होंने 1994 में अमेरिका में ही खिताब जीता था और विनिसियस और नेमार के साथ साथ ब्राज़ील के पास कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं। ग्रेबियल, मार्टिनेली, एंड्रिक और मैथ्यूस कुन्हा के रूप में फॉरवर्ड लाइन के बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। हालांकि चोट के कारण रोड्रिगो और एस्टेवाओ का बाहर होना बहुत बड़ा छटका है टीम के लिए। बात करें अगर हम जर्मनी की, तो टीम पिछले 2 वर्ल्ड कप के ग्रुप राउंड से बाहर हो गई थी, लेकिन अब मुख्य कोच जूलियस नागेल्समैन के नेतृत्व में ये टीम एक नई ऊर्जा और मजबूत इरादों के साथ मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। टीम में जमाल मुसियाला और फ्लोरियन विट्ज़र जैसी युवाओं की चमक के साथ साथ जोशुआ किमिच, एंटोनियो रुडिगर, गोलकीपर मैनुअल नेओर का अनुभव भी शामिल है। 23 वर्षीय मुसियाला किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। फॉरवर्ड लाइन में विविधता लाते हैं, जबकि विटर्स किसी भी मजबूत डिफेंस को भेदने की क्षमता रखते हैं। कुछ खिलाड़ियों की जगह प्लेइंग 11 में तय जैसे मिडफील्ड में अलेक्जेंडर पावलोविच के साथ लियोन गोरेट्ज़ा और राइट बैक के रूप में जोशुआ किमिच शामिल हैं। जोशुआ किमिच जो हैं वो 21 बार हिस्सा ले चुके हैं वर्ल्ड कप में और बेस्ट चैंपियन 1954 में और 74 में, 1990 में, 2014 में वो ले चुके हैं। पहली बार उन्होंने 1934 में भाग लिया था और टॉप स्कोरर जो रहे इस टीम से वो रहे मिरोस्लाव और सबसे ज़्यादा मैचेस जो खेले गए वो खेले गए लोथार मथियास द्वारा, 25 मैचेस खेले गए। चलिए अब यहाँ पर वक्त हो चला है दोस्तों एक कमर्शियल कम म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के रेडियो सेट्स पर। बने रहिए एफएम हमीरपुर के साथ आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह बिल्कुल आपका अपना रेडियो स्टेशन और हम हैं देवभूमि की सुरीली धड़कन।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

तहे दिल से स्वागत करते हैं एक बार फिर म्यूजिकल कम कमर्शियल ब्रेक के बाद। आपने ट्यून किया FM हमीरपुर, आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 101.8 MHz पर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं खेल जगत। तो आइए अब चल रुख करते हैं अगली खबर की ओर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और भारत से कोई दो ही सेमीफाइनल खेले जाएंगे। इंग्लैंड में 12 जून से खेले जाने वाले आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप एक को ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है। जी हाँ, ग्रुप ऑफ डेथ, जिसमें 6 बार के चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया, वनडे वर्ल्ड कप विजेता भारत और पिछले 3 आईसीसी वाइट बॉल फाइनल खेलने वाली दक्षिण अफ्रीका एक साथ हैं। तीनों में से एक टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएगी। साथ में बांग्लादेश, पाकिस्तान और पहली बार महिला T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले नीदरलैंड्स भी इस ग्रुप में शामिल हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2025 की विजेता भारतीय टीम पर सबकी नजरें हैं। टीम ने फरवरी 2026 में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से T20 सीरीज हराई, लेकिन उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 1-4 और इंग्लैंड से 1-2 से सीरीज हारी। स्मृति मंधाना टीम की धुरी हैं, जो 2025 वनडे वर्ल्ड कप में टीम की टॉप स्कोरर थी और 2026 WPL में RCB को दूसरा खिताब दिलाया। अमनजोत और काशवी गौतम की चोट के कारण भारत 5 बॉलर रणनीति अपनाएगा, जिसमें शिफाली वर्मा की पार्ट टाइम ऑफ स्पिन भी शामिल है। 2017 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया जो है वो किसी खिताब की डिफेंड के लिए बिना वर्ल्ड कप खेलेगा। 2024 में T20 खिताब गवाया, जबकि वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार मिली। नई कप्तान सोफी मॉलन्यू ने एलिसा हेली की जगह ली है और जॉर्जिया वॉल जो है इन पर नजर होगी। स्ट्राइक रेट 156.43। साउथ अफ्रीका ने टूर्नामेंट से पहले घरेलू सीरीज में भारत को 4-1 से हराकर इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। कप्तान लारा वोलवाट पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में सबसे सफल बैटर रही हैं। 37 वर्षीय तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल संन्यास से वापस लौटी हैं और लीग क्रिकेट में वे अभी भी नंबर 1 पर हैं। पाकिस्तान टीम पिछले 2.5 साल में सिर्फ 1 T20 सीरीज जीत सकी है। इसके अलावा पिछले 4 वर्ल्ड कप के हर एडिशन में सिर्फ 1 मैच जीता है। हालांकि कप्तान फातिमा सना ने हाल ही में महज 15 गेंदों में महिला T20 इतिहास की सबसे तेज 50 जड़ी। और कप्तान निगार सुल्ताना के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की टीम पहली बार इंग्लैंड में कोई इंटरनेशनल मैच खेल रही है। वर्ल्ड कप के अपने पिछले 25 मैचेस में केवल 3 जीत मिली हैं। टीम की मुख्य ताकत तेज गेंदबाज मारूफा अख्तर हैं, जिन्होंने इस साल 11 मैचेस में 11 विकेट चटकाए हैं। और नीदरलैंड्स की महिला टीम पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेल रही है। स्टेर कॉलिस, डेविड ली लीडे, रोबाइन रीके और सिल्वर सीजर्स के रूप में 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो T20 में 1000 प्लस जो हैं वो रन बना चुके हैं। स्टार बल्लेबाज स्टेर कॉलिस के पास इंग्लैंड की घरेलू लीग द 100 का लंबा अनुभव है। ECB वनडे कप में 3 अर्धशतक लगाकर वे छठी सबसे सफल बैटर रही हैं। लगभग 4 साल बाद टेनिस कोर्ट पर लौटी हैं अमेरिका की दिग्गज खिलाड़ी सेरेना विलियम्स। शानदार अंदाज में उन्होंने जीत दर्ज की है और 44 वर्षीय सेरेना ने क्वींस क्लब चैंपियनशिप के महिला डबल्स में कनाडा की 18 वर्षीय विक्टोरिया मैबेको को 7 तीसरी सीड जोड़ी को हराया और सेरेना विक्टोरिया ने निकोल मेलिचार, मार्टिनेज और एरिन रुटलिफ को 7-6, 6-2 से मात दी। सेरेना का यह मुकाबला 2022 US ओपन के बाद पहला पेशेवर मैच था। क्वींस क्लब में उनके डेब्यू पर दर्शकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीत चुके सेरेना ने पहले सेट में उन्होंने 193 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार में विनर लगाए। ऑस्ट्रेलिया की

T20 लीग बिग बैश लीग का मुकाबला भारत में कराने की आधिकारिक घोषणा जल्द हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई के बीच सिडनी दौरे के दौरान इस मैच का ऐलान कर सकते हैं। यह मुकाबला दिसंबर में चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में हो सकता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फरवरी में इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की थी, जिसे तमिलनाडु क्रिकेट संघ और BCCI से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में तीसरी वरीय भारत की पीवी सिंधु ने पेरू की इनेज लुजिया कास्टिलो सालाजार को महज 32 मिनट में 21-13, 21-11 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वहीं वर्ल्ड नंबर 36 युवा शटलर तन्वी शर्मा ने बड़ा उलटफेर करते हुए वर्ल्ड नंबर 11 ताइवान की चियोपिन चियान को 21-12, 22-20 से मात दी और अब दूसरे दौर में सिंधु को सामना हमवतन वर्ल्ड नंबर 39 ईशा रानी बरुआ से होगा, जबकि तन्वी भी हमनत वाल्मीका भंसोड़ से भिड़ेंगी। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सलेंस में ट्रेनिंग के दौरान हार्दिक के पैर में खिंचाव आ गया था, यानी कि लेग स्ट्रेन हो गया था। हार्दिक को अफगानिस्तान सीरीज के लिए वनडे टीम में चुना गया था, लेकिन उनकी उपलब्धता फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर थी। हालांकि नई चोट उभरने से वे सीरीज में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। हार्दिक इस साल IPL में भी फिटनेस से जूझते नजर आ रहे थे और पीच मैचन के कारण मुंबई इंडियंस के लिए 14 में से 10 मैचेस खेल पाए थे। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा था कि टीम प्रबंधन 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए हार्दिक को फिट रखना चाहता है, इसलिए वे T20 में भी कम दिखेंगे। और दोस्तों, अब यहाँ पर ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर लौट कर आते हैं आप सभी के रेडियो सेट्स पर। बन रही है FM हमीरपुर के साथ आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 101.8 MHz पर। यह है बिल्कुल आपका अपना रेडियो स्टेशन और हम हैं देवभूमि की सुरीली धड़कन।

और दोस्तों इसी के साथ अब ये खेल जगत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। आपने ट्यून किया FM हमीरपुर आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं और हम आपके रेडियो सेट पर लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम चांदनी रातें। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत आपके अपने कार्यक्रम में। जी हाँ, कार्यक्रम है चांदनी रातें। दिन भर की थकान के बाद कुछ पल सुकून के, आइए एक बार फिर हम

0: जहाँ मोहब्बत एक वो खूबसूरत सा एहसास है, जहाँ बहुत सी कस्में होती हैं, वादे होते हैं और ताउम्र उन्हें निभाने के लिए कस्में खाई भी जाती हैं। क्योंकि वो साथ हमेशा हमेशा के लिए
1: जाओ।

आज इस पल जो है वो शायद कल नहीं, फिर शायद मिले ना मिले, लेकिन वो दास्तां बनकर रह जाती है कहानी।

ये गुजारिशें, ये चाहतें, ये मोहब्बतें, ये ख्वाहिशें, जी हाँ बिल्कुल इन्हीं में सिमट कर रह जाती है ये मोहब्बत, क्योंकि

ये बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है, सारी कायनात खूबसूरत सी नज़र आने लगती है, फिजाएं और भी रंगीन हो जाती हैं। जब आप इस खूबसूरत सी दुनिया में कदम रखते हैं, जहाँ जिसे हम कहते हैं मोहब्बत की दुनिया,

जब इतना विश्वास हो किसी पर जो दिल के बहुत करीब हो, तो फिर वो आंखों की हसीन पलकों पर आ ही जाता है।

0: अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया

0: रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण यहीं पर समाप्त होते हैं। 5:55 पर कल की सभा के कार्यक्रमों को लेकर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।